0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: से भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
3: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल है। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
6: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
7: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
8: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
7: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
9: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
7: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
10: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम है। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American, Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India, Middle East, Europe economic corridor, stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event.

0: सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8:20 हो रहे हैं, एक और फ्रेश मॉर्निंग है और एक ताजगी से भरी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:20। आज 23 सितंबर की सुबह आप जुड़ चुके हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे RJ आनंद के साथ। ये है आपके शहर का अपना एग्जैक्टली सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ जाते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। और आप ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। मैं रहूंगा आपके साथ 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। दोस्तों, हमेशा आप एक बात सुनते आए होंगे ना, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं और अक्सर हम इस बात को सुनते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम अपने मन में कोई भी संकल्प लेते हैं, किसी भी चीज को पाने की जब हम एक इच्छा जागृत करते हैं, तो वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत और मेहनत हमें करनी होती है, ये हर कोई जानता है, लेकिन करना बहुत कम चाहते हैं। जो कर जाते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। इसीलिए जो आपके मन में है वो आप जरूर कीजिए। और देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जीतना जरूरी नहीं है, उससे पहले एक सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है, एक सही डेडिकेशन बहुत जरूरी है, एक सही अंदर से जिद और एक कहते हैं ना इच्छा बहुत जरूरी है। जब ये चीज आपके अंदर आने लगती है तो यकीन मानिए वो अंदर की अपने आप सारी चीजें वापस आ जाती है ना, जो आप करना चाहते हैं। फिलहाल ऐसी अच्छी बातों के लिए आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। और अभी फिलहाल आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बॉस। और आज की सुबह में आप भी चार चांद लगा सकते हैं इन प्यारी प्यारी बातों के साथ। एग्जैक्टली, तो जुड़िए हमारे साथ 9837896896 पर। 8:22 होने, एक बहुत ही प्यारा गाना निकाल दिया है आज की मॉर्निंग। ऐसे ही ट्यून रहिए, वेरी गुड मॉर्निंग। ये वेंसडे की सुबह है, दिन है मतलब आज बुधवार का।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: हाँ जी बिल्कुल, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। कैसे हालचाल है, वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 पे, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक प्रोग्राम है। हाँ जी, जरा आप ही बता दीजिए मैडम जी, प्रोग्राम कौन सा चल रहा है? अरे बता दो यार, अब ये लो, ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम दो बनने। चलो जी टाइम ले लो फिर। एग्जैक्टली जी, कैसे हालचाल है? फिलहाल वक्त हो गया है 8:44, लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे संदेशों के बीच आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल करते हैं आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं, मतलब हमारी एप्लीकेशन के जरिए जुड़ चुके हैं। अगर आप हमारी ऐप पे हमें सुन रहे हैं तो आज की सुबह एक फैबुलस वाला बिग शाउट आउट आपके नाम, लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे क्या कहा, आपकी ऐप के बारे में तो पता ही नहीं है भाई। प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो FM मुरादाबाद की ऐप, और दिल से दिल तक का जो कनेक्शन है इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ, आपके मैसेज पढ़ेंगे और कुछ हमारे पास आज के दिन से जुड़ी बातें जो शेयर करेंगे।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 से 7 तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: थैंक यू जी। बिंदास मॉर्निंग में बिग शाउट आउट, एंड बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक जी, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, न्यू मुरादाबाद से मैसेज कर रहा हूँ, कैसे हालचाल है? हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। 8:46 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में, 8:46 का समय हो रहा है। मैंने कहा चलो जी एक बार आपको हिंदी में भी बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना जी। सुबह सुबह, हाय हाय हाय, कुछ ऐसे गाने हैं जो आपको फ्लैश बैक में ले जाते हैं, और ये वो गाने हैं जिनको सुन के सुबह की वाइफ फुल ऑन सेट हो जाती है। फिलहाल आज का मौसम बहुत औसम है, इस पे जरा बात कर लेते हैं, आज का वेदर क्या कहता है। मतलब सूरज चाचू तो निकल चुके हैं, नहा धो के प्रकट हो गए हैं भाई, रात हो या दिन गर्मी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वापस आ गई है यार, कमबैक कर लिया है गर्मी ने। मतलब अभी भी आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, आपको पसीने वसीने आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, फिलहाल अभी करंट टेम्परेचर की बात करेंगे, क्या कह रहा है आज का मौसम। आज जो है हमारे ये जो भाई साहब है ना, वेदर जो बताते हैं भाई साहब, ये जो दिखाते हैं हमें पूरा डेटा, अभी वो थोड़ा सा कह रहे हैं भैया मुझे रिलैक्स करने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप रिलैक्स करो, तब तक आप रिलैक्स करो, तब तक हम एक भैया का वॉइस नोट सुन लेते हैं फटाफट से, ये हमें कुछ पहुंचा रहे हैं आज की मॉर्निंग, जरा सुनते हैं। जी जय श्री राम, राधे राधे।
5: ना चादर वड़ी कीजिए।

0: ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले पर मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, अभी खुद से ही मिला कीजिए। नमस्कार राधे राधे, आप सुन रहे विंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत बागबड़ा से बोल रहा हूँ। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, बजाते रहो गुनगुनाते रहो। नमस्कार राधे राधे।
1: बहुत धन्यवाद भूपी जी, आपके आसपास का जो शोर था, जो आसपास में आवाजें आ रही वो शोर हमें बता रहा है कि आप बाहर निकल चुके हैं सुबह सुबह। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी मैंने एक भाई को देखा सुबह सुबह, ना वो डेली मुझे मिलते हैं, सफाई करने वाले भैया हैं, इधर आते हैं अपने लाइन पार में, और बड़े कमाल के इंसान है जो मेरे बातचीत करी। और मतलब कभी कभी ना इंसान का काम बड़ा नहीं होता, उसका दिल बड़ा होता है ना, और जब इंसान का दिल बड़ा होता है तो उससे खूबसूरत बात और क्या ही हो सकती है। और मुझे भी ऐसे लगता है कि इंसान का काम बड़ा हो ना हो, लेकिन उसका ईमान और उसका दिल दोनों बड़े होने चाहिए। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो चल रहा है विंदास मॉर्निंग। अभी मैं वापस आता हूँ एक दिल के साथ और बताऊंगा आज के दिन का इतिहास। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। भाई मुरादाबाद के लोकल हैं, सुनना तो बनता है बॉस। चलो जी।

0: क्या बात है यार, इतना बढ़िया, मतलब यू नो सुनने के बाद गाना मजा आ गया। एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है, और भैया सबके पास एक ही दिल होता है, दो होते तो फिर बात ही क्या होती यार। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, और स्टूडियो की घड़ी का जो वक्त है वो अपनी घड़ी से मिला लो, 8:54 का समय हो गया स्टेशन क्लॉक में, फाइनली वेदर अपडेट आपको देने का टाइम। हाँ जी, मतलब क्या कह रहा है फिलहाल आज का टेम्परेचर, इस पे बात कर लेते हैं इमिडिएटली। देखिए मौसम का हालचाल पता लग जाता है तो फिर पूरे दिन की प्लानिंग उसी हिसाब से हो जाती है ना जी। सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपसे। फिलहाल करंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं, लेकिन सुबह सुबह की धूप जब आप देखेंगे तो आपको ऐसी फील आएगी कि मतलब भाई साहब जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं। वो सर्दियों वाली विंटर्स वाली धूप आती है ना, हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी, वैसी वाली। लेकिन जैसे जैसे 7 से 8 में तब्दील होती है धूप, भाई अलग ही सूरज चाचू जो है मुझे लगता है थोड़े से नाराज हो जाते हैं। भाई हवा चलेंगी 1 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से, बहुत हल्की फुल्की हवाएं चलने वाली हैं, बॉस अपने पंखे और एसी बढ़ाने पड़ेंगे आज की सुबह। एंड इसके अलावा ह्यूमिडिटी चिपचिपाती गर्मी आपको फील देने वाली है आज की सुबह। 34 डिग्री ये हाईएस्ट टेम्परेचर जा सकता है, लोएस्ट की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है, यानी 25% तक भी जा सकता है। और बढ़ोतरी की बात करें तो आपको हम बता रहे हैं 34% भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में अपनी छाते खोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने पंखे और एसी को बढ़ाने की जरूरत है। चलिए जी फिलहाल बात करते हैं अभी आज के दिन के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर दिन की तारीख बहुत स्पेशल होती है। आज 23 सितंबर को क्या स्पेशल है, क्या कुछ खास है, इतिहास के पन्नों में फटाक से एक नजर डालेंगे जी। देखिए भाई, हर दिन कुछ न कुछ नई नई चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं, जानते हैं, और हमें जानने सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। एंड इनफैक्ट हमें पता लगता है कि हमारे आसपास क्या घटित हुआ, क्या कुछ स्पेशल रहा, वो सब कुछ हमारी जानकारी में जब आ जाता है तो हमारी नॉलेज में आता है तो हमें अच्छा लगता है। फिलहाल बात करें आज 23 सितंबर की, तो भैया 1908 में राष्ट्रकवि रमाधारी सिंह दिनकर का जो जन्म था वो आज ही के दिन हुआ था श्रोताओं। और आज ही के दिन जो है एक और खास चीज और एक खास पर्सनालिटी का जन्मदिन हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, एंड ऑफकोर्स जिनके बारे में मैं डेफिनेटली अभी बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बता दें 1747 को रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेन शांति के जो है हस्ताक्षर हुए थे श्रोताओं आज ही के दिन समझौते पर। इसके अलावा ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने असाया के युद्ध में मराठा सेना को हराया था 1803 में आज ही के दिन। और आपको बता दें बाल विवाह जो है इस पर कानूनी, इसको मतलब जो है शारदा कानूनी पारित किया 1929 की मैं बात कर रहा हूँ 1929 को। इसके अलावा आपको बताते चले आज ही के दिन एक और खास चीज हुई। हाँ जी, ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडल ले परमाणु परीक्षण किया था आज ही के दिन ये 1958 को। तो देखो भाई, कुछ ना कुछ स्पेशल होता रहता है हमारे इतिहास के पन्नों में हर दिन, और हम आपको यू नो आपके रेडियो पर बताने के लिए चले आते हैं। एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे होते हैं आपके साथ, एंड फाइनली दिस इज वेंसडे की सुबह। बहुत सारे लिसनर्स अपने अपने काम के लिए निकल रहे होंगे, आई एम श्योर आप जहां भी जा रहे हैं आपको ऑल द वे बेस्ट। आपको बता दें 1986 में अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब को अमरीका का मतलब राष्ट्रीय फूल चुना था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी यार। जब मैं सच बताऊं कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद भी नहीं पढ़ रहे होते भाई, लेकिन जब हम यहाँ रेडियो पे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो ओह माय गॉड ऐसा ये भी हुआ था आज के दिन, वाह, मतलब एक यू नो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अलर्ट मोड में आ जाते हैं। चलिए फिलहाल ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ साझा करी। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ और खास कलाकारों की। तो श्रीनिवासी शास्त्री जी जो महान देशभक्त और राजनेता थे, 1862 को इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। यूसुफ मेहर अली का जन्म हुआ जो स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक रहे, 1903 में इनका जन्म हुआ श्रोताओं। एंड बॉलीवुड के बहुत ही खूबसूरत अभिनेता हैं, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के बहुत ही वेरी वेरी पॉपुलर अभिनेता, 1935 में जन्म हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेम चोपड़ा। बड़े सारे डायलॉग देखे हैं भाई मैंने इनके, वो अजगर वाला डायलॉग तो सो मच फनी यार, और मतलब बहुत वायरल भी था, इट इज वेरी वेरी वायरल, एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा फनी भी लगता था, उनकी आवाज में साउंड करता था, बड़ा इंटरेस्टिंग यार, यू नो आदमी ना नींद में ही पहचान लेगा कि भैया प्रेम चोपड़ा साहब बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात हो गई आज के दिन के बारे में भी, थोड़ी देर में लौट के आएंगे तो बात करेंगे मुरादाबाद शहर के बारे में। 8:58 हो गए स्टेशन क्लॉक में, ये टाइम जो है मैं लगातार आपको बताता हूँ, भैया टाइम के साथ चला करो यार, बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त के साथ चलते हैं ना उनकी जिंदगी में हमेशा जीत होती है, ऐसा मैंने मेरे पापा भी कहते थे भाई साहब। तो इसीलिए जो है ना हमेशा वक्त के साथ चलते रहो यार, बाकी किसी का चेहरा प्यारा लग रहा है तो उसकी तारीफ कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब फिर बाद में पछतावा नहीं होगा। फिलहाल इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप आज की सुबह जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे और पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको सुकून की नींद दे रात को। फिलहाल इनकी बात सुनते हैं।
1: चेहरा जिस पे हम मरते हैं।
0: सुबह सुबह ऐसे गाने पड़ोसियों के घर में सुनने को मिलते थे यार, 90s वाला टाइम ही अलग था। फिलहाल एक सवाल के साथ कम बैक करूंगा, स्टे ट्यून।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
7: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
3: लेकिन सोनिया
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
3: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: क्या बात है जी, क्या बात है, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो हाय वेलकम बैक, वेंसडे की सुबह है। गणपति बप्पा का नाम लेकर कर रहे हैं अभी इस घंटे की शुरुआत, इस घंटे का शुभारंभ। जितने भी विघ्न हैं आपके जीवन में, जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी लाइफ में मतलब तोड़ते लगे पड़े हैं, वो सारे तोड़ते उड़ जाएं, आपको आजादी मिल जाए हर एक चीज से, बस फ्री रहो, फ्रीडम आपको मिले। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। एंड कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है यार कि हम जो चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल रहा होता, और कभी कभी ना हम गॉड के आगे भी बोल बोल के थक जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है एक टाइम के बाद कि यार काश जो है ऐसा कुछ मैजिक हो जाता है कि सब कुछ सही हो जाता है। बट यार मुझे लगता है ना कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, वो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जब उसके हाथ में होती है तो डेफिनेटली अच्छा जरूर होगा, बट अभी नहीं, जब समय आएगा तब जरूर होगा। सही समय का कभी कभी इंतजार करना बहुत जरूरी होता है, और जब चीजें अपने हाथ में ना हो तो उसके ऊपर एक बार भरोसा करके छोड़ दो यार, वो जो सुप्रीम पावर है ना वो जरूर संभालेगी। एनीवेज बैक टू पॉइंट, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां हम लोकैलिटी की बातें करते हैं। मुरादाबाद में क्या चल रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं जरा सी देर में। इसके अलावा शहर में क्या चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। 9:06 हो रहे हैं, 6 मिनट हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है तो टाइम का। सो आगे बढ़ते हैं, मैं आप सभी के लिए यहां पर सबसे पहले तो क्या करने वाला हूं, ढेर सारी ताली बजाने वाला हूं यार। यस अभी ताली ढेर सारी मैंने बजा दी है, अब मुझे एक सवाल के जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगती है कि यार हाँ ये वाली चीज जो है ना पहले बड़ी अच्छी होती थी लेकिन आजकल ये चीज होती नहीं है, कुछ मैं बोल रहा था। एक काम करता हूँ, मैं अभी सवाल को ना पहले अच्छे से बना के सजा के लेकर आता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ा सा पूछो मत यार, मतलब मैं खुद को बोलूंगा कि आनंद बेटा अभी पूछो मत सवाल, मैं इसको पहले डेकोरेट कर लूँ, पहले अच्छे से सजा लूँ, सजा सुजा के लेकर आऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। रुको जरा वेट करो, चलो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। कभी कभी होता है यार एक साथ इतनी सारी चीजें आ जाती हैं दिमाग में, वो पिक्चर एकदम से नहीं बन पाती। एनीवेज आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, आप मुझे बता सकते हो आप कहां जा रहे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट्सएप करो 9837896896 पे यार। 90s के एड देखें आपने, मतलब जो अपने दूरदर्शन टाइप पे एड आते थे यार, क्या कमाल के एड होते थे, मतलब देख के अलग ही फील आती थी उन एडवर्टीजमेंट को। फिलहाल अभी हम एड की बात नहीं करेंगे, हम आपसे कुछ पूछने वाले हैं, एक छोटा सा सवाल जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा दे, आपके दिमाग की बत्ती जला दे, कुछ ऐसा सा पूछने वाला हूँ। सो बस ऐसी ट्यूनिंग रहो, लौट के आता हूँ सवाल के साथ। सो अभी के लिए हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं हिमगिरी से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हाय अमित भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित वर्मा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिखा जुड़ चुकी है मानसरोवर कॉलोनी से, गायत्री नगर से दीपा जी जुड़ी है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड इसके अलावा मेरे पास ये कौन है, प्रेम बंसल। हाय बंसल जी, गुड मॉर्निंग।

एक और मैसेज आ गया मेरे पास काशोड हरथला से, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज शुभी, निकल रही हूँ ऑफिस के लिए, आई एम ऑन द वे आनंद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच शुभी जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। गाइस आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह, लौट कर आ रहा हूँ जरा सी देर में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ, गुड मॉर्निंग।

0: देखो देखो वहाँ पे।
1: आज आनंद इज बैक।
2: बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आनंद के साथ। 9:12 का समय हो गया है और अगर भाई आप कहीं जाम वाम में हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो 9837 896 896 पे। 9837 896 896 अगर कहीं जाम शाम में फंसे हो तो मैसेज करो यार 9837 896 896 पे। बता दो फटाफट से यार, आनंद को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे भाई। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां बातें दिल से दिल तक होती है और शायद आप किसी की हेल्प कर दो, तो इमीडिएटली बताओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार आप ये अपडेट दे सकते हो तो बिल्कुल मुझ तक पहुंचा दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ।

0: आई डोंट नो क्यों, जब भी हम किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, कि जब भी हम किसी ऑटो वाले भैया के पास जा रहे हैं, जब भी हम किसी फ्रूट वाले के पास जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज भाई साहब ऑनलाइन पेमेंट मत करना। भाई देखो हमारे ना कल इतने रुपए कट गए, आज हमारे इतने पैसे कट जाएंगे, हम ऑनलाइन नहीं ले रहे, कैश हो तो वापस आओ, मतलब कैश हो तो आ जाओ, वरना तो भैया वापस जाओ। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। हाय वेलकम बैक, वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। अगर आप शॉपकीपर हैं या अगर आप कोई स्टॉल लगाते हैं, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आप जो भी करते हैं, अगर आप ऑनलाइन मतलब जो है पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूं भाई आपसे आखिर क्यों आप कर रहे हो। और मैं नॉर्मल लोगों से पूछना चाहूंगा, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है भाई, जब आप लोग कहीं शॉप पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए, जहां पे आप पहले ऑनलाइन वाला यू नो लेन देन करते थे, क्या अभी भी आपकी मतलब आपको ये चीज में कोई दिक्कत नहीं आ रही या फिर आ रही है, बताओ जरा मुरादाबादी मैसेज करके 9837896896 पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, बेसिकली मैं अभी कुछ पढ़ रहा था मुरादाबाद से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लगा अभी इसी पे बात कर लेनी चाहिए। आखिर ये मुद्दा क्या चल रहा है भाई, यूपीआई को लेकर जो लोगों के दिमाग में एक मिथ बन गया कि नहीं भाई पैसा कट रहा है, पैसा कट रहा है, सच में आपका पैसा कट रहा है क्या भाई, जरा हमें मैसेज करके बताओ 9837896896 पे कॉल करो। अगर आप कहीं पे शॉपिंग शूपिंग करने जा रहे हो, तो क्या आपके साथ भी ये समस्या हो रही है कि नहीं भैया हम ऑनलाइन ना ही लेंगे, हमको तो पैसा दीजिए, पैसा हो तो बात कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज बताओ यार, बिकॉज मेरे साथ बहुत हो रहा है। मतलब एक्चुअली होता सीन ये है कि अब इतनी आदत हो गई, इतनी हैबिट हो गई कि यार हर जगह पे हम प्लास्टिक मनी लेके घूमते हैं अपने साथ। कैश वाला टाइम तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चला ही गया, बट आई नो पैसे होना बहुत जरूरी है जेब में, कभी कभी बड़ा पछतावा भी होता है जब नहीं होते हैं तो। बट ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है यार। अच्छा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सिनेरियो है तो प्लीज डू लेट मी नो 9837896896। आप मुझे बताओ मैसेज या कॉल करके क्या लगता है आपको, जल्दी से कॉल करो यार, आपको आपको बस मेरे को बताना है कि हाँ आनंद मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है।
1: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
0: देखो मजा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन उस मजे से पहले मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मुझे वो बताओ यूपीआई को लेकर आपके आसपास भी कुछ ऐसे यू नो बातें हो रही हैं कि ना भैया ऑनलाइन पैसे मत डालो, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, शॉपकीपर्स ऐसा कर रहे हैं क्या आपके साथ, या फिर आप खुद शॉपकीपर हैं आप ऐसा कर रहे हैं क्या, जरा मुझे बताओ मैसेज करके 9837896896। देखो भाई बात को जो है ना रखने से सोल्यूशन मिलेगा ना, ऐसे सोचने साचने से तो कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है भाई आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम अगर है तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं भाई। रेडियो इज द बिगेस्ट मीडियम, एक अच्छी पावर है, आपकी आवाज रेडियो बन सकता है आज की सुबह। तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइए 9837896896 पे मैसेज आप कर सकते हैं और बता सकते हैं हाँ भाई ये समस्या हो रही है, और क्या पता उसका सोल्यूशन हमारे पास ही निकल जाए यार। मैंने इसलिए भी तो आपसे ये मुद्दा छेड़ा है बॉस, तो आप जरा अपनी राय रखें, अपने विचार रखें और मुझे बताएं मैसेज करके। अभी कुछ एड ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। फिर
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यो यो यो यो करनोजला एवी यारी नो बेबी।
5: यार मुझे अभी एक कॉल आया था शुभम जी का, उन्होंने बताया आनंद जी स्टेशन के आसपास बहुत भसड़ है यार, बहुत ज्यादा इधर जाम ही रहता है, लेकिन आज भी जाम ही लगा हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैं क्या पाजी आप रेडियो खोलो और गाने सुनो यार है ना, अगर आप भी कहीं ऐसे ट्रैफिक में फंस रहे हो, हल्के फुल्के सिग्नल में हो तो डोंट वरी यार, मैं हूं ना आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका रेडियो का साथी, अच्छे गाने बजा रहा हूं, एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ा के। ये वेंसडे की सुबह अभी लौट कर आ रहे हैं जी, गुड मॉर्निंग।

भैया हमको तो बस ये चाहिए कि जो यूपीआई को लेके भसम मची पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है भैया सही गलत की बात किसी को पता नहीं होती है। कभी कभी ना हम बस वही वाली चाल में चल लेते हैं कि भैया पड़ोसी ऐसे कर रहा है तो मेरे को भी यही करना है। हाय वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। आई नो बहुत से लोग किचन से भाग रहे हैं और कुछ लोग अभी घर से ऑफिस के लिए भाग रहे हैं। भाई भागते दौड़ते ना प्लीज एक काम करना, एक बनाना है फिर एक एप्पल जरूर रख लेना यार बैग में, कभी बाद में कहोगे यार ब्रेकफास्ट टू नहीं करा इडली चलो फली खा लेता हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखा करो यार साथ में, बहुत जरूरी है। भाई अपने इंडिया में ना एक बड़ी अजीबोगरीब बात निकल के सामने आई है ना, बड़ा अजीबोगरीब खबर सुनेंगे तो मतलब एकदम से लगेगा यार ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस यार, मतलब मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता कि यार कैसी अजीबोगरीब चीज होती है और ये अपने इंडिया में ऐसा हुआ है यार, मतलब आई कांट बिलीव दिस कि यार ऐसे कोई कैसे ही कर सकता है। मतलब एक स्कूल में मतलब एक टिपिकल रूल सेट कर दिया गया है, अपने भारत में एक रूल सेट किया गया है भाई साहब स्कूल के अंदर कि अगर वहां पे बच्चे अपने लंच बॉक्स के अंदर अगर बच्चे अपने लंच बॉक्स के अंदर मेथी की सब्जी लेकर आते हैं तो वहां पर 20 रुपीज का फाइन लगेगा पर स्टूडेंट पे जो अपने लंच बॉक्स में मेथी की सब्जी लगा। अब ये क्यों हो रहा है सीरियसली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है एंड व्हाई ये चीज क्यों हो रही है यार मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखो यार मेथी ऑलरेडी इतनी ज्यादा हेल्दी होती है, अब सर्दियां कम बैक कर रही है, ऐसे में विंटर्स में तो ज्यादा लोग हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं करेक्ट, और मेथी आलू की सब्जी तो मेरी बड़ी फेवरेट है यार। आई डोंट नो क्यों स्कूल में ये रूल सेट किया गया है, सीरियसली मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब लंच बॉक्स डिश दैट शुड बी फाइंड, आई डोंट नो क्यों यार, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आखिर क्यों यार। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्या ये होना चाहिए ये, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ शहर का बट मुझे बड़ा यू नो अजीब सा लग रहा है कि यार ये कैसा मतलब जो है सेट कर दिया गया है रूल कि यार अगर बच्चे अपने लंच बॉक्स में मेथी की सब्जी लेके जाएगा तो पर स्टूडेंट 20 रुपीज फाइन देना पड़ेगा, मतलब उस बच्चे को जो डिश लेके जा रहा है मेथी की सब्जी की। भाई मुझे मारो क्या ही हो रहा है यार, ये बड़ा अजीबो गरीब मामला निकल के आता है जब मैं ऐसी चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या चल रहा है ये, फिर बताना पड़ता है बिकॉज यार अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया में।

चलो जी, मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पे शुभम का, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यूपीआई को लेकर ना अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि किन के पैसे कटने वाले और किन के नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजों की वजह से हमारे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कई बार बैलेंस कट भी जाता है, और ऐसे में अगर कट भी जाएगा किसी वजह से कुछ भी चीज अगर ऐसी होगी तो सबके दिमाग में वही चीज आएगी यूपीआई को लेकर। यार सीरियसली भाई, मुझे भी ऐसे लग रहा है जो तुमने बोला है, आई टोटली एग्री विद यू मेरे भाई, और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ तो भैया ऑनलाइन से पहले जेब चेक करनी पड़ी है, भैया 100-200 रुपए का नोट है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कोई ले ही नहीं रहा है। भाई इसमें कोई वाव नहीं है वरुण जी, आप ये वाव मत करो यार, काहे को वाव। फिलहाल ये गाना पूरे बोल। अच्छा एक मिनट, इसमें अमित जी का भी कोई एक मैसेज आया मेरे पास। अमित वर्मा जी लिखते हैं, आनंद भाई यूपीआई को लेकर असमंजस तो सभी लोगों में है, पर एक बात इन्होंने बताई है कि भैया MDR का एक्स्ट्रा चार्ज दुकान पर लगेगा और दुकानदार वह चार्ज कस्टमर से वसूलेगा और आम जनता पर ही आने वाली है। आई अग्री विद यू यार, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, मतलब यार हमें क्यों जो है मतलब इस जेल के अंदर डाला जा रहा है, आई डोंट नो यार। फिलहाल के लिए वाओ सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस स्कूल में एक रूल सेट किया गया है कि भैया अगर वहाँ पे स्टूडेंट अपने लंच बॉक्स में मेथी की सब्जी लेके जाएंगे तो 20 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा, आखिर क्यों, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ मुझे। वैसे मैसेज बहुत सारे पहुंच रहे हैं यूपीआई को लेके, अभी मेरे पास तमन्ना का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है। हाई तमन्ना, गुड मॉर्निंग की लिखती है, सर हमारे भारत में ऐसी होती है कोई भी चीज किसी और के लिए होती है लेकिन उसको लागू हर कोई कर लेता है मुफ्त में, क्या ही कर सकते हैं यार। फिलहाल गाना वापस आ रहा हूँ, कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुन रहे हो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद को, ये आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, शो चल रहा है मॉर्निंग मैगजीन, दिस इज बिंदास मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या बात यार, ये गाना इतना बढ़िया लगता है जस्सी गिल का। हम जितनी बार भी सुनते हैं ना, अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं। मतलब नया नया गाना जब ये आया था ना, इसने कमाल कर दिया था यार। मतलब बहुत ही बेहतरीन गाना था। वेलकम बैक एक बार फिर से, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां हम होते हैं, आप होते हैं और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। 9:36 हो गए। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था जेंजी में एक नया क्रेज आ गया है नवरात्रि रानियों को लेकर। मतलब जो है सोशल मीडिया पे एक बहुत ही वायरल चली एक चीज, वो है रेंटल गरबा पार्टनर। हांजी, ये एक नया ट्रेंड चर्चा में है एंड वायरल किया जा रहा है। इसके पैकेजेस, मतलब इसमें प्लैटिनम एंड साथ में प्रीमियम पैकेजेस अवेलेबल है। ठीक है जी, मतलब 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक के गरबा डांडिया नाइट पार्टनर आप बुक कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पैकेज में डांस में आपको हेल्प मिलेगी, मैचिंग आउटफिट्स में आपको हेल्प करेगा, आपकी ज्वेलरी में हेल्प करेंगे ये लोग एंड आपकी सेल्फी रील्स जैसी फैसिलिटीज आपको देंगे। और अगर आप इनको, मतलब जो है इनका प्रीमियम वाला पैकेज लेते हो, प्लैटिनम पैकेज लेते हो, तो ये आपको घर भी छोड़ने जाएंगे सेफली रात को। तो मतलब अभी फिलहाल गरबा डांडिया नाइट के लिए रेंटल पार्टनर जो है वो मिल रहे हैं यार। मतलब बड़ी अजीब गरीब चीजें निकल के जब आती हैं सामने, तो बड़ा मतलब यू मैंने अभी मतलब आप मैंने कहा आप ही ने भी अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही ऐसा फेस देखा होगा कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है। बताओ यार, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं आपका इस स्टेशन पर एंड ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंच रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर ये मैसेज पहुंचा है तबस्सुम जी का, लिखती है गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं। गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ एंड आपका शो बहुत अच्छा लगता है जी। थैंक यू सो मच, हम इसीलिए तो अच्छा करते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। अच्छा, 28 सितंबर को जो है बैंक हड़ताल पर हो रहे हैं। देश भर में जो है काफी सारी चीजें चल रही है बैंक को लेकर। आपको बताया तो आपको बता दें, देश भर में बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में बैंक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हां जी, ऐसा बताया जा रहा है कि भैया 28 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक जो है 3 दिन तक हड़ताल हो सकती है। अब ये कहां कहां होगी इसका तो सीरियसली अभी नहीं पता है, लेकिन अगर अपने आसपास कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग और ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, आपके ढेर सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच इन मैसेजेस के लिए। बहुत सारे लोग यूपीआई को लेकर अपना दर्द अपना दुख हमारे साथ साझा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने भी आपके साथ साझा किया इसीलिए, बिकॉज हमें भी अच्छा लगा यार। और तमन्ना भाटिया जो है बड़ी स्टाइलिश लग रही है, अगर आपने इनका छठ वाला सॉन्ग नहीं देखा है तो भाई जाके चेक आउट करो, मतलब अलग ही लग रहा है। बॉस काफी पॉपुलर अभी, मतलब मूवी वीकेंड पर रिलीज होने वाली है इनकी एक नई, और तम्बा तम्बा सॉन्ग भी इनका है एक बहुत ही पॉपुलर वाला गाना, काफी यू नो डिफरेंट लग रहा है वो सुनने में भी। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 अक्टूबर से काफी सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। मैं बताऊंगा आपको, एक बड़ी अजीब गरीब न्यूज आई है कि भैया अगर आप किसी की बुराई करते हो तो उस पर आप पैसे कमाते हो। मतलब यार ये कैसी चीज है, मतलब आप सुनोगे तो आपको भी बड़ी मतलब ऐसे हैरत में उड़ जाओगे, यार ये क्या बता रहे हो आनंद। मतलब सुबह सुबह यार ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ तो थोड़े से दिमाग के तोते हिल जाते हैं मेरे भी, और जब मैं आपको बताता हूँ शायद आपके भी हिल जाते होंगे। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको कुछ और खबरें बताने वाला हूँ मुरादाबाद से जुड़ी। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो करते हैं बिना किसी देरी के, एंड उससे पहले आपके जो मैसेज आ रहे हैं इनको भी पढ़ लेता हूं। हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई। मैं बढ़िया हूं। हाय यश, बात कर रहा हूं रामलीला ग्राउंड से। आनंद जी, आज आपका रेडियो सुन के काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच यार, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह आप लोग इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, ये हमारा दिन बना देते हैं। बस यही तो चाहिए और क्या ही चाहिए भाई, थैंक यू सो मच। अब 90s 80s की बातें हो रही है, सब लोग कैश वैश की बातें कर रहे हैं, तो फिर कुछ गाने भी तो ऐसे होने चाहिए ना बढ़िया वाले, यू नो, इनको सुन के मजा आ जाए। ये सॉन्ग अपने आप में बड़ा प्यारा है। चलो मैं अभी लौट कर आऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा ये जो चुगली वाला सिनारियो ये क्या है भाई, ये बड़ा अजीब अजीब मामला है, इस पे बात करेंगे। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा रावण होने वाला है इस बार का, और ये जो सबसे बड़ा रावण खड़ा होगा इसकी कीमत आप सोच नहीं सकते हैं कितनी ज्यादा होने वाली है और कितने फुट का होने वाला है। इस पे बात करते हैं, बहुत पॉपुलर है आजकल, ये बहुत ट्रेंड में है, अब दशहरा भी आई जाएगा यार में। तो इसको लेकर बड़ी सारी तैयारियां चल रही है हर जगह पर। चलो फिलहाल गाना सुन रहे हैं, उसके बाद में जल्दी से वापस आ रहा हूँ। 9:40 हो गए, आपकी हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: morning. Last morning.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
6: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

कुक स्टूडियो का अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, पसूरी वन ऑफ माय फेवरेट। यार ये गाना इतना अच्छा है ना, इसको जितनी बार भी सुनते हैं बड़ा मजा आता है। स्पेशली अभी जो ये माहौल आने वाला है डांडिया गरबा का, उसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। एनीवेज अभी बाद में बात करेंगे फिर कभी इस पे। वक्त हो गया है जी 9:52, आप सुन रहे हैं आनंद को एंड चंदू चैंपियन। जी हाँ, चंदू ही नहीं चैंपियन भी हूँ। इसको लेकर जो है कार्तिक आर्यन को एक नेशनल अवार्ड भी मिला है और काफी इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन। आपको बता दें चंदू ही नहीं चंदू चैंपियन इस फिल्म पर नेशनल अवार्ड मिला है कार्तिक भाई को। एंड बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी बीती शाम बेहद ही खास बताई है, बिकॉज गुजरात में आयोजित हो रहे नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में उन्हें चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला है, जिसको लेके बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हैं। एंड उसके बाद जो है काफी कुछ जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, जिसको लेके फैंस भी काफी एक्साइटेड कार्तिक आर्यन थोड़े इमोशनल भी हो गए हैं इस बात को लेके कि यार यू नो मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। यार ऑफकोर्स जब आपको एक बड़े ग्रैंड लेवल पे कुछ अच्छा मिलता है और जो आप डिजर्व करते हो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक काफी डैशिंग मतलब जो है बंदा है और मतलब एक्टिंग भी काफी बढ़िया करता है कार्तिक भाई, नो डाउट यार। सो कार्तिक आर्यन को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन यार, इतनी अच्छी अचीवमेंट उनको मिली है इस अवार्ड के लिए, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। चंदू चैंपियन का एक गाना था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और इनमें इनकी मूवी के अंदर एक और भाई थे, उनका मेरे पास अभी भी मतलब मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, वो पढ़ा भी होगा मेरे पास। बहुत ही कमाल के इंसान है और मतलब फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने काफी कुछ बात की थी इस मूवी के बारे में, बहुत अच्छा लगा था। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे एक सेगमेंट का टाइम हो गया है जिसके बारे में ऑफकोर्स आपको बताना तो बनता है भाई आज की सुबह, और अगर आपने इसका जवाब दिया तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को भी। ये इसमें कौन सी चीज की बात करूं, आपको पता है ना चंदू चैंपियन की बात हुई तो ये गाना अरिजीत सिंह का

0: वंडरफुल ट्रैक जरा सी देर में आपकी रेडियो पे ऑनियर होगा, लेकिन उससे पहले चलिए अभी आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैडम को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं जरा पूछो सवाल।
1: क्वेश्चन।
0: चलो भाई, फाइनली क्वेश्चन का टाइम आ गया है। बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक आपके लिए बेसिकली प्ले करने वाला हूँ आज की सुबह। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि अभी जो यहाँ पर गाना बज रहा है वो कौन सा गाना है। अगर आप बताते हैं सही जवाब तो आज की सुबह आप बनेंगे हमारी शो की सुपरस्टार। चलो जी, सुपरस्टार बनने के लिए तैयार हैं आप? वेरी वेरी गुड। चलो, एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक है जिसको आप सुनते हैं हमेशा। ये गाने आपके रेडियो पर आते रहते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा आज की सुबह कि जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है वो कौन से गाने का म्यूजिक है। ठीक है जी, अगर आप पहचान जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा और फिर हम आपको सुपरस्टार बनाएंगे आज की सुबह। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक म्यूजिक, ये आपको बताना है कौन सा वाला गाना है। अगर आप देंगे सही जवाब तो आप बनेंगे आज की सुबह हमारे शो की सुपरस्टार। सुका गए हमारा आज का सवाल। टेंडरन, आज का मेरा सवाल किधर है यार? थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं, जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक हम आपको एक और बात बताई दिए देते हैं फटाफट से। कौन सी बात बतानी थी मुझे आपको? अगर आप अपने फोन पे टेम्पर्ड लगवाने जाते हैं तो आपको अब कोई सा भी टेम्पर्ड नहीं लगवाना होगा। एग्जैक्टली, उसके लिए भी अब आपको एक खास चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन सी खास चीज है ये मैं आपको जरूर बताएगा, लेकिन अभी वापस जब आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आज हो क्या रहा है यार, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। चलो जी, काम करते हैं, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है मामला। अब हम आपसे दूसरे सवाल पूछ लेते हैं बिना किसी देरी के। आप हमको ये बताओ मैसेज करके, बच्चन साहब की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने भूत का रोल निभाया था? एग्जैक्टली, चलो सही टाइम पे सही काम आ गया दिमाग में क्वेश्चन। आप बताओ मैसेज करके, एक बच्चन साहब की फिल्म आई थी उसमें वो ऐसे भूत का रोल प्ले करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसके साथ वो बहुत उसकी हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये और बहुत ही यू नो, बारी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। बहुत ही यूनिक फिल्म थी, बच्चन साहब के बड़े बड़े नाखून एंड यू नो, बड़ा अजीब सा उनका इसमें रोल था, मतलब भूत वाला रोल था, तो ऑफकोर्स वो भूत ही बन रहे होंगे। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब ने भूत का रोल प्ले किया था? अगर आपको पता है वो कौन सी फिल्म है तो मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे। बच्चन साहब की वो कौन सी फिल्म है जिसमें भूत बने थे वो, एंड साथ में उसमें जूही चावला भी थी। चलो, अभी मैंने एक और क्लू आपको दे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना 9837896896 पर। फिलहाल कार्तिक आर्यन को वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, चंदू चैंपियन के लिए उनको अवार्ड मिला। उसी बात पे ये गाना, इसी फिल्म का, सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop.
1: हाँ जी भैया, बिल्कुल मजा आ रहा है। सुबह के 10 जो बज चुके हैं, घड़ी में डालो भैया। सुबह है बुधवार की मॉर्निंग में, सुबह के 10 बज चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। वो कौन सी फिल्म है बच्चन साहब की जिसमें अमिताभ बच्चन ने भूत का रोल किया था, साथ में उनकी जो इसमें एक्ट्रेस थी वो थी जूही चावला। एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चन साहब उनकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही अजीब सा बच्चन साहब का कॉस्ट्यूम होता है, बहुत ही पिक्चर अच्छी है, क्लाइमेक्स अच्छा है मूवी का, मूवी बहुत अच्छी है, देख के आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसमें वो पूरा भूत वाला रोल करते हैं एंड बच्ची के दादू होते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अगर आपको समझ में आ रही कौन सी फिल्म की बात करें आनंद, सो प्लीज टेल अस। आप उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, सेंड कीजिए उसको मेरे व्हाट्सएप पे वेंसडे की सुबह 9837896896 पर। बताइए बच्चन साहब की कौन सी फिल्म है जिसमें वो भूत का रोल करते हैं। बाबा आजकल भूत बड़े परेशान है क्योंकि रात को सब सोते थे तो भूत से सबको डर लगता था, आजकल रोज रात रात भर सारे लोग तो मोबाइल में जागे रहते हैं। अब भूत भी सोचते होंगे यार कहाँ जाएं, किसको डराएं, सब तो रात भर तांडव कर रहे हैं मोबाइल में बैठ के। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट यार, आप सुन रहे हैं आनंद, गुड मॉर्निंग।

प्यारा सॉन्ग यार, दिया मिर्जा इमरान हाशमी, फ्लैश बैक वाला गाना, स्कूल टाइम में सुना भाई, मजा आ गया सुन के। सुबह सुबह एकदम मूड एकदम फ्रेश हो गया यार। हेलो हाय, वेलकम बैक है वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ये सुबह बहुत ही प्यारी है और हर दिन की सुबह प्यारी होती है यार। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ भैया, कोई और भी आपसे पूछता होगा। लेकिन फिलहाल अभी टूथपेस्ट में नमक नहीं, टूथपेस्ट में वेज है या नॉन वेज, ये आपको पता लग सकता है। एग्जैक्टली। हाय, कैसे हाल चाल है? एक बार फिर से आनंद एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया है आपके रेडियो सेट पे। यस, आपका साबुन शैम्पू टूथपेस्ट तक जो है अब हर पैकेट पर दिखेगा वेज या नॉन वेज का एक सिंबल, एक संकेत आपको मिलेगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। बेसिकली जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी, जो वेज है वेजिटेरियन है उनके लिए, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है यार। आपको जो है अब एक कुछ ना आपको वहां पे सिंबल्स नजर आएंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेज है या नॉन वेज। क्या है पूरी बात, चलिए बताता हूं। देखो भाई, जब आपका साबुन शैम्पू वेज या नॉन वेज वाला ये मुद्दा निकाल के ले आएगा तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएंगी चीजें। तो क्या है पूरा माजरा, जरा ध्यान से सुनो भैया। क्या आप जानते हैं कि आप रोजमर्रा के जो इस्तेमाल करते हैं साबुन टूथपेस्ट या कोई भी कॉस्मेटिक चीजें, उसमें क्या चीज है क्या नहीं है, या जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वो वेज है या नॉन वेज, ये आपको बहुत ईजिली पता चल सकेगा। ग्राहकों की फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 21 सितंबर 2026 को एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब खाने पीने की चीजों पर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं इन पर वेज नॉन वेज के निशान अनिवार्य होंगे। 4 नियम बड़ी बात लागू की गई है भाई साहब। अगर ग्रीन बिंदी आपके प्रोडक्ट पे नजर आती है, आपको आपके टूथपेस्ट में, आपके साबुन में या जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, अगर उस पे ग्रीन कलर का सिग्नल आपको दिखता है, एक छोटी सी बिंदी इन्होंने जो है सेट की हुई है, अगर ये आपको दिखी तो समझो आपका जो प्रोडक्ट है इसका मतलब पूरी तरह वेज है। एग्जैक्टली, ग्रीन मतलब शाकाहारी है। आपके प्रोडक्ट की जो काउंटिंग है वो, जो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी इस चीज में कि भैया वो वेजिटेरियन है उस प्रोडक्ट को जो लोग यूज करते हैं। एंड सेकेंड, अगर आपके प्रोडक्ट पे अनफॉर्चुनेटली रेड या ब्राउन कलर की मतलब भूरे से रंग की अगर आपको छोटी सी डॉट दिखाई देती है, यानी कि बिंदी दिखाई देती है, तो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट नॉन वेज है। तो ये चीज आपको जो है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो भैया ये निशान आप कहाँ देख सकते हैं? देखिए, ये डॉट का जो पैकेट है उसके बिल्कुल सामने ठीक ऊपर लगा होगा, एक छोटा सा बारीक अक्षर में आपको दिखाई देगा। जब आप सामग्री पढ़ रहे होंगे तो उसी के आसपास ये दिखाई देगा। एंड ये मोस्टली अभी किन किन चीजों पर लागू किया गया है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साबुन टूथपेस्ट शैम्पू और इन सभी चीजों के ऊपर जो है ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं तो ये मत पूछिए भैया इस टूथपेस्ट में नमक है, उससे पूछिए क्या इस टूथपेस्ट के ऊपर ग्रीन सिग्नल है या नहीं, रेड सिग्नल है या नहीं, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा।

0: बॉस, फिलहाल ये थी अभी कलर का अपडेट जो मैंने आप तक फटाफट पहुंचा दी है। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे ढेर सारी बातें आप तक पहुंचती हैं भैया। आपको बता दें 50,000 से ज्यादा सिक्कों वाले बप्पा बनाए गए हैं जिसके दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एंड ये एक अनोखी जो है मूर्ति तैयार की गई है, 50,000 कॉइन्स से जो है ये मूर्ति बनाई गई। ओ माय गॉड, सोच रहे हैं आप क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है गणपति बप्पा को लेके, क्या मतलब जो है उमंग है लोगों में। और 25 सितंबर को जो है अनंत चतुर्दशी है जिस दिन बप्पा का ग्रैंड लेवल पर विसर्जन होगा। चलिए भाई, सारी अपडेट आपको पता लगती रहती है, लेकिन आप कांट रोड पे भाई कभी भी निकल जाओ, एक ना एक बप्पा के दर्शन आपको हो ही जाएंगे, मतलब एक ना एक विसर्जन आपको देखने को मिल ही जाएगा। डेली जो है लोग निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए फिलहाल मैं भी आगे निकलता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ आज की सुबह एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे मैसेज करके बताइए वो कौन सी फिल्म है जिसमें बच्चन साहब जो है क्या बने थे, भूत का रोल कर रहे थे। यस ऑफ कोर्स, अगर आपको पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। अभी लौट कर आता हूँ अपने सही जवाब के साथ और बताऊंगा भैया कौन है आज के हमारे शो का लकी वाला विनर। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसी ट्यून इन रहो, मैं अभी फटाफट आ रहा हूँ। एंड अभी एक अच्छा सा गाना भी आपके लिए बजा रहा हूँ, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूँ, चलो इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाकी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो जरूर मुझ तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, मैसेज मेरे पास बड़ा इमीडिएटली अच्छा सा पहुंच गया। आनंद जी, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि स्कूल के अंदर भारत में ये रूल सेट किया गया है कि जो भी बच्चा लंच बॉक्स में मेथी की सब्जी लाएगा तो उस पर 20 रुपीज का चार्ज लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल स्कूल के खर्चे थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो ये फाइन लेने का एक नया तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। ओ माय गॉड, सीरियसली यार, आई डोंट नो, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। 10:10 हो रहे एग्जैक्टली अपने इंडिया में ही एक ऐसा बड़ा अजीबोगरीब किस्सा निकल कर आया जहां पर स्कूल के अंदर बच्चे अगर अपने टिफिन में यानी लंच बॉक्स में मेथी की सब्जी लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर 20 रुपीज का चार्ज लगेगा। सोचो यार, मतलब ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आ गया है जी। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लकी विनर को लेकर आ रहा हूं, आप कहीं मत जाइए। फिलहाल कुछ एड ब्रेक, फिर एक अच्छा गाना, मेरी एंट्री हो रही है वापस इसी स्टेशन पर।
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें, इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

चलो भाई आगे जाने का टाइम हो गया, मतलब चलो जी मेरा भी जाने का टाइम हो गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था जिस पर ढेर सारे जवाब जो है मेरे पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन उम्दा और खूबसूरत मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे एंड वंडरफुल मैसेज करने के लिए। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, मतलब इतना बढ़िया लगता है। आज मैंने इतना आसान सवाल पूछ लिया था कि मेरे पास 50-60 मैसेज पहुंच गए भाई साहब, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए किसी एक को शॉर्टलिस्ट करना, लेकिन फाइनली बड़ी मतलब जो मुश्किलों से लकी विनर निकाला था मैंने। नाम इनका सचिन है, कंग्रेचुलेशन भाई, ये ड्राइविंग करते हैं। कॉल मेरी इनसे हो गई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा बिजी है, अपनी जर्नी पे जा रहे हैं इसलिए बात नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं सचिन जी, बहुत बहुत बधाइयां। एग्जैक्टली, वैसे बाकी लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी। एग्जैक्टली यार, मुरादाबाद की जनता सच में बड़ी कमाल की। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके नाम फटाफट शामिल करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा गला ऐसे ना सूख रहा है, मेरे को एक तो पानी शानी पीने की अभी जरूरत पड़ रही है, आप भी पानी पीते रहा करो। ये हमारे साथ जुड़े मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शैयद शारी के लिए लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? बिंदास मॉर्निंग शो सुनकर मॉर्निंग बिंदास हो जाती है, काफी अच्छे गाने आप प्ले करते हैं। और राइट आंसर है भूतनाथ। एग्जैक्टली, सचिन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सचिन जी थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। ये मैसेज आ रहा है धर्मेंद्र कश्यप लाइन पार ढक्का से, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है धर्मेंद्र जी। हाय रवि सैनी जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? रवि भाई ने एकदम सही जवाब दिया है। गुड मॉर्निंग आनंद सर, ये भूतनाथ मूवी थी, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। विक्की सागर लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, सही जवाब के साथ जुड़ रहे हैं। कोमल जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, हाय कोमल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। इसके अलावा ईशा मेरे साथ जुड़ी है, मोहम्मद कामिल रामपुर से जुड़े हैं, गुलाम जलानी पाशा जुड़े हैं मेरे साथ सहारनपुर से, जून रोजी पलविलीस मेरे रेगुलर लिसनर मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। लिखते हैं गुस्सा और आंधी दोनों में दोनों एक समान होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। आई टोटली एग्री विद यू यार। रिहाना जुड़ चुकी है रानी नागल से, गुड मॉर्निंग। चमन लाल साहब पुतली घर रोड से जुड़े हैं हमारे साथ। बुद्धि बिहार से जुड़ चुकी है प्रीति, हाय गुड मॉर्निंग प्रीति। आशियाना कॉलोनी से जुड़े हैं मनदीप जी, जय श्री राम। आनंद दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की सुबह। इसके अलावा शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है, ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? मुमताज आलम, साथ में मेरे दोस्त राकेश वर्मा, गुड मॉर्निंग। जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं, साथ में तारीख भाई जुड़े हैं, हाय गुड मॉर्निंग जी। ये महेश्वरी साहब जो है हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हरिओम जी थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए। टीके अरोड़ा चंदीनगर से जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं सही जवाब दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी ठाकुर, गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब नाम भी होगा आपका। हाय हेलो सर, माय नेम इज प्रिंस, गुड मॉर्निंग प्रिंस, सही जवाब देने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। आज यार बहुत सारे मैसेज हैं। ललिता कश्यप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, सही जवाब के साथ, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, कैसे हालचाल है? ये क्या है इनका नाम, विभू कश्यप मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं मेरी। हाय सुप्रभात आनंद जी, मोहन स्वरूप रामपुर से जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है? सही जवाब के साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू मेरे भाई। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है हिमानी का, गुड मॉर्निंग हिमानी, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये जो मॉर्निंग इतनी ब्राइट हो जाती है आपके साथ आकर, मतलब आई कांट टेल यू, कैसे बताऊं, मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। इसलिए तो ये जो एक अंदर से किक आती है ना कुछ नया करने की, वो आप लोगों के प्यार की वजह है। लॉट्स ऑफ मैसेजेस, एवरीबॉडी पीपल आउट देयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द मॉर्निंग शो, बहुत अच्छा लगता है, इतनी अमेजिंग बातें आप करते हैं। चलो यार अभी जाने का टाइम हो गया है, भूतनाथ मूवी का डायलॉग था, कुछ टेक्स्ट मैसेज आए, अंजलि का आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, अमरोहा से मेरे साथ जुड़ी है नेहा, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, लिखती है वेरी वेरी नाइस शो, थैंक यू नेहा। गागन से मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग नमन, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग नमन। एंड एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय सर हाउ यू, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई, इतने सारे मैसेज आप लोग करते हो ना उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ, और अभी आपसे इजाजत भी चाहता हूँ, 10:20 हो गए, 10 बजे इजाजत लेता हूँ लेकिन 10:20 हो गए हैं, 20 मिनट आपके लिए बात करिए। चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए, ऐसी उम्दा और बेहतरीन जानकारियों के लिए प्लीज कीप लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6, ऐसे ही रॉक मचाते रहो, स्टे ट्यून्ड टू FM मुरादाबाद। कल सुबह होगी मेरी आपकी मुलाकात, टिल देन टुमारो मॉर्निंग, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अगर आप आज आपके यहाँ पे गणपति विसर्जन है तो गणपति बप्पा मोरिया, वेंसडे का दिन है,
ग्रीन पहन के आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आज आपका लक डेफिनेटली साथ देगा। अच्छा सोच के निकलो यार, पॉजिटिव मुस्कान लेते हुए आगे बढ़ जाओ। फिलहाल के लिए आरजे अनन्या से लेता है इजाजत, साइनिंग ऑफ, बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

कोई झटका लग सकता है कि अभी मैंने आपको बाय बोला था वापस कैसे आ गया हूँ भाई। अभी खुशी को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज़ वो कुछ काम कर रही है, मतलब शी इज बिजी। तो मुझे लगा तब तक मैं आपसे राब्ता कर लेता हूँ थोड़ा सा, और पानी पी के फाइनली बड़ा रिलैक्स मिला यार। खैर अभी चाय कॉफी तो नहीं है, ब्रेकफास्ट तो मुझे करने जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। जब तक खुशी नहीं आती मैं आपके साथ थोड़ी सी चिट चैट कर लेता हूँ, है ना। अभी 10 बज चुके हैं, 10 बज के इनफैक्ट 23 मिनट हो गए हैं, 10 से ही सो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में। कुछ भी आप सुनना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर लो, अभी मैं हूँ आपके साथ, है ना। बिंदास मॉर्निंग से निकल चुका हूँ, मॉर्निंग मसाला में शिफ्ट हो चुका हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है यार ये, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि उठो आंखें खोलो मेरे यार, पानी लेकर आया हूँ, जरा मुंह तो धो लो मेरे लाल। सुप्रभात।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Life में ना कभी कभी इंसान जो चाहता है वो उसको मिल जाता है, कभी कभी वो जो नहीं चाहता है ना वो भी उसको मिल जाता है, और कभी कभी जो सच में दिल से चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलता यार। हाय, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। खुशी जब तक आ रही तब तक हम आपसे चिट चैट कर रहे हैं इस स्टेशन पर। बुधवार की सुबह है, सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मॉर्निंग मसाला।

दोस्तों बहुत सारी बातें लेकर आपके बीच में तो नहीं बोलूंगा, मैं आ गया हूँ क्योंकि जैसी खुशी आएगी मेरी एंट्री बाहर हो जाएगी। फिलहाल जब तक आपके साथ बैठे हैं बस यही कहना चाहते हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट यार। फिलहाल मैसेज ढेर सारे पहुंचे हैं मेरे पास। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? नमस्ते, ये हमारे साथ जुड़े हैं मोहन स्वरूप जी। इसके अलावा आदरणीय आरजी जी को नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें, थैंक यू सो मच। हेलो जी, मेरे प्रिय मित्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये हमारे साथ जुड़े हैं गणेश प्रसाद होजदार काठमांडू से, गुड मॉर्निंग जी। देखो बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। चलिए जब तक एक काम करते हैं, आप लोग ढेर सारे मैसेज कर रहे हैं, जब तक खुशी आ रही है तब तक मैं एक अच्छा सा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। इस स्टेशन पे आप कहीं मत जाइए, अभी जरा सी देर में लौट कर आएंगे। और ये गाना मैं अपनी पसंद का नहीं बजा रहा हूँ, ये गाना यहाँ पर आया है हमारे पास रिक्वेस्ट रोहन जी का। ये गाड़ी में है, काशीपुर जा रहे हैं अपनी जॉब पर, लिख रहे हैं आई एम ऑन द वे, प्लीज प्ले माई फेवरेट ट्रैक गुरमाई। चलिए जी इसी को सुनते हैं और मैं यहाँ से निकलता हूँ अब, खुशी के साथ एंजॉय कीजिए अगला शो उसी का फेवरेट। मैं बिंदास मॉर्निंग में नहीं था, मैं इसी शो में था मॉर्निंग मसाला में, खुशी थोड़ी बिजी थी, वो आ गई है, मैं जा रहा हूँ, बाय।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब सर श्रीकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और एवरीवन, अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक वेनेसडे मॉर्निंग है एंड ब्यूटीफुल। मौसम की बात करें तो ब्यूटीफुल भैया, बहुत गर्मी है बाहर। हाय रब्बा, देखिए अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अभी तो सुबह के 10:34 ही हुए हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो मैं आपसे कहूंगी कि घर से बाहर निकल रहे हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और एवरीवन, देखिए यू नो वेनेसडे मॉर्निंग है और आज का थॉट मेरे मन में है, बहुत ही खूबसूरत सा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, जब बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं, कौन कहता है तुमसे ना हो पाएगा, कोशिश तो करके देखो, क्या पता पहली बार में ही जीत निश्चिंत हो जाए। नथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योर, एवरी थिंग इज पॉसिबल एवरीवन, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। बस खुद पर विश्वास रखो, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा कर सकती हो। ठीक है एवरीवन, तो खुद पर भरोसा रखिए, जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, वो सब आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने भी कहा, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए। और इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। आज की सुबह आप भी मेरे साथ राइट नाउ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जल्दी से हमें मैसेज पहुंचाइएगा, मुझे बेसब्री से आपके संदेशों का इंतजार है। और हमारे पास बैक टू बैक ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आए हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार करने के लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग ट्रैक हो जाए आज की सुबह आपके लिए। देखिए इतना हॉट वेदर है तो कुछ कूल गाने हो जाए एंड एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह आप सुनिएगा। मैं लौट कर बस वापस आती हूँ छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ रेडियो किसने को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आप तक डिलीवर करनी है, आप तक पहुंचानी है आज की सुबह, तो सुनते हैं ये अमेजिंग गाना।
1: हर

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और दोस्तों, भारत का ऐतिहासिक गोल्ड, जी हाँ दोस्तों, नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिखाया। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया की शानदार जीत। और दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि उन सपनों की उड़ान है जिन्हें हमारी बेटियों ने मेहनत और हौसलों से सच कर दिखाया है। गोल्ड पर गर्व है, हमारी बेटियों पर नाज है हमें, एंड जोरदार क्लैपिंग तो होनी चाहिए। इतना खूबसूरत काम जो किया है हमारी बेटियों ने, क्यों भारत का नाम रोशन किया है। और आप भी कुछ करना चाहती है ना, तो बिल्कुल कर सकती हैं, बस वो जज्बा चाहिए। एंड क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो आप ना कर सकें, सब काम आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके जुनून, आपका जो लगन है, जो मेहनत है, और खुद पर आत्मविश्वास। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं ना, तो आधी लड़ाई ना हम वहीं जीत जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर लगातार खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, मैं तो उनको भी जल्दी से हम लोग शामिल कर लेते हैं। मैं शामिल करती हूँ, हमारे पास क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से श्रोता। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचा है आज की सुबह, प्रिय मित्र खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज की सुबह गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का।

सिंह जी के मैसेज हमारे पास आए हैं मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए एवरीवन, मैं लौट कर आती हूँ कुछ और खूबसूरत अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते।

हाय एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और शुभ नाम आपको मालूम ही है। ओहो, तुसी भूल गए हो? अच्छी, मैं बता देती हूँ आपको, तुसी टेंशन ना लो। शुभ नाम है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज बहुत अच्छा सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ एवरीवन। दोस्तों, 23 सितंबर की तारीख है और आज मनाया जाता है एक खास दिन, क्योंकि आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस। आयुर्वेद यानी हमारी वो प्राचीन हेल्थ नॉलेज जो हमें सिर्फ बीमारी के बाद इलाज की बात नहीं बताती, बल्कि बीमारी से बचाव और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर भी फोकस करती है। और इस साल की थीम बहुत ही खूबसूरत है, स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। जब जरा सोचिए विवर, हमारी दादी नानी के जमाने में छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ना घर में ही कितने सारे ट्रेडिशनल नुस्खे हुआ करते थे ना, तुलसी, अदरक, हल्दी, नीम, और ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये भी है कि हर घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति के लिए सही हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसलिए किसी बीमारी या लगातार बनी रहने से कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके हुए है, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आज सेलिब्रेट किया जाते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो गुड मॉर्निंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:17। अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक जस्माने की आवाज में। और दोस्तों आज की सुबह चलिए कुछ ऐसा मीठा सा हो जाए, कुछ हाँ अब जरा हो जाए कुछ मीठा मीठा। हाँ देखिए एवरीवन, पेड़े तो आप सब खूब खाते होंगे है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आज की सुबह। मैंने जैसे आपसे कहा कि पेड़े तो आप सबने खूब खाए होंगे है ना, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के किस शहर के पेड़े पूरे देश में मशहूर हैं? जरा सोचिए और अपना सही जवाब हमें पहुँचाएगा। मैंने सोचा आज की सुबह कुछ मीठा मीठा सा सवाल हो जाए। हाँ पेड़े खाने की शौकीन आप हैं मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने सवाल आप लोगों से पूछा है। आप मुझे बताइए दोस्तों कि वो कौन सा शहर है जिस शहर के पेड़े पूरे देश में मशहूर है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा सिटी है जिस शहर के पेड़े पूरे देश में मशहूर है। जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइए और हमें सही जवाब पहुंचाइए। देखते हैं आज की सुबह कौन हमें सबसे पहले जवाब पहुंचाते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। एक बार मैं फिर से सवाल रिपीट कर देती हूँ, ठीक है एवरीवन। मैंने आपसे कहा है कि पेड़े तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के किस शहर के पेड़े पूरे देश में मशहूर हैं? उस सिटी का आपको नाम बताना है। और हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। देखते हैं आज की सुबह कौन बनते हैं हमारे शो के लकी सुपर स्टार। जब तक आप अपने जवाब पहुंचाते हैं तब तक हम आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। दुर्गी सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है कल्याणपुर मुरादाबाद से, और ये कहते हैं आज मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ अपने दोस्त के फोन से। ओके, कल हमारे दोस्त मुंबई जा रहे हैं तो उनके लिए गाना सुनना चाहते हैं हम। श्योर सर, ये ट्रैक हम आपको जरूर सुनाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, नदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। अगला संदेश हमारे पास आया है यहाँ पर जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस जी का, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह रिहान अली जी का मैसेज आया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये संदेश हमें पहुंचाया आज की सुबह रेडियो मुरादाबाद की प्रेजेंटर को, हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद सिटी के मौसम की. जी हाँ, आज का मुरादाबाद का वेदर कैसा रहने वाला है दोस्तों? आज का जो तापमान है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. तो घर से निकलते समय पानी साथ रखिए और तेज धूप में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए. और हाँ दोस्तों, शाम की तरफ मौसम थोड़ा सुकून देने वाला हो सकता है, तो अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 के साथ. एंड एवरीवन, अभी बात करते हैं बॉलीवुड अपडेट की. और 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गीतकार मनोज मुंतशिर जी को फिल्म मैदान के गीत जाने दो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनके लिए ये सम्मान उनकी बेहतरीन लेखनी और गीतों के जरिए दर्शकों से जुड़ने की एक और बड़ी उपलब्धि है. दोस्तों, यानी एक बार फिर से उनकी कलम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बना ली है. और मैदान फिल्म से बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिनके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है. तो चलिए सुनते हैं ये गाना और मैं लौट कर आती हूँ. तब तक आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर नगमा जी की आई थी।

आपको दोस्तों। लेकिन मैंने आज की सुबह आपसे पूछा था कि पेड़े तो हम सब ने खूब खाए हैं, है ना, और खाते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के किस शहर के पेड़े बहुत मशहूर हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा सिटी है जिस सिटी के पेड़े पूरे देश में मशहूर हैं? आपको सिटी का नाम बताना है। एंड हमारे पास यहाँ पर सही जवाब आए। मैं चाहती हूँ कि और भी हमारे जो लिसनर हैं वो भी पार्टिसिपेट करें आज की सुबह। तो एवरीवन, आपके पास भी ये मौका है, जल्दी से हमें सही जवाब पहुँचाएगा। यूपी में कौन सा ऐसा सिटी है जिस सिटी के पेड़े बहुत ज्यादा मशहूर है पूरे देश में? बताएगा कौन सा वो सिटी है उत्तर प्रदेश का, उस सिटी का नाम आपको बताना है। एंड बताइए, इतना मत सोचिए, पेड़े तो आप खाते रहते हो ना, तो बता भी दीजिए अब। और सुनेंगे अभी गाना, बहुत ही प्यारा सा। इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है दुर्गेश सैनी जी ने, तो सुनते हैं ये अमेजिंग गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी अपने सही जवाब हमें पहुंचा दीजिएगा।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

अभी आपने ये ट्रैक सुना हाई गर्मी, और सच में बाहर बहुत गर्मी है इस वक्त हमारे मुरादाबाद का। जो अभी टेम्परेचर है करंटली 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर निकल रहे हैं तो पानी की बॉटल साथ रखिए और धूप से थोड़ा बचिए और गर्मी को हावी मत होने दीजिए। और वैसे भी मौसम चाहे कितना भी गर्म हो, एफएम मुरादाबाद 89.6 पर ना आपकी खुशी लेकर आती है आपके लिए ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे कूल ट्रैक जो आपको इस गर्मी में भी राहत देंगे। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो मैं जल्दी से बिना किसी देरी के शामिल कर लेती हूँ। और आज हमारे शो के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार ये भी हम आपको बता देते हैं। आज हमारे शो की लकी सुपरस्टार बनी है, बता दें आपको, चलिए और ये बता ही देते हैं, बहुत इंतजार करा दिया है, अब इंतजार बिल्कुल नहीं करवाएंगे। हमारे पास हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सही जवाब पहुंचाया है रानी नांगल से रिहाना जी ने। आज के सुबह की लकी सुपरस्टार बनती हैं हमारे शो की हमारी रेगुलर लिसनर रिहाना जी। तो रिहाना जी आप बनी हैं आज हमारे शो की लकी सुपरस्टार। आपको बहुत बहुत बधाई है और जोरदार तालियां भी आपके लिए।

राइट आंसर आपने पहुंचा है रिहाना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है डियर। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था आज के सुबह के उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सिटी है जिस सिटी के नाम पेड़े पूरे देश में मशहूर है। एंड स्वीट तो सबको पसंद होता है ना, कोई कम खाता है तो कोई ज्यादा खाता है। और पेड़ों की अगर बात करो तो वही बहुत टेस्टी होते हैं। एंड सही जवाब हमें रिहाना जी ने पहुंचा है, मथुरा के पेड़े पूरे देश में मशहूर हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। खुशी जी आपको हमारा आदाब, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। एंड उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। और ये कहते हैं आज का आपका शो हमें बहुत ही पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर ने लिखा है कि शो के माध्यम से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाया है आज की सुबह इन्होंने नाम नहीं लिखा है बट गुड मॉर्निंग विश किया है, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आसिफ जी का मैसेज हमारे पास इटली से आया है और ये कहते हैं आज आपने जो सवाल पूछा है ना मैम, उस शहर का नाम है मथुरा। एग्जैक्टली राइट, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब पहुंचाया आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाया है आज की सुबह सालिम अंसारी जी ने, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। रिहाना जी देखिए अभी यहाँ पर ना हम आपको एक प्यार से गाना सुनवाते हैं, आपने इतना खूबसूरत सही जवाब दिया है तो मीठे मीठी बातें हुई है, मीठा सा ही क्वेश्चन मैंने पूछा है तो एक मीठा सा गाना भी हो जाए। चलिए एंजॉय करते हैं, ट्रैक में लौट कर आती हूँ। सुन रही है फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गन गनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और देखिए एवरीवन, हमने स्वीट की

रैपिंग तो बनता है, आपने हमें सही जवाब पहुंचाया है एंड इसी बात पर देखिए आपके लिए जोरदार तालियां। ये क्लैपिंग आपके लिए, तो बताइए आप हमारे स्टूडियो कब आ रहे हैं, हम आपको खिलाएंगे मथुरा के पेड़े। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आपने पार्टिसिपेट किया हमारे शो में और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति क्योंकि जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हाँ सी यू सून, मुलाकात करेंगे हम आपसे 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु आपके रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें। डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
5: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
4: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर उपस्थित हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर। सर नमस्कार।
2: नमस्कार जो दिव्या जी, और आज के कार्यक्रम में कुछ आपसे खेती बाड़ी की जो बातें करेंगे।
1: आज के कार्यक्रम का विषय भी हम आप श्रोता साथियों तक पहुँचा रहे हैं। आज हम कार्यक्रम में फसल के अवशेष प्रबंधन के बारे में बहुत सी जानकारी और बहुत सी चर्चा करने वाले हैं। आज हम जब अपने आसपास देखते हैं और पर्यावरण के दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो खेती किसानी के बाद जब फसल के अवशेष के प्रबंधन की बात आती है, तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं से हम देखें तो पर्यावरण पर पड़ता है।
2: जी बिल्कुल।
1: और अभी जिस तरीके से हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, या फिर जैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उस

0: लिए भी ये मुद्दा एक जरूरी पहलू बनकर निकलता है।
1: जी
0: तो इसलिए मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता है कि आज की चर्चा में हम सर आपसे बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें ले पाएंगे।
1: जी।
0: तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले विषय से, जो कि यह है कि हमारा जो भारतीय सरकार है वो अलग अलग तरह से योजनाएं लेकर आता है, पॉलिसीज लेकर आता है हमारे
1: जी
0: किसानों के लिए। भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम केयर्स पॉलिसी के बारे में बहुत सी जानकारी ऐसी है जो बहुत से हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाई है, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम केयर्स के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके हैं और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केयर्स के हैं, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है, और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको

0: लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: इस पॉलिसी के बारे में सर ने हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद ही हम हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी हमको जरूरी जानकारी लेना चाहेंगे। उर्वरक उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें हमें बताई हैं, हम उसके बारे में।
0: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है, देख ही देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूं, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें,
1: जी
0: क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: कार्यक्रम में अभी अभी हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना और इसी के साथ हम कार्यक्रम के आज के विषय की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से फसल अवशेष का प्रबंधन सही तरीके से होना जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: आमतौर पर नागरिक जो खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं या उन्हें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत आइडिया नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि फसल अवशेष प्रबंधन होता क्या है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: फसल अवशेष प्रबंधन क्या है, ये आपका सवाल है। तो इसके बारे में हम ये समझे कि जब जो भी हम फसल उगाते हैं तो उसमें एक फल होता है या उसमें अनाज होता है, वो उसका उत्पादन है। तो वो हम उसको अपने घर ले आते हैं, उसकी हमने फसल की कटाई करी तो वो हम उसका थ्रेसर के द्वारा निकालना है या हाथ से तोड़ना है तो वो हम ले आते हैं, तो वो हमारी उपज होगी, हम एक तरह से कह देते हैं
1: जी।
0: लेकिन वो उपज जिस पौधे पर लगी है वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फसल, उसको बोलते हैं फसल अवशेष। क्योंकि जो हमने उपज ले ली उसके बाद जो शेष रहा वो फसल अवशेष है, तो उस शेष का हमें प्रबंधन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि अगर हम ये देखें कि कोई फसल हमने ली वो 4 महीने या 3 महीने या 5 महीने खेत में रहती है तो वो बहुत सारा पोषण खेत से लेती है और बहुत सारा पोषण वो खुद तैयार करती है जो कि सूरज की रोशनी से होता है और ऊपर की जो आबोहवा है उससे वो तैयार करते हैं। तो पौधा अगर एक तरह से हम देखें कि जो उसने पूरे अपने जीवन काल में पोषण लिया है तो उससे दो चीजों का निर्माण होता है, एक तो फसल का जो पूरा हिस्सा जो पौधा है और दूसरा जो उससे हमें उपज मिले, तो एक तो उपज और दूसरा फसल अवशेष, ये दो चीजें उसी से तैयार हुई है।
1: अच्छा।
0: तो हम ये मान के चले कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो आबोहवा के अंदर जो आबोहवा से मैंने पोषक तत्व लिए या जो खेत से पोषक तत्व लिए का ये हिस्सा है। तो फसल अवशेष को हम इस तरह से उसको संभालें या उसका इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो फिर हमारे खेत की मिट्टी में जाए और उसके साथ संगलित होकर फिर उसको और ऊर्जावान बनाए, उसको और ताकत दे। क्योंकि जो अवशेष है वो अवशेष ये हम ये ना कहते कि ये बेकार की चीज है, नहीं, के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व और उसके अंदर वो सारी जो है जो मतलब जो है एक तरह से पोषकों की खान है जो उसने ली है, और अगर वह हमने सही ढंग से उसका जो प्रबंधन किया। अब क्या है कि हमने एक शब्द तो कह रहे हैं हम उनको बेकार न समझकर हम उनका सही ढंग से हम अपने ही खेत में उपयोग कर ले तो वह उसका सही प्रबंधन है। अगर हम उसका सही ढंग से उपयोग न करके उसको बाहर फेंक देते हैं या उसमें कहीं हम आग लगा देते हैं तो वह प्रबंधन नहीं है, वो हटाया तो सही लेकिन जहां हम उसको फेंक रहे हैं या जहां पर हम उसमें आग लगा रहे हैं उसके साथ साथ वहां जो आसपास के जीव जंतु है या जो आसपास का जो अवशेष थे या जो पर्यावरण था उसको भी उस तापमान से नुकसान होता है। तो आवश्यक यही है कि हम जो भी फसल अवशेष है उनको अच्छे से उपयोग में लाएं, उनका सही से प्रबंधन करें। प्रबंधन कहीं कहीं पर भी ऐसा भी होता है कि जैसे हम चावल ही लें, चावल की हम फसल करते हैं तो चावल का जो अवशेष है उसका पैकिंग में इस्तेमाल होता है।
1: ओके।
0: है जी, उससे बहुत सारी चीजें भी आजकल तैयार की जाने लगी है।
1: अच्छा।
0: है जी, दूसरा ये है कि अगर हम उसको अपने खेत में मिलाए तो एक तरह से खाद के रूप में काम कर देता है। अलग अलग स्थितियां आगे के समय में आ रही है तो प्रबंधन हम इस तरह से करें जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे कोई पर्यावरण को जो है लाभ ही मिले।
1: हाँ।
0: दूसरा हम अपने खेत की जो मतलब उर्वरक क्षमता है उसमें भी उसका विकास कर सकें, तो फसल अवशेष प्रबंधन को हम इस तरह से समझ सकते।
1: तो फसल अवशेष प्रबंधन आपने जिस तरीके से बताया उसे सुनकर ऐसा लगा कि जैसे हमारे खेत में से जो भी वेस्ट निकल रहा है उसके सही मैनेजमेंट के साथ ही हम उससे बेटर चीजें बना सकते हैं
0: या फिर उसका हम अपने खेत में इस्तेमाल करके अपने खेत की ताकत को अच्छा कर सकते।
1: तो सर कर कैसे सकते, मतलब यही जो है फसल अवशेष प्रबंधन जो है कैसे किया जाए
0: अब वो अगर हम कोई चीज फेंक देते हैं,

0: इसका हम उल्टा कर देंगे, हम उसे नफरत है। कोई चीज में हम आग लगा देते हैं तो हम इसका उल्टा कर दें, आग
1: कि
0: न
1: आगे
0: लगाए।
1: ना लगाए जी।
0: अब आग लगाए तो क्या करें हम उसको, जैसे सपोज हमने धान काटा
1: हाँ
0: तो धान का काफी हिस्सा हम अपने बाहर ले आए, लेकिन
1: जी।
0: फिर भी उसके नीचे का हिस्सा काफी रह गया, तो हम क्या करें, हमें अगर हमें अगली फसल लेनी है तो धान की कटाई के बाद हम अच्छे से उस खेत में हल चलाएं और जो अवशेष है उनको एक तरह से मिट्टी में मिला दें। जब
1: अच्छा
0: वो मिट्टी में जो मिल जाएंगे, तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे हमारे हितैषी जीव होते हैं, उनका वो भोजन होता है, उसको खाएंगे और जो उन्होंने उसमें से पोषण लिया वो लिया, लेकिन बाकी जो है वो वेस्ट के रूप में खेत में ही उसको मिला देते हैं, उसमें और ज्यादा पोषण होता है, तो वो अच्छे तरह से खेत में मिक्स हो जाते हैं और वो मिट्टी का ही एक रूप हो जाते हैं। हम उसको एक भाषा में बोल देते हैं कि एक तरह से सड़ जाते हैं,
1: अच्छा
0: है ना, तो वो एक तरह से मिक्स हो गया, मिट्टी का ही हिस्सा बन गया, मिट्टी थी मिट्टी में मिल गया, है ना, तो उससे जो हमारे खेत की उर्वरकता है उसमें विकास होता है। अब अगर हमने ऐसा नहीं किया, खेत में वो रहे,
1: हाँ
0: हमने देखा यार इससे अगर मैं अगली फसल लगाऊंगा तो नुकसान होगा, तो हम उसमें कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो आग लगा देते हैं, वह बहुत घातक है। एक तो क्या है कि जो फसल अवशेष थे वो बेकार हो गए,
1: जी
0: उनका हमारे खेत में उपयोग नहीं हो पाया। दूसरा ये है कि जब हम आग लगाते हैं तो बहुत जो मतलब तेजी से खेत का तापमान जो बढ़ता है, और खेत का तापमान जब ऊपर उठता है तो जो खेत की मिट्टी है उसका तापमान भी ऊपर उठता है, तो उसके अंदर जो ऐसे पोषक तत्व है क्योंकि तापमान से उनका ह्रास हो जाता है या वो एक तरह से नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट होते हैं। दूसरा जो खेत के अंदर लाभदायक जीव है हमारे, जो हमारे खेती में काम आते हैं,
1: जी
0: वो भी बेचारे मर जाते हैं और धीरे धीरे खेती सख्त हो जाती है। तो उस खेत में अगले बार जब हम खेत की क्रियाएं करेंगे तो वो उतनी आसानी से नहीं होंगी, खेत कमजोर हो जाएगा, और जो हमारे पास, हम ये मान के चले कि अगर हमारे पास कोई चीज थी तो हमने उसमें आग लगा दी जो हमारे काम की, तो वो काम की चीज को हमने एक तरह से वेस्ट कर दिया। अब इसका उल्टा हम करें, जैसा मैंने बताया कि उसे अच्छे से खेत में मिलाए, अच्छे से हल चलाए, थोड़ा समय दे दे, सड़ जाए, खेत में जरूर होनी चाहिए।
1: तरह से बड़ी तादाद पर कंपोस्ट पिट बनाने जैसा
0: हाँ
1: है ये।
0: हाँ कंपोस्ट पिट आप अलग से बनाते हैं, लेकिन ये खेत में ही कंपोस्ट बन गया,
1: अच्छा
0: आपको कहीं अलग से नहीं किया। अब बात ये आती है कि जो अवशेष आप काट के ले गए और आपके घर पे इकट्ठे हो गए, उनका क्या करें, उनका आप ऐसे कर सकते हैं जैसा आपने अभी कहा, उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, उसके कुछ आप गड्ढे जैसे बनाइए, आपके घर के आसपास जगह नहीं तो खेत के आसपास कोई एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, उसमें कुछ आप जो गड्ढा बनाए उसमें वो अवशेष डालें, फिर
1: जी
0: उसमें पानी छींटे, फिर उसमें सपोज अगर आपके आसपास कहीं गोबर की खाद है तो वो आप डाल सकते हैं, या अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी एक थोड़ी हल्की लेयर डाल सकते हैं, फिर अगली लेयर फसल अवशेषों की कर दें। ऐसे करते करते उस पूरे गड्ढे को आप जो भर दें और फिर उसमें थोड़ा पानी छिटक दे, जिससे कि जैव क्रिया अच्छे से उनको नमी मिले और वो उसमें अच्छे से उनका विकास हो जाए, और फिर इसे आप बंद कर दीजिए 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और ये सड़क एक अच्छी कंपोस्ट बन जाए। अब इसमें अगर आपको लगता है कि गोबर की खाद आपके पास है उसकी आप लेयर लगा सकते हैं, वो भी उसके साथ एक बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। तो ये दूसरा प्रबंधन हो गया, जो फसल अवशेष जो आपके खेत से बाहर ले आए थे उसके आप कंपोस्ट बना सकते। तीसरा प्रबंधन है, अगर आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहाँ पैकिंग के लिए सामान चाहिए, वहां पर भी ये काम आती है, पैकिंग में काम आ जाती है, तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको चारे के रूप में भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता
1: अच्छा
0: है, चारे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं फसल अवशेषों को, जैसे गेहूँ के हो, चने के हो, उसको भूसा होता है, चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो खेत में छूट रहा है उसको हम खेत में ही मिला दें, और चारे से अगर ज्यादा है तो हम उसका कंपोस्ट बनाए। तो ये कुछ ऐसे है अब जो मतलब फसल अवशेष का जो करना है प्रबंधन, और इससे उल्टा क्या नहीं करना है कि हमें
1: चलाना नहीं है
0: आग नहीं लगाना है, हमने उनको हमने ऐसी जगह बेकार नहीं फेंक देना है जहां उनका कोई प्रयोग नहीं है, जहां फसल नहीं होती है वहां नहीं फेंकना है, अपने खेत का खेत में ही रख के उसको अच्छे से उसका प्रबंधन करना है, जिससे कि वो खेत का ही हिस्सा एक तरह से बन जाए। ऐसा कहा जाता है कि जो फसल अवशेष है उनके अंदर भी पोषक तत्वों की, जैसे हमने फसल ली उसने अगर 100 यूनिट पोषक तत्व लिए जो आपके एक पौधे ने, तो उसमें समझ के मान के चलो अगर 25 यूनिट उसके अनाज में या फल में परिवर्तित हो गया भोजन, तो 60 से 75 यूनिट तक उस पौधे में ही रह जाता है, फसल अवशेष में रह जाता है।
1: अच्छा
0: तो आप ये समझिए उसके अंदर कितनी ज्यादा जो पौष्टिकता होती है जो हमारे खेत के काम आ सकती है, मिट्टी के काम आ सकती है, और खेत की मिट्टी अगर वो जाएगा तो वो आगे भी काम आ।
1: पर उसे चलाने से ही वो पूरा जो यूनिट है वो वेस्ट हो जाता
0: हाँ
1: है
0: बेस्ट हो
1: एनर्जी की
0: जाता
1: तरह
0: है।
1: से। बहुत ही जानकारी दी सर आपने फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी हुई, लेकिन एक बात ऐसी है जो मेरे मन में भी आ रही है और मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोताओं के मन में भी वो
0: जी
1: बात
0: जी
1: आएगी
0: जी
1: कि हम इस प्रबंधन की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं, तय समय होगा शायद, या तो हम खेती करने के जैसे ही फसल की कटाई हो जाती है तो
0: हाँ
1: उसके तुरंत बाद अवशेष को लेकर फिर उसका प्रबंधन करना
0: जी
1: शुरू
0: जी
1: करें, या फिर कोई दूसरा प्रोसीजर ऐसा जो हम एक सही टाइम फ्रेम के हिसाब से करें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उस पौधे के अवशेष में एनर्जी स्टोर है, तो वो एनर्जी हो सकता है कि उससे अगर हम सही समय पर उसे नहीं कर पाए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो वो वेस्ट हो जाए।
0: हाँ। तो जब भी जैसे फसल अवशेष आपके यहाँ से निकल आ रहे हैं उसी समय ही उनका प्रबंधन करना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मान के चलो हमने छोड़ दिया और उसके बाद जो है धूप निकल रही है, तो धूप से भी उनके अंदर जो पोषक तत्व तो उनका वास होता है वो नष्ट होते हैं। इसके अलावा अगर रेन्स बहुत होने लगी तो वो उसका पानी उस पर पड़ेगा और वो उसके साथ जो बह के बहुत सारे पोषक तत्व चले जाएंगे। तो साथ के साथ ही प्रबंधन, चाहे उसको खेत में मिलाना है, चाहे उसकी कंपोस्ट बनानी है, जो
1: जी
0: भी करना है वो साथ के साथ ही करें, उसको ज्यादा लंबा समय न दें। अब जैसे खरीफ के हैं तो अभी तापमान भी है, ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी है, तो उसके सड़ने में आसानी होती है। उसके बाद जैसे रबी की फसलें हैं उनमें भी जैसे कि फसल की आपने कटाई की, अगर खेत के अंदर नमी है और उसी समय आपने हल चला के उसको अंदर कर दिया
1: जी
0: तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शर्त, और बहुत से लोग कभी कभी ऐसे करते हैं कि उसको काटा और खेत छोड़ दिया
1: अच्छा
0: और फिर जाके जब करते हैं, जब अगली बार खेत में कोई फसल है तब जाके चेते, तो वो लेट हो जाता है। उससे एक तो क्या है कि उसके फसल अवशेष है वो सूखने लगते हैं और उनके अंदर नमक की मात्रा कम होती है, और फिर जब उनको खेत में आप हल चला के वो करते मिक्स तो वो सड़ नहीं पाते अच्छे से।
1: जी
0: लेकिन अगर साथ के साथ ही करते जाते हो तो उसका अच्छा लाभ होता है। अब उसको सड़ाने के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करें, तो कोई भी आप जो उर्वरक आपको जो आगे चल के देना उसकी थोड़ी मात्रा आप दे सकते हैं, वो उसको सड़ाने में काम आएगा। इसके अलावा हमारा एक उत्पाद आता है सुपर राइजा के नाम से, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो उसके
1: जी
0: साथ डालें तो वो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने में काम आएगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और उस खेत में फसल बहुत अच्छी होगी।
1: सर, ये जितनी बातें आपने हमें सही समय के बारे में बताई, अब हमारे बहुत से ऐसे श्रोता होंगे किसान भाई हमारे जो इस बारे में जानकार हैं या उनको जागरूकता है इस बारे में, लेकिन जो आने वाले समय में नए हमारे खेती किसानी से जुड़ने वाले
0: जी
1: लोग हो या उनके परिवार के और लोग हो जिन्हें
0: जी
1: खेती किसानी के बारे में उतनी बातें नहीं पता, तो हम
0: जी
1: उन्हें किस तरीके से बता सकते हैं कि इस फसल अवशेष प्रबंधन का लाभ क्या है, तो हम
0: हाँ
1: उन्हें किस तरीके से
0: बिल्कुल
1: उससे जोड़ पाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो पुराने लोग हैं वो जो करते आए थे और उन्होंने उसका लाभ भी लिया। अगर हम देखें तो लंबे समय से हमारे खेतों में फसलें हो रही थी और उस समय उतनी सघन खेती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी खेती तो होती थी,
1: जी
0: फसल उत्पादन लेते थे और अच्छा उत्पादन होता था, और बहुत सारे साधन भी हम इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे बहुत ज्यादा उर्वरक भी प्रयोग नहीं करते थे, दवाइयां वगैरह भी ज्यादा हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फसलें होती थी और जो उसमें अनाज उगता था वो काफी स्वादिष्ट होता था, उसमें ताकत होती थी,
1: पौष्टिक
0: स्वास्थ्यवर्धक
1: होता
0: होता
1: था
0: था, पौष्टिक होता
1: जी
0: था। तो अब यह है कि लाभ क्या है इसका, लाभ यही है कि अगर पोषक तत्व तो जो फसल अवशेष में थे वो खेत में ही मिलते जाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारे खेत की जो ताकत कम हो रही है उसमें कमी नहीं आएगी,
1: जी
0: आएगी तो बहुत कम आएगी, और उसकी पूर्ति हम उर्वरक के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हमारे खेत की ताकत है वह ठीक बनी रहेगी। ताकत के साथ साथ एक और चीज होती है कि अगर आपके यहाँ पर कोई मेहमान है ना, जो आपके काम का है,
1: जी
0: जो आपके साथ हाथ बटाता है, और भी सारी आपकी हेल्प करता है, तो आप उसको भूखा रखोगे क्या? खाना
1: नहीं
0: खिलाओगे आप उसको?
1: जी
0: आप उसको रुकने के लिए अच्छी जगह दोगे, उसको पूरा पर्यावरण दोगे जिससे कि वो पुष्ट रह सके, उसका मन अच्छा रहे और वो आपके साथ हाथ बटा सके। इसी तरह हमारे खेत में असंख्य ऐसे जीव होते हैं जो कि आंखों से नहीं दिखाई देते,
1: जी
0: लेकिन अगर वो न हो तो हमारे लिए खेती करना असंभव है। तो वो पुष्ट रहे तो उनको भोजन देना भी तो जरूरी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उनको वो उस तरह का पर्यावरण वहां पे होना खेत की मिट्टी के अंदर बहुत आवश्यक है जिससे कि वो जीवित रहे और उनकी संख्या में जो वृद्धि हो, वृद्धि के अलावा वृद्धि अगर बहुत ज्यादा नहीं भी होती तो उनकी संख्या उतनी बनी रहे, क्योंकि उनका जीवन काल होता है, वो पैदा होते हैं मरते हैं फिर पैदा होते हैं। तो वहां अगर ये फसल अवशेष ही ढंग से जाते रहे हमारे खेत में, इस्तेमाल होते रहे, खेत की मिट्टी में मिलते रहे, तो तो ये जो हमारे खेती के लाभकारी जीव है, इनका जीवन काल अच्छे से चलेगा। जब इनका जीवन काल अच्छा रहेगा तो ये हमें खेती की जो भी क्रिया है उनमें हमें सहयोग करेंगे और हम आसानी से फसलें ले पाएंगे।
1: जी
0: इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो एक तो ये कि पोषक तत्वों की मात्रा ठीक बनी रहती है, दूसरा जो भी फसल हम रहते हैं तो वो पोषक तत्व के आधार पर नहीं रहती, उसको नमी भी चाहिए। तो नमी को रोकने की क्षमता खेत की मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, और वो जब ही होगी जब खेत के अंदर जीव होंगे और वो जो ये फसल अवशेष है या बहुत सारी चीजें हैं जो जो खेत का जैव तत्व तो है उसको बनाए रखें।
1: हाँ
0: इसके अलावा खेत के अंदर हवा का संचार भी होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा तो भी पौधों का विकास नहीं होगा, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि खेती का या खेत का जो खेती के अनुकूल पूरा पर्यावरण होना चाहिए उसको तैयार करने में इन जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस योगदान के लिए फसल अवशेष अगर खेत में ही समाहित होते रहे और अच्छे से हमने उनका प्रबंधन किया तो यह एक बहुत बड़ा लाभ हमारी खेती को होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभी हमें नहीं लगता, जैसे कि हम मान के चले कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है, तो हमें यही नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारा सिर है कि नहीं है,
1: जी
0: हमारे कान है कि नहीं है।
1: जी
0: लेकिन अगर किसी कान में हमारे पेन हो जाए तो हमें हमारा पूरा ध्यान उसी कान पर
1: जी
0: रहता है,
1: बिल्कुल
0: रहता है ना।
1: हाँ
0: इसीलिए सिर दर्द हो जाए तो सिर दर्द हमें भारी लगता है, लगता है कि हमें हमारे सिर भी है ना। तो
1: जी
0: इसी तरह से जब तक खेती आसानी से हो रही है तभी हमें लगता है, लेकिन आप अगर सूक्ष्म रूप से इसका जो है अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे हटते जा रहे हैं। और उसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। अगर हम इसको ढंग से करते रहे तो खेती की जो सामान्य क्रियाएं, खेत की मिट्टी के अंदर जो सामान्य क्रियाएं जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है वो हमारी अच्छे से चलती रहे।
1: फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आपने बहुत सी बातें बताई, बहुत
0: जी
1: अच्छी चर्चा हमारी हुई अभी तक तो। आपने लाभ के बारे में भी बताया,
0: जी
1: आपने ये बात भी बहुत अच्छी बताई कि किस तरीके से हमारा ध्यान तभी जाता है जब वो चीज हमें जरूरी लगे, मतलब खेत की तरफ भी
0: हाँ
1: अगर हम वो बात करते हैं तो। एक जरूरी बात ऐसी है कि खेती किसानी जब हमारे किसान भाई करते हैं तो फिर वो ये देखना उनको जरूरी होता है कि उनको किस चीज में फायदा हो रहा है,
0: जी
1: इकोनॉमिकली जो भी फीजिबल हो वो
0: हाँ
1: काम पहले करते हैं। लेकिन इस कारण से जब वो ये जो अवशेष है इन्हें जला देते हैं तो एक तरह से उन्हें मैनेजमेंट में उतना टाइम उतना एफर्ट लगाना नहीं
0: नहीं
1: पड़ता,
0: पड़ता है।
1: 5-10 मिनट में वो काम खत्म हो
0: जी
1: जाता
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है,
0: पड़ सकता है।
1: तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए आप ऐसे मान के चले कि आपने जैसे कहा 8-10 मिनट में काम तमाम और बड़ी आसानी से काम हो गया, लाभ हमने देख लिया। लेकिन आप एक चीज देखिए कि उसके लंबे समय में कितने हानिकारक परिणाम आपको मिलने वाले। और अगर ये 8-10 मिनट का काम आप भूल जाए और इसका अच्छे से प्रबंधन कर ले तो आगे के लिए आपके कितने काम सुगम होने वाले, यह आप अगर अनुमान लगा लेंगे तो मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी फसल अवशेष प्रबंधन को पीछे नहीं रखेंगे, उसको सबसे आगे रखेंगे। इसके बारे में साथियों मैं आपको बता दूं, मैं भारतवर्ष के अनेक राज्यों में मेरा आना जाना होता है। पंजाब राज्य में गया, वहाँ एक बड़े अच्छे किसान है, वहाँ तो बहुत प्रगतिशील किसान है, धान की खेती होती है और अक्सर वहाँ आग लगाते हैं लोग। तो कुछ लोग हैं उन्होंने इसमें संज्ञान लिया, उन्होंने अवशेष प्रबंधन किया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी फसलें ली। ये उनका अपना अनुभव था, मैंने उनसे ऐसे अपनी बात उनके मुंह में नहीं रखी, उन्होंने खुद बताया कि नहीं साहब बहुत फर्क पड़ता है, हम आगे से इसको करेंगे। तो ये मेरा अनुरोध है कि इसको शॉर्ट टर्म में न लें, लघु अवधि में न लें, दीर्घ अवधि में लें। अब आप अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, कभी कभी होते हैं, अब जैसे रात होती है, आप कहो कि रात के 1 बजे सूरज निकल आए, नहीं समय पर निकलता है, सारा चक्र ठीक से चलता रहता है। तो खेती कोई इंडस्ट्री उद्योग नहीं है कि जिसमें एक मशीन आपने चलाई और काम हो गया, ये जीवंत है पूरा, यह अनेकों जीव है और उनके द्वारा ही संचालित होती है, प्रकृति इसको देखती है। तो आप अगर उनको समझ के उनके हिसाब से खेती करेंगे तो जीवन और खेती हमारी सुखद होगी,
1: जी
0: लंबे समय के लिए लाभकारी होगी और हम अगली पीढ़ियों को एक स्वस्थ खेती दे जाएंगे। और इसके अलावा साथियों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम जो भी अनाज उगाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई इसका उपयोग करता है।
1: जी
0: आपने जैसे 100 क्विंटल धान उगाया या गेहूं उगाया, आप कितना खाएंगे, 8 8 क्विंटल रख लेंगे घर के लिए, 5 क्विंटल रख लेंगे, बाकी क्या होगा, बिकेगा। बिकने के बाद कोई ना कोई उसको खाता है। अगर उसको पौष्टिक भोजन आपने नहीं दिया, आपको पैसा मिल गया, कहीं कहीं आपका रोल है उसमें, और आप अगर उस रोल को देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे हम एक दूसरे से जुड़े हुए, पूरी मानवता जुड़ी हुई, तो हमारी ओर से प्रयास ये हो कि हम ऐसी फसलें या ऐसा अनाज उगा के लोगों को दें जिसका कि हमें पैसा मिलता है, जो पौष्टिक हो, पुष्ट करने वाला हो, और वो तभी होगा जबकि हमारी खेती, हमारे खेत जो ताकतवर होंगे, उसका पर्यावरण अच्छा होगा, और वो जब भी होगा जब हम फसल अवशेषों का अच्छे से प्रबंधन करें।
1: सर, खेती किसानी के साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी आपने हमारे किसान भाइयों पर एक बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। इसी के साथ ही आप जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से ये करना कितना जरूरी है, वो आज के समय में वर्तमान
0: हाँ, आज के समय में देखो साथियों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी खेती का आकार, जो खेत की जो साइज था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आबादी हमारी अधिक हो रही है, शहरीकरण भी हो रहा है, मकान भी बन रहे हैं, गांव भी फैल रहे हैं आजकल, तो क्षेत्रफल कम हो रहा है, लेकिन हमें ज्यादा अनाज उत्पादन की जरूरत है। तो ज्यादा अनाज उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। आजकल जो हम फसलें उगा रहे हैं उनके जो बीज हैं, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, अधिक उत्पादन वाले आ रहे हैं, उनको ज्यादा पोषण की जरूरत है, और अगर हमारा खेत कमजोर है तो वो पोषण हम कहाँ से देंगे? स्वाभाविक के हम देखेंगे दुकान की तरफ कि उर्वरक ले आए। अब उर्वरक के बारे में हमें देखना है कि ये रासायनिक चीजें हैं, और बहुत से उर्वरक हमें बाहर से आयातित करने होते हैं और देशों से लाते, काफी महंगे मिलते हैं, उसमें आपका पैसा बहुत खर्च होता है। तो आवश्यक यही है कि हम अपने संसाधनों को न बिगाड़ें, उनका समुचित उपयोग करें। अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो आज की जो खेती में हमें ज्यादा पोषक तत्वों की जो मांग है, हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे
1: जी।
0: और एक अच्छा उत्पादन आने वाले समय में भी लेते रहेंगे।
1: तो ये कुछ खास बातें थी फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी हुई, जो हमारे किसान भाइयों तक हम पहुंचाने के लिए सफल रहे हैं हमारे सर के साथ। आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए.के. सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के
0: आपका भी
1: लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात कहने का, और मैं आशा करता हूँ कि सभी किसान भाई इसको थोड़ा समझ के इससे उपयोग में लाएंगे और
1: जी,
0: लाभ लेंगे।
1: कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे सभी किसान भाई और श्रोता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे

0: खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आर्जेरीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आर्जेरीना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आर्जेरीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आर्जेरीना,
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आर्जेरीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को ना केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
0: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
1: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं, यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताए समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं। और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ अर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण से चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: आरजी रीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ अर्चेरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आरजीरीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है, यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए अर्जेरीना।
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम अर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल आरजेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद आज खुशी जी। देखिए जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है, इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सीतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
5: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
4: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
5: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
4: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
5: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से

0: पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया, जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है। उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं, जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है, तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है, तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है। और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं, तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है, तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं, के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो TD का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को। इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है, तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं, तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है, उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है, जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है, वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक NM होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे NM होती हैं, और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं, जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है, जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?

0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं। और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं, अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट NGO का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPI TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नेत्रदान पखवाड़ा जो है मनाया जा रहा है और ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे डॉक्टर अजीत जी से। सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। एक्चुअली नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरे देश भर में एक पखवाड़े के रूप में इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आई डोनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ये इसी कारण से डोनेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है कि हम रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सके।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गज्जक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
0: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा

0: मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
2: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
4: माय नेम इज रमेश।
5: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
4: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
7: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 31 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
10: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
11: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
10: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
11: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ, महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। जहाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
13: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गाँव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
14: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
13: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
14: मुमताज जी की खास बातें, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
13: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
14: प्रेरणा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
13: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
14: क्या बात ही परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
13: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
14: अरे यार, पता है आपको मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
13: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत तो नहीं हो सकता।
14: एग्जैक्टली राइट। और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
13: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
14: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
13: यस, बिल्कुल।
14: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
15: छुप गए

0: श्रोताओं, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं। तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था। और वो तरह तरह की नई डिशेस बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का। वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई, अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी, अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए। उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था, अभी आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारी श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं, कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नच दी फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना,
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमा निकल, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें, चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप नहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में रोजाना, उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है। अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: और खाना समय खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट हैं और मुमताज मैम भी फिट हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों, तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। नमस्कार, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और साथियों, समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:06, और ये वो समय है जब आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। जी हाँ साथियों, लाइव फोनिंग कार्यक्रम है। आप मेरे साथ यहाँ पर इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को, किसी खास पर्सन को आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी अपने के लिए कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। अब मेहनत करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे क्या मेहनत करनी होगी, बताती हूँ आपको। देखिए, जो फोन आपके हाथों में है ना, इसी ऐसे फोन पर ना हमारा ऑफिशियल नंबर आपको डायल करना है। और हमारे मोबाइल नंबर है 9837896896। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी है। एवरीवन, बाहर अगर निकल रहे हैं आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा रहे हैं, तो प्लीज अम्ब्रेला लेकर जाइएगा एंड पानी की बोतल अपने पास रखिए, पानी पीते रहिए, मौसमी फ्रूट्स खाइए। और मैं तो कहूंगी कि बेवजह अगर कोई काम नहीं है ना, तो अभी घर से मत निकलिए, इवनिंग में ही घर से बाहर जाइए। और जो मुझे ऑन द वे कार में सुन रहे हैं, तो बस मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हौले हौले मुस्कुराइएगा। और अभी बात करते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते मैडम जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, अभी तो खेत में है, अभी अभी एक घंटा पहले बारिश हो गई अच्छी।
0: अरे वाह, क्या बात है, बारिश हो गई है आपकी यहाँ पर?
1: हाँ मैडम जी, बारिश हो गई और ऊपर से बदली भी के जरा गरज रही है, लगता है माहौल शाम को होने की संभावना है।
0: अच्छा अच्छा, ओके, तो बताइएगा सर, और कैसे हैं सब लोग आपके परिवार में?
1: बहुत एकदम, परिवार में तो सभी ठीक ठाक है, और मंगल चालू है अभी इसका, गणपति बापा का 2 दिन है अभी तो।
0: हाँ जी,
1: हमारे गणपति बापा जाएंगे।
0: ओके हाँ, अभी को मतलब बहुत सारे शहरों में तो विसर्जन भी हो रहा है, और कुछ में अभी टाइम भी है, कुछ पूरे 11 दिन के लिए बापा जी को लेकर आते हैं। जी क्या कहा आपने?
1: 3 दिन बाकी है मैडम जी।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा, आज आप हमारे शो के फर्स्ट कॉलर बने हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: एक कव्वाली है मैडम जी।
0: हाँ जी।
1: चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, ढल जाएगा, बहुत अच्छी एक कव्वाली है, कई दिन से सुनने की उम्मीद थी।
0: ये कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म की कव्वाली है
1: ये? मेरे ख्याल से कव्वाली फिल्म में नहीं है, ऐसे अलग से गाए हुए हैं।
0: एल्बम में है? अच्छा, किसी एल्बम की है?
1: हाँ जी हाँ।
0: ठीक है सर, हम सुनवाते हैं आपको, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए विवन, आप भी सुनिएगा अपने पसंद का गाना, और अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए आपको हमें कॉल तो लगाना पड़ेगा ना, तो बिना किसी देरी के लगाइएगा हमें कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर आपका कॉल लग चुका है मंडे में, ट्यूसडे में, तो प्लीज आप कॉल मत कीजिएगा। एंड नए लिसनर्स को भी मौका दीजिए एवरीवन, जैसे आपको खुशी मिलती है कॉल लगाकर, वैसे सामने वाले पर्सन को भी मन होता है कि हम भी कॉल लगाएं, हमारी भी बातचीत हो। तो सबकी खुशियों का ख्याल रखिए, बाकी सुनते रहिए प्यारा सा गीत। मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। और देखिए दोस्तों, प्यारे प्यारे गीत संगीतों का आप आनंद ले रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके पीछे जल्दी से आप भी कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:15। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल खुशी मैम को। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद कुकुल पूरा बनारस आपसे मुखातिब हो गया हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज जो है कि बनारस में मौसम बहुत ही सुहाना है और खिली खिली धूप है। धूप के बीच में थोड़ा से बादल आ जा रहे हैं और मौसम बहुत ही सुहाना मैम इस समय।
0: अरे वाह, बनारस का मौसम सुहाना है।
1: जी मैम, इस समय बहुत ही सुहाना है। बारिश जो लगभग हमें लग रहा है कि एक हफ्ते होने को आ रहा है, बारिश अभी एकदम कम हो गई है यहाँ।
0: अच्छा अच्छा, पहले बहुत ज्यादा बारिश थी ना?
1: जी जी मैम, और रक्षाबंधन के बाद से जब जैसे ही भादो लगा था, सावन से ज्यादा जो है कि भादो महीने में हमारे बनारस में बारिश हुई। और बारिश जो है कि रिकॉर्ड अच्छा है, जो गए साल से इस साल अच्छी बारिश हुई।
0: अच्छा अच्छा, और बताइएगा सर, आपके बनारस में अभी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका वर्क?
1: बनारस में मैम इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। और जो कि इस समय बनारस में गणपति जी का भी जगह जगह पंडाल लगा हुआ है और उनका जो कि जो पूजा हो रही है। और विसर्जन में अब 2 या 3 दिन बाकी है और फिर उसके बाद, अभी तो गंगा जी में मैम जो कि रोक लगा दिया गया है कि आप मूर्ति विसर्जित नहीं कर सकते हैं। उसके जो कि नगर निगम ने अलग से कुंड बनवाया, उसी में आप जो है कि मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं।
0: ओके, ये गवर्नमेंट के रूल्स है वहाँ पर। नगर निगम ने सारी तैयारियां मतलब सब चीजों को ध्यान में रखकर ये चीजों का ये डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा भी है।
1: जी मैम, क्या होता था ना मैम कि जब गंगा जी में ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां जो विसर्जित लोग करते थे,
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और उसके हर चीज से जो कि बहुत सा मिलावटी सा ऐसा चीज होता था जिससे मछलियां और अन्य जीव को नुकसान होता था।
0: बिल्कुल,
1: रोक लग गया है।
0: हाँ जी हाँ जी, ये तभी हम बोल रहे हैं ना सर कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मुझे लगता है कि गणपति पापा जी को व्रजमान करना चाहिए, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति जी रखो छोटे से और अपने घर में ही विसर्जित करो, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी सबकी अपनी अपनी कह सकते हैं कि नजरिया है, अपने सबकी थॉट है।
1: इसीलिए नगर निगम ने उसके लिए खास करके एक तालाब अलग से बनवाते हैं हमारे बनारस में। वही मूर्तियाँ होती हैं मैम, वही विसर्जित होती हैं।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और
1: अब जो है कि हमारे यहाँ जो कि वाराणसी कैंट जंक्शन से अब जो कि वहाँ गोदविया दशा समय तक ले अब जो कि रोपवे चालू होना है, होने वाला है। बस एक ही महीने के बाद हो सकता है कि रोपवे चालू हो जाए। आप जो गंडोला में बैठ के आप डायरेक्ट जहाँ आरती होती है वहाँ उतरेंगे आप, वहाँ मतलब ट्रैफिक आपको जो कि कोई बिघना बाधा नहीं आएगी ट्रैफिक के।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ जी मैं वाराणसी जंक्शन से आप डायरेक्ट वहाँ से बैठेंगे।
0: हाँ जी,
1: 16 मिनट की यात्रा है जो आप जहाँ डायरेक्ट आरती होती दशा समय घाट गंगा जी के किनारे
0: जी।
1: आप वहाँ उतरेंगे और वहाँ आरती में शामिल हो जाएंगे।
0: अरे वाह, बिल्कुल हम भी जरूर जाएंगे वहां पर, मेरा बहुत मन है। अभी तक तो जाने का प्लान करते हैं पर कभी कुछ ना कुछ मतलब चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं, बट जैसे प्रभु की इच्छा।
1: हमें लग रहा है कि जब आप आएंगे तो जरूर तब तक चालू हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया मैम, उसकी रिहर्सल जो चालू हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइएगा सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं आज आप फिर से मेरी बात जो हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं फिल्म तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूंगा। इसमें सबसे फर्स्ट में मैं आपको सुनाना चाहूंगा अरीना मैम जी को और हमारे आनंद भैया हैं जो और पूरी रेडियो एफएम मुरादाबाद टीम है।
0: okay.
1: और हमारे कुछ दोस्त है मैम, नाम ले लें।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ले लीजिएगा।
1: हमारे यहाँ जरूरी है जो की मुरलीधर जी, वो भी आपके केंद्र से जुड़े हुए हैं, और सचिव शर्मा जी, नेत्रपाल सिंह जी, सोनू गौतम जी, प्रिंस पासवान जी, मुक्तिनाथ जी नेपाल से, और सुनील कुमार भैया बांका बिहार से, और हमारे जो है कि जीशान से सिद्दीकी जी भाई हैं मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप जी, और तमाम जो रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले हमारे दोस्त लाइव जो सुन रहे हैं उनका भी नाम डेडिकेट है मैम।
0: अरे वाह, आपके दोस्तों की लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है, मुरादाबाद में भी आपके सभी दोस्त बन रहे हैं। हाँ
1: जीशान सिद्दीकी जी है, मुकेश कश्यप जी है, और हमारे एक रणदीप जेठालाल जी हैं, वो भी मुरादाबाद के, वो भी हमारे दोस्त हैं।
0: अरे चलिए बहुत अच्छी बात है, ये दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखिए। और सुनिए गए प्यारा सा गीत, आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपके सर। मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, टाइटल ट्रैक तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की बाद में लौट कर आने वाली हूँ। तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल मिस मत करना, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और वक्त हुआ है 3:26। अभी आपने सुना है बहुत ही प्यारा सा टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये ट्रैक है, मूवी का नाम तो आप जान ही गए, तेरे नाम। और इस खूबसूरत गीत को गाया था उदित नारायण जी ने, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी और इस खूबसूरत गीत को लिखा था समीर जी ने। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शमसुल इस्लाम।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नाम खेड़ा डांडा रामपुर से बात कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम।
0: कैसा मौसम है आपके साइड?
1: मौसम सही है, हल्की धूप हो रही है।
0: अच्छा हल्की धूप है, ओके। मुझे लगा बहुत तेज धूप है, हमारे मुरादाबाद में तो एकदम कड़क वाली धूप है।
1: जी जहाँ एसी वगैरह ज्यादा होती है ना, तो
0: वहाँ
1: लेटें ज्यादा होती है, ऑक्सीजन साइड लेती है।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट, सही कहा आपने। हमारे यहाँ का अभी करेंटली टेम्परेचर है 33°C, 33°C यहाँ का टेम्परेचर है। और बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना है आज की दोपहर। ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: सुनेंगे।
0: अच्छा आप अकेले ही सुनेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। तमाम श्रोता इस समय लाइव हमें सुन रहे हैं एंड दोस्तों ये गाना खूबसूरत सा एंजॉय करते हैं सब मिलकर। और कितनी खूबसूरत लाइनें हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जब हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ही टेंशन है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जब हम बाहर नजरें घुमाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार हमारी प्रॉब्लम तो थोड़ी सी है, हम बेवजह ही इतना परेशान हो रहे थे। तो बस यही है कि जब हम बाहर देखते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी है। तो बस धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनिएगा ये प्यारा सा गीत, मैं लौट कर आती हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद अजीज जी की आवाज में, लिरिक्स थी आनंद बख्शी जी की और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं आज की दोपहर। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं सोनू गौतम रामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताएं कैसे हाल चाल
0: है? हम भी बहुत ही अच्छे हैं, सब प्रभु राम जी की कृपा है। आप बताइएगा सोनू गौतम जी, कहाँ पर हैं आप इस समय?
1: अभी तो मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ।
0: अच्छा, दिल्ली में, तो बताइएगा कैसा वेदर है दिल्ली का?
1: जी यहाँ पे ठीक है।
0: अच्छा,
1: धूप खिल रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, तो गर्मी नहीं है वहाँ? वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना?
1: नहीं होती है, फिलहाल मौसम थोड़ा चेंज होने लगा।
0: हाँ, मौसम में बदलाव तो आए।
1: हाँ, तो उतनी नहीं है अभी।
0: ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज आपने कॉल किया है हमें, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी? काफी लॉन्ग समय की बात आप जुड़े हैं।
1: हाँ, तकरीबन महीना भर हो गया।
0: हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बताइएगा आज क्या सुनना है आपको?
1: दिलवाले मूवी का सुनवा देना, जो तुम्हें चाहे उसको सुनाना अच्छी बात नहीं, और कुछ दोस्त में मेरे शामिल रहेंगे।
0: जी जी बिल्कुल, बताइएगा अपने दोस्तों के नाम।
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: सतीश शर्मा जी, प्रिंस पासवान जी, परवेज अहमद जी, गौरव ठाकुर जी और सुनील भैया है माता बिहार से, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट।
0: ठीक है सर, सुनवा देगा ना, आप एंजॉय कीजिएगा। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौटकर हम आते हैं। और देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी हमें कॉल लगाइएगा राइट नाउ, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा, आप कोशिश तो कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 98 378 96

0: गुड आफ्टरनून माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है बहुत प्यारा गाना कुमार सानू जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिलवाली। और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जान लेते हैं आज वो कौन सा गीत सुना चाहते हैं। और अगर आपकी यू नो जहन में भी कोई गाना चल रहा है, कोई खूबसूरत सा ट्रैक आप सुनने की आपकी चाहत है, तो आप मुझे कॉल लगा सकते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जल्दी से कॉल लगाइए आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: कपिल
0: केशव। कपिल केशव, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं। ओके, बताइए कपिल, कैसे हैं आप और फैमिली में सब लोग कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: सब बढ़िया
0: इस टाइम। अच्छा, तो हाँ जी हाँ जी, ऑल गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कपिल, क्या कर रहे थे आप अभी?
1: मैं ड्यूटी हूँ मैम।
0: अच्छा, आप ड्यूटी पर हैं, वर्क कर रहे हैं और वहीं से आपने कॉल लगाया है?
1: जी मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आप एवरी डे शो को सुनते हैं? हेलो फरमाइश कार्यक्रम को सुनते हैं आप?
1: जी मैम।
0: अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैम, सौदागर मूवी का।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको, आप एंजॉय कीजिएगा। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका धन्यवाद। मोस्ट वेलकम कपिल। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं कपिल के पसंद पर ये गाना। एंड आपको भी है जल्दी से हमें कॉल लगाना, तो बिना किसी देरी के लगाइए कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: स्वागत है आप सभी का दोस्तों हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है 3:50। हमारे साथ हमारे प्यारे से लिस्नर भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। छुप गया है सूरज, छुप गया है सूरज, पढ़ रही है खुशियों की फुहार, तरंगों के जरिए आ रही है रेडियो पे आपकी मीठी सी आवाज। गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है, इतनी प्यारी सी लाइनें आपने बोलकर हमारा दिल जीत लिया है डियर।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से। आपकी ना इतनी मीठी आवाज है कि हम रह ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ हम उससे बोलेंगे जरूर मैम के लिए।
0: हरी वाह, थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी पंक्तियाँ एकदम हमारे दिल को ना छू कर गई हैं।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यही कोशिश की थी। और आप इतना मीठा बोलते हो कि आपकी आवाज का जादू चल रहा है ना, तो हम अभी
0: मेंटेने
1: कुछ बोलते हैं।
0: तभी तो अनु गोंडा से मुरादाबाद खींचे चले आते हैं। हाँ
1: ये आपकी आवाज है ना, मैं आपका अंदाज है कि हमको खींच कर नहीं आता है।
0: और बताओ अनु, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: सब लोग एकदम मस्त है मैम, और मैं भी बहुत खुश हूँ, और उससे ज्यादा खुशी अभी मिल रही है आपसे बात करके। जिस दिन मेरी आपसे बात होती

0: था उस दिन, मैं बहुत ज्यादा खुश रही थी, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि बता नहीं सकती। और मुझे इंतजार रहता है कब एक हफ्ता पूरा होगा कब मैं उनसे बात होगी।
1: अरे वाह क्या बात है, ये खुशी आपकी हमेशा रहे और किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगा के रखना आप, ठीक है?
0: अरे मैम जब मेरे साथ ना खुशी मैम रहेंगी तो मेरी खुशी हमेशा ही ऐसे ही रहेगी।
1: ओह अच्छा जी, चलिए हम आपके साथ ऑलवेज हैं। आप बताइएगा हाँ। अनु आज क्या सुनने का मन है आपका?
0: आज मैं गाना सुनना चाहूंगी, दिल दीवाना हो गया तेरी चाहत में जाने बाहर।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना चुना है आपने आज।
0: आपके लिए मैंने सोचा कि मैं कॉल लगाऊंगी तो आज यही गाना सुनूंगी।
1: अच्छा तो ठीक है अनु, ये गाना जरा एक लाइन प्लीज गुनगुना दीजिए।
0: मैं गुनगुना दूं, मैं गा नहीं पाती हूँ लेकिन, तो
1: लेकिन इतनी प्यारी कोयल जैसी आवाज तो है आपकी, सुनाओ ना। घर में तो आप बहुत गुनगुनाते रहते हो।
0: आपको कैसे पता लग चला, चुपकी सुनते हो क्या?
1: नहीं दिल से दिल का रिश्ता है ना, तो जान गए हो।
0: ये तो दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना, तो बिना सुने भी सारी बातें पता
1: चल जाती है। एग्जैक्टली वही तो।
0: दिल दीवाना हो गया तेरी चाहत में जाने बाहर, तुझ को देखा तो ऐसा लगा खुद को कर दो तुझ पे निसार। दिल दीवाना हो गया तेरी चाहत में जाने बाहर।
1: अरे वाह बहुत अच्छा गुनगुनाया है आपने अनु।
0: मैम पता है गाना नहीं गा पाती, बस शेर शायरी करने का थोड़ा शौक है।
1: ओहो इस शौक को हमेशा ऐसे ही रखो ठीक है, और प्यारी प्यारी शायरियाँ सुनाती रहो।
0: हाँ जब आपसे जुड़ती रहूंगी ना तो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगी।
1: थैंक यू एंड लव यू सो मच डियर।
0: ओके मैम बाय
1: बाय, टेक केयर अनु, एंजॉय कीजिएगा ये ब्यूटीफुल ट्रैक। उदित नारायण जी की आवाज में सुनवाते हैं अनु की पसंद पर ये प्यारा ट्रैक। एवरीवन आप भी कॉल करो, जल्दी से हमें कॉल लगाओ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत आज ही खुशी करती है FM मुरादाबाद 89.6 पर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप अपनी मन पसंद के कोई भी गीत सुन सकते हैं, कोई भी ट्रैक सुन सकते हैं, गाने वही जो आपका दिल चाहे। और समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:01। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड इवनिंग, बताइएगा अपना नाम।
1: गुड इवनिंग।
0: हाँ जी,
1: रोहित नाम है मेरा।
0: रोहित, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं कांगनपुर से बोल रहा हूँ, मुरादाबाद।
0: अच्छा, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइएगा रोहित जी क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दुनिया तेरी छोड़ चला
0: ये गाना सुनना चाहते हैं आप? ठीक है सर, सुनवा देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आते हैं हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, अभी हम आपके साथ रहने वाले हैं 5 बजे तक। तो जल्दी से आप कॉल लगाइए, पीछे बिल्कुल भी मत रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप जब शिद्दत के साथ कॉल लगाएंगे ना, शिद्दत के साथ, तो आपका कॉल भी डेफिनेटली लगेगा, है ना? ट्राई करते रहिए, कोशिश जब इंसान करता है ना, तो सफलता तभी मिलती है।

0: दोस्तों हम अपने वादे के अनुसार लौट कर वापस आ गए हैं और अभी आपने सुना सोनू निगम जी की आवाज में खूबसूरत ट्रैक। समय मैं आपको बता देती हूँ 4:09 हुए हैं और हमारे साथ हमारे अगले फरमाइश करता अभी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: विशाल
0: जी। विशाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बुद्धि बिहार से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: मैं बढ़िया हूँ, आज हमने फर्स्ट टाइम कॉल करी है, फर्स्ट टाइम कॉल लग गई।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया और आपकी कॉल भी लग गई है, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम क्रांति मूवी का सॉन्ग है जिंदगी का टूटे लड़ी।
0: अच्छा ठीक है, ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं सर।
1: Okay,
0: हाँ जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आरजे खुशी करती है एवरी मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी क्रांति से लता मंगेशकर जी और साथ में नितिन मुकेश जी की आवाज में ट्रैक आपने सुना। अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश बिना किसी देरी की। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: मैडम, दिनेश कुमार नाम है, बसंत प्यार कॉलोनी से बोल।
0: जी बताएगा दिनेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम गाना सुनाएंगे, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे।
0: बिल्कुल गाना सुनवाएंगे, लेकिन अपने हाल चाल तो बताएगा आप।
1: हाँ मैडम बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसे
0: हैं? हाँ जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं। कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप, दोबारा बताएगा?
1: दिल वाले ले जाएंगे।
0: ये गाना आपको सुनना है?
1: जी मैम।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा से गाना। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। सर कहते हैं दिलवाले दुल्हनिया का ट्रैक सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुनवाते हैं। मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगी दीदी सजना। और ये खूबसूरत गाना सुनते हैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। अभी फिलहाल सुनिएगा ये खूबसूरत ट्रैक, मैं लौट कर वापस आती हूँ।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेहंदी लगा के रखना। और इस खूबसूरत गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने, साथ में उदित नारायण जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। बात करते हैं अभी अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी नमस्ते।
0: आपको भी नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं रमेश पत्र मेटर्निटी स्टेट गुलाट असम से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और आप?
0: मैं भी ठीक हूँ सर। आप बताइएगा असम का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो आज बारिश हुआ था, अब धूप निकला है।
0: अच्छा, बारिश होने के बाद धूप निकली है।
1: हाँ
0: जी, बताइएगा सर क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैं आज सुनना चाहता हूँ जख्मी दिल मूवी का गाना है
0: जी,
1: खुशियों का मौसम एक दिन आएगा।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है।
1: और दो चार दोस्तों का नाम ले सकता हूँ?
0: जी बिल्कुल।
1: ये गाना डेडिकेट है पहले आपको।
0: हाँ जी, थैंक यू।
1: मेरा श्रीमती है रूनू पात्र।
0: ओके।
1: इसके बाद माइकल मुंडा, अमोल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, देवाशी चाचरिका, पूरम पूनम सिंह वर्मा और शिपा लोहार, भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिसोदिया और सभी मेरे दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। और दोस्तों सुनते हैं खूबसूरत ट्रैक कुमार सानू जी की आवाज में, एंड बहुत ही प्यारा गाना है। बिना किसी देरी के एंजॉय करते हैं, तब तक आप भी कॉल लगाओ, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आती हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और अभी आपने सुनाई प्यारा से गाना, अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश,
1: हेलो
0: फरमाइश सर, जय श्री कृष्ण।
1: जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप?
0: मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा सर आप कैसे हैं और क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है रीता भाई रबारी, मैं कच्छ गुजरात से बात कर रहा हूँ और अपना जो आकाशवाणी मुरादाबाद है उसका नियमित लिसनर हूँ।
0: हाँ जी, नियमित लिसनर है आप और आज आपने कॉल किया है, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है फूल, उसका टाइटल सॉन्ग है, वो सुनना है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है
0: जी।
1: और आपके उधर मुरादाबाद का मौसम कैसा है?
0: सर मुरादाबाद का मौसम बहुत ज्यादा गर्मी है, आप बताइएगा गुजरात का मौसम कैसे है आपके यहाँ का कच्छ का?
1: अभी तो मौसम सुहाना है, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है और पूरा आकाश आसमान पूरा क्लियर है।
0: ओके,
1: बढ़िया सा मौसम है।
0: अच्छा, तो सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा सर, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद
0: जी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी लग जाएगा, बस आप कोशिश करती रहिए।

0: हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका हेलो फरमाइश शो में। मैं आपके साथ आपकी खुशी। और अभी आपने सुना प्यारा से गाना कविता कृष्णमूर्ति जी और साथ में उदित नारायण जी की आवाज, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: वेरी गुड इवनिंग रोशनी जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपसे बात हो जाए तो दोगुना अच्छी हो जाती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। और बताइएगा मैम, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए कैसे हैं?
0: आई एम हैप्पी टुडे, थैंक यू। और बताइएगा मैम, कैसे चल रहा है आपका कैफे?
1: मेरा कैफे बहुत अच्छा चल रहा है और आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है।
0: थैंक यू।
1: साथ में काम भी होता रहता है और
0: वही हम
1: आवाज भी सुनते रहते हैं।
0: थैंक यू। वही हम सुन रहे थे कि आप इतना बिजी होने के बाद भी रेडियो को इतनी शिद्दत के साथ सुन रहे हैं, कॉल भी लगा रहे हैं, वहाँ पर आप कस्टमर को भी डील कर रहे हैं, कमाल है। हाँ जी, बताइएगा आज मैम क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम अपनी कस्टमर कुछ भी हमें सुना दीजिए।
0: अच्छा, कुछ भी सुना दें हम आपको? अच्छा, और मैम बताइएगा अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे थे?
1: मैं अभी सो के आई थी, वही 4:30 बजे घर से।
0: अच्छा,
1: और फिर हाँ जी, फिर मुझे याद आया कि मुझे एक हफ्ता शायद हो गए हैं तो आज कॉल ट्राई करते हैं।
0: अरे वाह,
1: तो ट्राई किया, लग भी गया तो और ज्यादा खुश हो गए।
0: बहुत लकी है आप लोग ना, बहुत लकी है मैम।
1: हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारी एक गुलाब दीदी, उनको भी हमने बताया कि कॉल लगाइए।
0: अच्छा।
1: और एक सरोजनी दीदी, वहीं से भी बोला हुआ, वो भी शायद हम ट्राई कर रहे होंगी।
0: बिल्कुल, और आपकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा भी रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा लगता है ना जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को सुनती है।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ जी, तो रोशनी जी हम आपको सुनाते हैं ये गाना, एंड आप बता दीजिएगा हमारे तमाम श्रोता इस समय आपको ऑन द वे सुन रहे हैं, एंड काफी लिसनर सुन रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं अभी चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, वैसे मैं उन्नाव से हूँ, बिलोंग करती हूँ।
0: ओके,
1: हमारा साइबर कैफे, तो हम यही फैमिली के साथ रहते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, कभी हमें भी अवसर मिलेगा तो हम जरूर आएंगे आपकी कैफे।
1: स्वागत है आपका।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैं सुनवाती हूँ आपको अपनी पसंद का ये ट्रैक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मैम।
1: जी मैम, सुनाइए।
0: ओके, बाय, टेक केयर, बाय। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं रोशनी जी ने कहा है कि आज आप अपनी पसंद से कोई भी ट्रैक सुनवा दीजिएगा। तो मेरे मतलब मेरी नजरों के सामने ना एक गाना मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रैक सुनवा दिया जाए। राहत फतेह अली खान जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, तो बिना किसी तरीके एंजॉय करते हैं इससे मिलकर, है ना। और आप भी प्रयास कीजिएगा, आपका कॉल भी जल्दी लगेगा व्यूअर्स।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मुफ्त किफायती रेट्स पर स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने गाना सुना, बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रॉम द मूवी लव आजकल से। एंड इस ट्रैक को गाया था राहत फतेह अली खान जी ने। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: जी,
0: बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम शाहिद अली है।
0: शाहिद अली जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम मैं तो मतलब रहने वाला तो लखीमपुर खट्टे जिला मुरादाबाद का हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी हैदराबाद का।
0: अरे वाह, हैदराबाद में आप रहते हैं अभी करंटली, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: मैम इधर जो ना अपना मतलब काम चल रहा है ये मॉल में।
0: अच्छा,
1: इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं।
0: ओके नाइस, तो कैसा लगता है आपको हैदराबाद में?
1: अच्छा लगता है मैम, इधर तो मतलब ठंडा मौसम है और काफी खूबसूरत नजारा है।
0: खूबसूरत नजारा है। और हैदराबाद में तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं ना वहाँ पर? आपने सीखा थोड़ा बहुत तेलुगु?
1: नहीं मैम, मतलब हमारा ऐसा रेगुलर का घर नहीं रहता, मतलब जैसे कि कंपनी के थ्रू हम लोग काम करते हैं ना,
0: तो जी
1: महीने दो महीने के लिए आना होता है, शिफ्ट चले जाते हैं वापस के लिए।
0: अच्छा, वैसे तेलुगु लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। और वहाँ पर ज्यादा हैदराबाद का तो दम बिरयानी बहुत फेमस है, पॉपुलर है ना वहाँ का? मैंने कहा हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही फेमस है ना? हाँ जी, तो आपने
1: बिरयानी पे मैम समझ लो मतलब इंटरनेशनली अगर आप जाओ तो वहाँ पे ही मिल जाती है, मतलब अपने इंडिया की जो हैदराबाद की और कुछ मुरादाबाद की भी मतलब हर जगह मिलती है।
0: हाँ जी हाँ जी, मुरादाबादी बिरयानी और मूंग की दाल तो बहुत फेमस है। जी तो बताएगा आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, सर क्या सुनना चाहते हैं?
1: मैम मैंने तो आपसे मतलब पहले भी आपसे दो महीने पहले ही बात की थी, आप खुशी मैम बोल रहे हो ना?
0: हाँ जी, मैं खुशी बात कर रही हूँ।
1: आपने शायद मुझे पहचाना
0: है। शायद सो, एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं ना, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। जी बट बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं सर?
1: मैम मैं ये गाना सुनता हूँ वो आपकी दुश्मनी कूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ।
0: Okay.
1: और ये मेरे दोस्त है एक उस्मान।
0: हाँ जी,
1: वो बहुत पता नहीं करता अक्सर, मतलब हम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं।
0: तभी गाना सुनना चाहते हैं आप? चलिए,
1: दोनों में प्यार बहुत है, मतलब एकदम
0: दोस्ती में होता है सर, थोड़ा बहुत नोकझोंक तो होती है, वो दोस्ती भी क्या जिसमें नोकझोंक ना हो?
1: हाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, लेकिन तभी भी हम एक दूसरे को ज्यादा टाइम नाराज नहीं
0: होते। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त नाराज हुए हों आपसे और आपने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की हो और वो नहीं माने हो, या फिर ऐसा हुआ हो आप नाराज हुए हों और उन्होंने मनाया तो आप मान गए?
1: हाँ मान जाते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ, मान जाते हैं, जैसे कि अगर कुछ टाइम के लिए नाराज हुए तो उनकी कोई फेवरेट चीज मतलब तो मान
0: जाते। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दोस्त के दोस्त को खासियत पता होती है कि वो हाँ किन चीजों से मान जाएंगे, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपकी दोस्ती बस ऐसे ही हमेशा बरकरार रहे, हम तो यही दुआ करते हैं आपके लिए। जी और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना, आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया आपका सर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, और मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है? अगर ट्रैफिक में है तो टेंशन ना लो आप, धीरे धीरे हौले हौले ये गाड़ी चलाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगी। घर ही तो जाना है ना, तो तुसी क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आराम से जाइए लेकिन सेफली ड्राइविंग कीजिए। और कहते हैं ना कि देर से जाइए लेकिन दुरुस्त जाइए, ठीक है? और सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिए, बाकी मुस्कुरा तो आप रहे हैं, खुद को शीशे में देख देख कर ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एवरीवन, मैं आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए खुशी को भूलना नहीं है आपको और सुनते रहना है FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रही हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंद, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है, नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक

0: पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
1: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सीबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
1: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
0: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
3: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
2: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
3: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
2: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
3: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
2: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
3: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: इतना दुख भरा गाना सुन के तो मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर के आंसू बाहर आ जाएंगे। हेलो हाय, कैसे हालचाल है? वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, कैसे हालचाल। देखो यार, बात ऐसी है, अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो रीना की एंट्री होती है, लेकिन आनंद क्या कर रहा है? तो भाई, जब रीना नहीं होती है तो खुशी खुशी नहीं होती है। तो आनंद, हाँ जी भाई, देखो कोई ना कोई तो आएगा ही ना आपकी शाम को स्पेशल बनाने। हाय, वेलकम बैक, है वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं, आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। कैसे हालचाल है? गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं आप? कार्ट रोड है, स्टेशन रोड है, या फिर दिल्ली रोड है? आप जहां भी हैं मुझे बता सकते हैं फटाफट से, क्या स्पेशल कर रहे हो भाई? शाम की चाय हुई या नहीं? मेरे पास बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए। देखो यार, अभी शाम होले होले जो है अब आगे बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे शाम रात में तब्दील होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं ना कहीं निकलेंगे रोड पर, राइट? और मुझे लगता है यार, दिल्ली रोड ना बड़ी मतलब बेहतरीन हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव का कहीं प्लान कर रहे हो तो दिल्ली रोड चले जाओ। बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। हेलो हाय, गुड इवनिंग, कैसे हालचाल? वेंसडे की शाम, मेरा नाम आनंद है। 23 सितंबर है आज, और अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 6:12 हो रहे हैं। आप चाहे अपने फोन में बैठ के सुन रहे हैं, या फिर अपनी कार में बैठ के सुन रहे हैं, या अपने घर में सुन रहे हैं, आप जहां भी सुन रहे हैं, फिलहाल आपके चेहरे पे आ गई एक प्यारी सी मुस्कान आ गई है ना। चलो जी, अपने हालचाल बताओ मुझे, मैसेज करो 9837896896 पे। अभी आने वाला गाना, ये जो पहली नजर होती है ना, बड़ी कमाल की होती है यार।
1: जादू कर दिया,
0: जादू की बात मत करो,
1: तेरा बन बैठा है मेरा जिया।
0: आने वाला गाना, आय हाय,
1: जाने क्या होगा, क्या होगा क्या पता।
0: You think about अक्षय खन्ना, you think about विपाशा बसु, इट्स अमेजिंग ट्रैक यार। ये गाना सुनने के बाद तो हर किसी की शाम खूबसूरत हो जाएगी। और एक और गाना जो आपकी शाम को और स्पेशल बनाएगा यार, क्योंकि आप आनंद को सुन रहे हैं, और अभी लौट कर आऊंगा तो कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूँ अपने शहर से जुड़ी, जिसको सुन के ना आपको मजा आ जाएगा यार। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर में अजी फिर क्या हुआ,
2: अरे छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली।
0: चलो जी, सलीम की गली छोड़ छाड़ के आनंद की गली आ जाओ। अब से लेकर 7 बजे तक आपके साथ हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, लौट कर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करो मेरे यार 9837896896 पे। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस, आ रहे हैं अभी जरा सी देर में। गुड इवनिंग,

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

0: क्या बात है यार, इस गाने को सुनने के बाद ना हर इंसान अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता है। मैं स्कूल टाइम में तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं स्टूडियो में पहुंच गया हूं। हालांकि यहां पे आपको रीना मिलती है, लेकिन आज मैं मिल रहा हूं। अब जब आ ही गए हैं तो आपसे बातचीत करेंगे ही जी। कैसे हालचाल है? वेरी गुड इवनिंग। देखो भाई, यहां पर जो है शाम के 6:12 हो गए हैं। आप भी अपनी घड़ी मिला लो, अगर नहीं मिलाई है तो बहुत गलत बात है भाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो समय के साथ चलता है उसकी जिंदगी में हमेशा जीत होती है। ऐसा मैं नहीं, मेरे पापा भी कहते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक, है वेरी गुड इवनिंग। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज 23 सितंबर है, साथ में अखिल जी भी आ गए हैं। हेलो भैया, क्या हाल चाल है? वेलकम टू द शो। वैसे रीना की ड्यूटी है, लेकिन हम दोनों निभा रहे हैं, पैसा फिर भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कर भला तो हो भला।
1: नहीं, तुम अपना चेक दे देना रीना को।
0: चेक मैं क्यों दूंगा यार उसको, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब मैं यहाँ पे उसकी ड्यूटी करने की ड्यूटी भी करो, उसको चेक भी दो। वाह,
1: नहीं कह देना ना कि एक ब्लैंक चेक दे रहा हूँ तुम्हें, तुम रीना मेरे को इस पे अपने अमाउंट भर के दे दो।
0: अच्छा, ऐसा हाँ, भी
1: ऐसा है? भी हो सकता है।
0: ऑल राइट, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अखिल भाई, आजकल शहर में क्या चल रहा है आपको पता है?
1: शहर में बहुत कुछ चल रहा है आजकल।
0: एग्जैक्टली भाई, हम आपको बताने आए हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ यार कि अभी मुरादाबाद शहर के अंदर 25 से लेके 27 तक एक बहुत ही अच्छी जो है वाइब सेट होने वाली है। और ये कहाँ पर सेट होने वाली, ये हम आपको बताएंगे अभी। देखो यार, मुरादाबाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, और इतनी सारी चीजें होती हैं कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर दिन तमाम सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो अभी नए डीएम साहब आ गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। आपको पता है तबादला हो गया है हमारे डीएम साहब का।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और हमारे ये नहीं, पूरे प्रदेश भर में 34 तबादले हुए हैं।
0: हाँ हाँ, लेकिन हम तो मुरादाबाद की बात करेंगे ना अखिल जी, नहीं तो हमारे पैसे कट जाएंगे। हम लोकल रेडियो बैठे हैं। खैर एनीवेज, बातचीत चलती रहेगी। आपको पता है स्कूल के अंदर इंडिया में ही, आज मैंने सुबह ही बताया था, एक ऐसा रूल सेट किया गया है, अगर स्कूल में लंच बॉक्स में कोई भी स्टूडेंट मेथी की सब्जी ले जाएगा तो उसको 20 रुपीज का चार्ज करेंगे वहाँ के स्कूल वाले।
1: ऐसा क्यों?
0: आई डोंट नो, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्यों? मतलब मेथी में ऐसा क्या है?
1: प्रिंसिपल साहब को पसंद नहीं होगी
0: यही
1: मेथी।
0: बात है, एग्जैक्टली सही पकड़ा है, लगता है उसमें से एक आप भी हैं। ऐसा हुआ है कि कभी आपके साथ?
1: नहीं,
0: सोचो यार, मैं अपने अपने टिफिन में, अपने लंच टाइम लंच बॉक्स में, मैं अपने स्कूल टाइम में तो अचार पराठे लेके गया हूँ, मेथी की सब्जी तो खैर कभी लेके नहीं गया हूँ। आप कभी लेके गए?
1: मैं तो लेके गया।
0: क्या लेकर गए हैं आप?
1: मैं लेके गया हूँ मेथी मूली की सब्जी।
0: मेथी मूली की सब्जी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब दोस्तों ने खाई है नहीं आपकी, पहले ये बताइए।
1: मेरे खाने के बाद मेरा कोई दोस्त मेरे पास नहीं बैठा।
0: आय हाय हाय, ओए हाय हाय, मैं समझ सकता हूँ अखिल के दिल का हाल। अखिल भाई जो कहना चाह रहे हैं ना, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मेरे को हंसी आ रही है अभी गाइस, और आपको भी आ रही होगी। फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ऑफिस में सुन रहे होंगे, कुछ लोग अभी घरों में सुन रहे होंगे, और जो लोग नहीं सुन रहे उनको तो बहुत तगड़ा पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ये ऊपर से वरुण धवन भी कह रहे हैं वाओ, मैंने अच्छा बोला है। पाजी बोलो, एक बार बोल दो वरुण भाई। देखो हाँ बोल दिया। चलो एक काम करते हैं अखिल भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी ना एक डायलॉग पूछ लेते हैं अपने लिसनर से, शाम के टाइम थोड़ा सा काम पे लगाते हैं। देखो यार, बहुत ही सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी आज की शाम। अब आई गए हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो खुराफाती करेंगे हम।
1: जरूर जरूर जरूर।
0: हाँ, तो एक डायलॉग में प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा डायलॉग है, एक मीनिंगफुल डायलॉग है। ये कौन सी फिल्म का, ये बताना।
2: जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: जियो, मुस्कुराओ और जीने दो, क्या पता कल हो ना हो, कौन सी फिल्म का है ये डायलॉग?
2: जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: अगर आप समझदार हैं तो जल्दी से मैसेज करिएगा 9837896896। क्या लगता है अखिल भाई, जियो मुस्कुराओ क्या पता कल हो ना हो, सही बात है?
1: बिल्कुल सही कहा, मगर इसका जो जवाब देना वो आज ही देना है।
0: हाँ, कल थोड़ी देंगे यार। हाँ, किसी बात कर रहे हो?
2: जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: क्या बात है, अगर आपको समझ में आए कौन सी फिल्म का है तो आप बताओ जी। अखिल भैया कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ, आजकल ना आज एक नया ट्रेंड तुमने सुना था आनंद?
0: कौन सा ट्रेंड?
1: फटा पोस्टर निकला हीरो।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: कुछ हुआ है ना मुरादाबाद में ऐसा?
0: फटा पोस्टर निकला हीरो, ये मेरे को पता नहीं है यार, अभी कुछ नया है तो अभी लौट कर आएंगे, उसके बाद बात करते हैं उस पे, है ना?
1: जरूर जरूर।
0: फिलहाल के लिए आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही आनंद और अखिल भाई को सुनते जाओ। हम आपकी शाम को थोड़ा अच्छा बनाएंगे बिना पैसे के, है ना? हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं आपसे, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो।
1: पैसे की बात मत करो, बंद क्लोज होने वाला है और हाँ। लोगों को एकदम उम्मीद बैठे हैं कि आज क्या पता इस बार सैलरी एडवांस में आ जाए।
0: आपको तो एडवांस ही चाहिए।

0: अखिल भाई कह रहे हैं यार स्टेशन के नाम बुलवाओ नहीं तो पैसे कट जाएंगे। एक तो वैसी एडवांस सैलरी की बात चल रही, तो भैया हम आपको बता देते हैं, आप जहाँ हमारी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं, स्टेशन का नाम क्या है अखिल भाई जरा बताओ?
1: FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: क्या बात है, इसी आवाज में रात को भी बोला करो यार,
1: रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुझे अभी अभी पता चला है कंगना रनौत का एक गाना काफी अच्छा चल रहा है सोशल मीडिया पे। मैडम कैसे बोलती हैं यार, मतलब क्या बोलती हैं, मजा आ जाता है उनको सुन के। हैं जी
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आनंद, मजा आ जाता है। और जब वो अपने फुल तुश उसमें होती है ना, मोड में अपने होती है, तो भाई साहब कोई रोक भी नहीं सकता।
0: स्वैग में जिसे कहते हैं ना, जब स्वैग में होती है। मुझे अभी अभी दोस्तों पता लगा है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 जहां हम कहते हैं वाह। और अच्छा चलो भैया काम की बात करते हैं। अखिल भाई आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत हो रहा है यार। देखो हम जो है आज के जमाने के बच्चे हैं, राइट, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है भाई। भले ही हम मिलेनियल्स की तरह बिहेवियर रखते हैं बात अलग है, लेकिन जेन ज़ी भी कह सकते हो। हाँ बात ये है कि यार हम जो है आजकल पैसा कम और प्लास्टिक मनी ज्यादा लेके घूमते हैं। इनफैक्ट मैंने सब लोगों के अंदर ये चीज एक एडिक्शन जैसे कहते हैं हो गई। अभी थोड़े टाइम पहले सब लोग पुरानी जीन्स और वो पर्पल पिंक कलर का जैकेट पहन के फोटो डाल रहे थे। 80 ट्रेंड, 80 वाले ट्रेंड में पहुंच गए थे हम। अब जैसे UPI वाला मैटर आया है सामने, उसके बाद हम सीधा 90s में पहुंच रहे हैं। जेब में 20-20 रुपए की जगह 100-100 रुपए लेके घूम रहे हैं अब, क्योंकि UPI वाले कह रहे हैं भैया आज नगद UPI होगा कल। अब ये वाला मैटर जो है बहुत लंबा चौड़ा फैलता जा रहा है। एंड मैं कहीं सब्जी लेने जा रहा हूँ भाई, आदत वही है, अंकल QR कोड दे दीजिए, आंटी QR कोड दे दीजिए, बेटा QR कोड हो गया है बंद। मैं क्या आंटी ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी कंफ्यूजन हो क्यों रही है लोगों में। मतलब ऑटो रिक्शा वाले से लेकर सब्जी वाले तक जितने वेंडर्स बैठे होते हैं सब्जी वाले, उनको भी यही लग रहा है कि हमारा पैसा कटेगा। कल रात को मंदिर के उन्होंने बोला हमारे 400 रुपए कट गए, हम इसमें पैसे नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा ये देखो यार ये अच्छा तरीका है, इनको पता लग गया वैसे ऐसे मैटर होने वाला है, तो वो भी कस्टमर जो है हमसे वसूल, मतलब कस्टमर से वसूले जाएं। तो यार मुझे लग रहा है कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या सच में UPI से जो है छोटे वेंडर्स को भी कोई लॉस हो सकता है?
1: अभी तक जब तक ये बात अभी पूरी तरीके से खुल के नहीं आई है, सच में कहूँ आनंद तो, और मेरे को भी ना कुछ चीजें अभी भी डाउट में है। तो पहली बात तो ये कि लोग कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर से होगा ये सब कुछ स्टार्ट, तो अगर 15 अक्टूबर में तो भी आप ऑलरेडी कितने दिन है तुम्हें पता ही है, 20 दिन तो ऑलरेडी है ही।
0: तो वही मैं कह रहा हूँ लोग कैसे, मतलब वो वाली चीज है ना कि अगर भैया तुम्हारे घर पे गुजिया बनी है तो मैं भी बनवाऊंगा, वाला सीन है। पड़ोसी ने बोल दिया तो पड़ोसी ने मान लिया। ये हम हिंदुस्तानी की USP है यार, हम इंडियंस की, मतलब कोई हुई नहीं उसे पहले
1: एज्यूम कर,
0: वायरल कर दो, एज्यूम कर लो वाली चीज। अजम्पशन लगाने में तो नंबर वन है इंडियंस।
1: तो अभी तो मैं इसके कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ अभी जैसा चल रहा है वैसे चलाएं और धीरे धीरे इसकी नॉलेज भी पूरी इकट्ठी कर ले कि होने वाला क्या है, कितने परसेंटेज कटने वाले हैं और कहाँ कहाँ UPI पे चार्जेस लगेंगे। कुछ जगह ऐसे है, कुछ सेक्शन ऐसे है कि जहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, जैसे आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो करते रहो।
0: सही, बहुत अच्छा बोला अखिल भैया ने, एंड आई अग्री विद यू मेरे भाई बिल्कुल। देखो गाइस अभी जो है ना, जब UPI के सारे रूल्स सामने आए थे तो उसमें ये भी कहा गया था कि 15 अक्टूबर से ये सारी रूल्स स्टार्ट होंगे। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं प्लीज़ ये मत करो यार, मत करो भाई, अभी पैसा मत काटो, जैसा चल रहा है चलाते रहो। मुझे लग रहा है कि यार ये कुछ ज़्यादा होने हो रहा है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर एनीवेज हम तो कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इतना कहेंगे देखिए अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है, आपको लग रहा है आपका अमाउंट कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें मैसेज करो 9837896896 पर। और हमने जो पूछा है सवाल, ये कौन से फिल्म का बताओ।
2: खुश रहो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो,
0: बहुत ही प्यारा डायलॉग है, ऑफकोर्स मुरादाबादी आप पहचान जाओगे।
2: जियो खुश रहो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: क्या बात है, कल हो ना हो, ये बात बिल्कुल सही है, और कल जरूर होगी क्योंकि हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं, क्यों जी।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: चलो
1: लोगों को पता है भाई साहब जवाब क्या देना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसी बात पे एक बढ़िया सा गाना लगा रहे हैं हम, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं। वक्त हो गया है कितना, 6:27, वापस मिलते हैं थोड़ी देर में, आप कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: जबरदस्त

0: वाला गाना सुन के दिल में मेरे है दर्द डिस्को, सारे डिस्को और सारे दर्द बाहर आ गए हैं डिस्को से। मैं आपको बताऊं गाइस, ये वो गाना है जिसको सुनते सुनते मैंने बहुत कॉले उठाई हैं और पिंक वाले फोन में भी बहुत सुना है मैंने। अखिल भाई, आपने तो ऑफकोर्स, आपका तो बचपन ही 90-80 वाले दशक में बीता है।
1: बहुत ही मतलब ऐसा था कि जब अमिताभ बच्चन और मैं आसपास ही तो थे।
0: अच्छा, ओ सच में, तो फिर आपने तो पक्का सुना होगा ये वाले सारे गाने। ये फिल्म का नाम क्या है?
1: कौन सी फिल्म का?
0: जो ही गाना चल रहा है डिस्को डिस्को,
1: ये ऐसी होगा दर्द डिस्को?
0: नहीं नहीं, मूवी का नाम पूछ रहा हूँ यार मैं, गाने के बोल तो दर्द डिस्को है।
1: शांति ओम,
0: ओम शांति ओम। इसमें सारी स्टार कास्ट फिल्म में थी या बस एक गाने में लिया था?
1: सिर्फ गाने में थे।
0: ओहो, मतलब बढ़ चढ़ के
1: मेन स्टार कास्ट थी वो, इसमें ये थी और दीपिका पादुकोण,
0: दीपिका
1: शाहरुख खान और
0: दीपिका पादुकोण का तो डेब्यू मूवी था ये।
1: हाँ,
0: उसी की इसी फिल्म से तो डेब्यू किया था दीपिका ने। अच्छा एक बात बताओ, इस मूवी का जो चैप्टर था बेसिकली वो क्या था? एक डायलॉग बहुत पॉपुलर था इस फिल्म का।
1: एक डायलॉग बहुत ही पॉपुलर था, अगर किसी चीज को, किसी चीज को आप मतलब पूरे दिल से चाहो,
0: मतलब नहीं बोलता वो पूरा सही सही बोलो आप मुझे,
1: किसी को
0: पैसे
1: दिल से चाहो तो कायनात, पूरी कायनात आपको उसको,
0: अगर ये शाहरुख खान के डायरेक्ट ने सुन लिया ना, उसे और दोनों को बाहर निकाल देंगे, बता रहा हूँ मैं।
1: कोई बात नहीं, बाहर निकाल के कम से कम FM मुरादाबाद स्टूडियो में तो भेजेगा कि ढूंढ के लाओ,
0: मुरादाबाद से बाहर निकालो भाई, ये मेरा डायलॉग खराब कर रहे हैं वो। पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है।
1: ये मुझे पता आपको इसलिए याद है क्योंकि आप हर प्रोग्राम में अपने ये बिना लाइन के आप पीछे।
0: नहीं, मैं आपको बताऊं अखिल भैया, मैंने अभी रिसेंटली ये पिक्चर देखी है। सच बात तो ये है, मैंने ये फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन ये फिल्म जो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। फराह खान ने जो है इसके बारे में जिक्र किया एक पॉडकास्ट में कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आप ये फिल्म देखो। इसके अंदर जो है हमने यही दिखाया है, मतलब मैनिफेस्टेशन की। शाहरुख खान जो है पहले वाले जन्म में सोचता था कि मैं मतलब बेड से उतरूं तो मेरे पैरों में मखमली चप्पल हो, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग। और जब वो फिर वो उसका जन्म होता है नेक्स्ट वाला, तो उसमें पूरा वो रॉयलिटी दिखाई है उसकी, मतलब और वो उसकी सपनों की हीरोइन, मतलब वो सब कुछ।
1: तो मतलब क्या मैनिफेस्ट पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा?
0: नहीं नहीं, मैं इस जन्म ही मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, जो जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है। मेरे को नहीं पता, मैं इसी जन्म में करूंगा भाई।
1: प्लीज आने, प्लीज।
0: नहीं भैया चलो शांत हो जाते हैं। वेल, शाहरुख खान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान ने बिल्कुल पैसे नहीं दिए। सच बात ये है, और मैंने इनका घर भी देखा यार शाहरुख खान जी का। मैं जब
1: अच्छा?
0: हाँ, जब मैं बॉम्बे गया था तो बाहर से खड़ा होकर देख रहा था मैं जुहू के। जुहू पे इसका घर है शाहरुख भाई का। समुद्र के किनारे इतनी लंबी लाइनें और साथ में 2-3 बॉडीगार्ड मन्नत के बाहर खड़े होते हैं, और बाद में सैमसंग नहीं है यार, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट।
1: कितने बजे उठे तुम सुबह सपने से?
0: सपने में नहीं, मैं अभी बॉम्बे गया था ना, मैं 2021 में गया था मैं।
1: हाँ, 2021
0: में मुंबई गया था, तब मुझे याद है, तो मैं गया था, मैं रेडियो स्टेशन में गया था ना राखी जी के साथ। आपको आपने नहीं देखा वो वीडियो मेरा, कितना मैंने फेसबुक पे डाला था।
1: हाँ, हाँ,
0: शाहरुख खान और सलमान भाई का दोनों का घर आस पास में ही तो है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसे ही 100 मीटर दूर है।
0: बिल्कुल, क्या नाम था उनके घर का?
1: आप मन्नत भी घूमिया और गैलेक्सी भी घूमिया है।
0: हाँ, गैलेक्सी भी घूमिया, लेकिन जिनको देखनी है वो नहीं मिले भाई। वो नहीं मिले। अच्छा, मैंने एक और घर देखा था वहाँ पे उनका, जितेंद्र जी की कोठी भी देखी थी मैंने, मुझे याद है।
1: जितेंद्र
0: कौन है वो? जितेंद्र नाम है उनका क्या?
1: जितेंद्र साहब,
0: जितेंद्र साहब। देखो सही प्रोनंसिएशन अखिल भाई सिखा देंगे, वो दुबई लेकर आए हैं, इसलिए हम उनको रेडियो में एंट्री दिए कि भाई कुछ तो नया सिखा डालो,
1: कुछ तो मेरे अल्फाज क्लियर करो।
0: अल्फाज आपके अल्फाज नहीं, आप पूरे ही क्लियर हैं भाई, एकदम एडिक्शन ये वो सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। आप उनको रात को सुना करो, रीना तो प्रचार नहीं करती आपका, लेकिन मैं कर रहा हूँ। चलो भाई बताओ, आप रात में क्या करते हो?
1: मैं रात में दिल से दिल तक करता हूँ, 9 से 10 बजे तक, और आप लोग अपने दिल की बातें वहाँ शेयर कर सकते।
0: एक बार मुझे वो जिनकी कोठी मैंने देखी, उनका नाम मुझे सही से बता दो। क्या नाम था उनका?
1: इन्होंने जितेंद्र कपूर साहब की कोठी देखी थी।
0: जितेंद्र कपूर साहब, उनके बेटे का नाम क्या है?
1: जीतू, इन्हें जो जीतू के नाम से बहुत फेमस थे।
0: अच्छा,
1: और उनके बेटे का नाम
0: आपका घर भी देखा था, बांस लगे हुए थे बाहर की साइड। सब बच्चन साहब का,
1: आपने बच्चन साहब का भी घर देखा?
0: मैं गया था वहाँ पे भी, बट अंदर एंट्री नहीं मिली उन्होंने। बेटा कौन है?
1: उन्होंने बाहर से, भाई साहब भाई साहब आप कौन, ये नहीं कहोगा कौन है, बोले ये पूछोगा आप कौन।
0: हाँ ये बात है, लेकिन आप तो गए होंगे मुंबई डेफिनेटली।
1: मैं अभी सच में बोलूं तो आज तक नहीं गया।
0: अच्छा, मुझे लगा सपनों में तो होकर आ ही गए होंगे एक बार।
1: हाँ, सपनों में एक बार नहीं, सपनों में
0: सपनों
1: तो
0: की नगरी है भाई मुंबई,
1: माया नगरी,
0: माया नगरी। फिलहाल मुरादाबाद है पीतल नगरी।
1: मुझे लगता है तुम्हारी इस नगरी से मुझे याद आया कि आज ये रीना कहीं माया नगरी तो नहीं निकल गई?
0: नहीं नहीं, वो माया नगरी नहीं निकली, वो डॉक्टरों की नगरी गई हुई है। जब आएगी तो पूछेंगे कौन सा इंजेक्शन लेने गई थी ये। अच्छा अखिल भाई, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मुरादाबाद में कुछ हो रहा है 25 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच, है ना, और ये बहुत ही अच्छे लेवल पे होने वाली एक बहुत बढ़िया चीज है, तो ये क्या चीज हो रही है जरा इसके बारे में आप मुझे बताएं।
1: ये पहली बार मुरादाबाद में टेबल टेनिस टूर्नामेंट इस लेवल पे हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि आप कहते हैं ना कि यूपी स्टेट लेवल पे हो रहा है, और फोर्थ
0: हेलो ये आवाज आपकी आपकी आवाज बंद हो गई है, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, आप ही चुप हो गए थे,
1: पता नहीं ऐसा क्यों,
0: ये आपने मौन धारण कर लिया।
1: फोर्थ यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है समर वैली स्कूल में, मुरादाबाद अपने समर वैली स्कूल में।
0: अच्छा,
1: और ये ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है कि जगह पूरे यूपी स्टेट से, ऑल ओवर यूपी स्टेट से इतने सारे प्लेयर्स आएंगे,
0: और मुझे लगता है इंटरनेशनली भी एंटर कर रहे हैं भाई।
1: इंटरनेशनली, और इवन जो यहाँ से सिलेक्शन होता है वो इंडियन टीम के रिप्रेजेंट करता है।
0: अरे वाह क्या बात है यार, तो मतलब मुझे लगता है कि 25 से 27 के बीच हमें पैक्ड होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मैं तो कहूँगा ये तो मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देख के आना चाहिए, अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए कि देखें कि इस लेवल का टूर्नामेंट अपने शहर में हो रहा है,
0: और ये पहली बार हो रहा है, मजे की बात है ना। तो 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच जो है एक टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे अभी अखिल भाई ने बताया, और ये टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है, मुरादाबाद के समर वैली में होने वाला है, एंड ये 3 दिन का आई थिंक सेशन होगा ना फिर।
1: हाँ जी, टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है ये
0: 25, 26 और 27 को उसका रैपअप हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है, और भाई मैंने तो कभी आज तक लाइव नहीं देखा है, पहली बार अपने शहर में लाइव देखेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, एंट्री बिल्कुल फ्री है ना।
1: यस बिल्कुल सही कहा।
0: तो बाकी जानकारी के लिए जो है आप रेडियो सुनते रहिए, हम आपको सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे इसी से रिलेटेड।
1: जो संयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर के कोर टीम मेंबर मिस्टर अनिल सेन, उनके साथ हमारा एक पॉडकास्ट है, और वो हम जल्दी शेयर करेंगे अपनी जनता के साथ, और आप मतलब सुनते रहिए, और आपको बहुत सारी जानकारी उससे रिलेटेड मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो जानकारी सब यहीं पर मिलेंगी, फिलहाल अभी मिलेंगे अच्छे गाने। अच्छा अभी तक रीना क्यों नहीं आई है, क्या लगता है आपको, वो जानबूझ के नहीं आई होगी?
1: एक्चुअली क्या, वो तुम ही कह रहे थे ना कि वो फ्लाइट बहुत महंगी हो गई है आजकल।
0: नहीं नहीं, फ्लाइट महंगी नहीं हुई है, फ्लाइट के अंदर जो लगेज होता है वो महंगा हुआ है, मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली। हाँ ये सच है। आपको पता है एक गांव है, मैं अभी आज ही पढ़ रहा था, उसमें दो मतलब अगर आंटियां चुगली करती हैं तो उनको पैसे मिलेंगे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे गांव में हम भी चले क्या। सच में यार, मजाक से हटके, अच्छा मैं बताऊंगा अभी भी कौन सा गाँव में पढ़ रहा था, तो एक गाँव है जहाँ पर चुगली करने पे आप पैसे कमा सकते हो।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: सोचो आप, ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये।
1: पैसा कमाने के लिए अगर इंसान सोचने लगे क्या क्या वो है, तो कितने सारे जुगाड़ है
0: यार। बिल्कुल, अब फॉरेन कंट्री में तो एक से एक जुगाड़ है, ये अपने इंडिया में पता नहीं कब शुरू होंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो चुगली करने वाला सीन है ये अपने इंडिया में चल रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग फ्री हैं। आपको मैं सही बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, लौट के आऊंगे तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पर ऐसा सच में हो रहा है। और अभी रिसेंटली एक और पढ़ा था हमने, सिंगापुर में अगर आप किताबें पढ़ते हो तो उसके लिए आपको पे करेगी वहाँ की गवर्नमेंट।
1: क्या बात है।
0: अगर आप इंस्टाग्राम से अपना ध्यान हटा के 2 घंटे बुक पढ़ते हो तो उसका आपको पे आउट मिलेगा।
1: तो मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं।
0: एग्जैक्टली, अपने मुरादाबाद में क्या कम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप ही करते हो ऑफिस में बैठते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद ये वही करेंगे गाइस।
1: साहब मैं भले ही ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मगर आप देख लेना रील सबसे ज्यादा किसकी डल रही है।
0: हाँ तो आप इंस्टाग्राम कम फॉलो करते हो, आप
1: देखो देखो देखो,
0: तो मतलब बात तो स्क्रीन पे तो आप ही बैठते हो ना यार। पढ़ने का शौक तो आपको खैर है ही।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: पढ़ने का शौक है या नहीं आपको? हाँ। तो सिंगापुर छोड़ के आता हूँ, चलो।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे
2: सिर दर्द लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: क्या बात है, कोठरी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल हम जहाँ बैठे हैं एक बहुत अच्छी स्टूडियो है, और इस स्टूडियो में मैं और अखिल जी बैठे हुए हैं इस चांदनी रात में। हाँ जी बताइए अखिल भाई, कैसे हाल चाल है? ये जो फिल्म है बड़ी लंबी चौड़ा, इसका तो नाम है, पता नहीं वरुण की फिल्मों के नाम को क्या हो गया है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बताइए इतना लंबा चौड़ा नाम, इतना पैसा तो यही।
1: मैं नहीं चलूं तो मेरा नाम तो चले।
0: अरे तो कम से कम मेरा नाम पे रख लेते यार, ये सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का क्या मतलब है? एक आनंद के नाम से कोई पिक्चर बनाओ, देखो कितनी चलेगी। एक बार देवानंद साहब की कोई फिल्म आई थी आनंद, पता है आपको? आज तक देखी कभी नहीं है मैंने, बस नाम ही सुना था, मैं खुश हो गया था। आनंद फिल्म है एक, सर्च करना कभी, फोन हाथ में गूगल कर लो, आपको फ्री की बात बता रहा हूँ।
1: मेरे को तो राजेश खन्ना जी का वो
0: देवानंद सा
1: है आनंद।
0: अच्छा नहीं, एक आनंद आनंद फिल्म भी आई थी, आप कभी देखना, बहुत बढ़िया फिल्म थी, मैंने देखी नहीं है।
1: मेरे सामने तो साक्षात आनंद है, तो मैं कहां ही दो-दो फिल्म देखता हूं।
0: एग्जैक्टली, आपको पता है न्यूज़पेपर में ना पहले एक कॉन्टेस्ट आता था, चेहरा पहचानो और पैसे जीत जाओ करोड़ों रुपए, आपने कभी पढ़ा है उसके बारे में? सच में मैंने दो तीन बार फोन भी किया था, जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती थी, मैंने कहा आज रात तो पक्का मैं करोड़पति बन जाऊंगा। एक दिन मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला हाँ जी आप बताइए कौन सा, उसमें साफ ही अक्षय कुमार है भाई, बस हल्की सी पट्टी लगा देते थे वो उसमें। मैं ज्यादा न्यूज़पेपर में यही ढूंढता था यार कुछ तो ऐसा मिल जाए लकी चांस, इतनी नॉलेज नहीं थी।
1: तुमने तो इसका मतलब वो एक न्यूज़पेपर में वो भी आते थे कूपन कलेक्ट करो, और वो एक पेपर पे शीट पे आती थी उस पे चिपकाओ डे वन कूपन डे टू कूपन।
0: भाई उस चक्कर में मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई थी, मैं बता रहा हूँ, मार्कशीट फिर उसको दोबारा निकलवाया,
1: प्रेशर कुकर मिलेगा
0: हुआ है वो, मतलब आपने भी किया है। देखो गाइस, मतलब कहीं ना कहीं बया इनके शब्दों में कर रहे हैं कि इन्होंने भी स्टिकर बहुत चिपका।

0: अच्छा तो अखिल भाई पूरा मामला सुनो तो वो मैंने मतलब जो इस पे कॉल वॉल किया तो उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशन आप जीत गए हैं 2 करोड़। मैं क्या यार क्या बात है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी पैसे डाल दो खाते में। कहते हैं नहीं जी पहले उसके लिए आपको हमें डालने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या बात होती है भाई। मैं क्या आप उसमें से काट लो। कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं होता है रूल है देखो आपने इतने रुपये जीत लिए। मैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने मम्मी पापा को फटाफट बताया। मम्मी पापा ने कहा चलो ठीक है इतने रुपये हम देते हैं बट क्या गारंटी तुम्हें मिलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला इतना इतना टैक्स वैक्स ये लगेगा। बट फिर मुझे किसी एक समझदार व्यक्ति ने समझाया कि अक्लमंद बच्चे ये सब फेक होता है। इतना अगर होता तो जो न्यूज़पेपर बांटता पहले वही करोड़पति बनता। मुद्दे की बात है। लेकिन अब रिसेंटली अभी यही हुआ है कमल सिंह के साथ। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने भाई साहब पूरे 1.5 करोड़ रुपए की जो है ठगी के शिकार हो गए हैं। कैसे इनको जो है फेसबुक पे कॉन्टेस्ट आया था कौन बनेगा करोड़पति तो स्टार्ट हो ही गया है। लेकिन उसी का एक साइबर जो ये ठग होते हैं ना ठग ये बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं नई नई जिससे आदमी फंस जाता है। इन्होंने क्या किया इन्होंने फेसबुक कॉन्टेस्ट चलाया कौन बनेगा करोड़पति में आपको कुछ नहीं करना है चेहरा पहचानना है और उसके बाद हम आपको जो है मतलब कितना आर्ट कुछ इनाम रखा था 8 लाख कुछ करके एक एक क्वेश्चन के आंसर पे। एंड उसके बाद जो है ये भाई साहब जो है कमल जी इनकी उम्र 54 साल है। अभी इन्होंने जो है भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए। बार बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया हर बार इनके पैसे कटे। करते करते एक हफ्ता हो गया बाद में इनको पता चला कि भैया हम ठगी के शिकार हो गए। फिर उन्होंने कंप्लेन वगैरह आप दर्ज कराई है लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जब बच्चन साहब साफ कहते हैं भैया कौन बनेगा करोड़पति में आप वो तो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है भाई सिंपल सी बात है। अगर उनका कुछ होता भी तो उनकी ऑफिशियल ऐप है वहां जाके पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सोशल मीडिया के जंजाल में इतना क्यों फंस जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए वो मतलब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी होनी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए आप उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीत रही होगी।
1: तो उसने क्या किया फिर उसने
0: मतलब उन्होंने अभी कंप्लेन करा दी। मैं पढ़ रहा था उनके बारे में मतलब अभी काफी चर्चा में है ये न्यूज। लेकिन मतलब हमारा मेरा मुद्दा ये है बताने का कि गाइज अगर आप इस तरह के कोई भी चीज आ रही है पहले उसकी पूरी जानकारी लो। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूज चैनल पे आएगी सबसे बड़ी बात।
1: बहुत से लोग हैं आज भी आनंद मतलब मेरे को तो सुनने बड़ा वो लगता था क्योंकि जब तक खुद के साथ नहीं होता तब तक आप भी विश्वास नहीं करते ये भी आज सच्चाई है। तो हाउस अरेस्ट हो जाते हैं डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। हाँ। और डिजिटल अरेस्ट होना बहुत ही इस समय ट्रेंड में चल रहा है
0: भाई साहब आजकल। तो ऐसा है ना मैं एक वीडियो देख रहा था कि अगर आप दिल्ली वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट लगे होते हैं उसमें कई बारी ना वो लगी होती है ये आपकी केबल फ़ोन की और आप सोचते हो बस जल्दी से फ़ोन चार्ज हो जाए। अगर आप जैसे ही वो उसमें कनेक्ट करते हो तो आपका डेटा वेटा सब हैक कर लेते हैं ऐसा भी कुछ है सुनने में आया कि अगर आप बाहर कहीं इसीलिए आपको बार बार अलर्ट मोड दिया जाता है कि एकदम
1: अपना चार्जर साथ में लेके चले
0: साथ में लेके चलें और किसी से चार्जर भी नहीं लेना है भाई सफ़र के दौरान। तो आप जितना हो सकता है अवॉइड ही करें चीज़ों को
1: सफ़र के दौरान ऐसी चीज़ें ना करें तो आप सफ़र भी नहीं करेंगे।
0: नहीं सफ़र तो करेंगे लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। फिलहाल 7 बजने को है अभी हम दोनों की बकवास को बंद करना पड़ेगा। हमने पूछा था एक सवाल कि ये जो डायलॉग है वो कौन सी फिल्म का है ये हमारा डायलॉग अभी अटक गया है। शाहरुख खान साहब कह रहे हैं कि बेटा अब नहीं चल के दूंगा मैं चुप हो जाओ क्योंकि इसका जवाब मुझे
2: मुस्कुराओ क्या पता कल हो ना
0: देखो
2: जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता कल हो ना हो।
0: सही बात है। ये डायलॉग का जवाब बहुत आसान था लेकिन क्या मुझे किसी ने दिया है मैं चेक करता हूँ। हेलो आरजे आनंद जी गुड इवनिंग आज बहुत दिनों के बाद आपको सुनने को मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है और आज का शो भी शानदार रहेगा और अच्छे गाने आप प्ले कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास मैसेज आ रहा है पवन जी का बिलारी से इन्होंने हमें रावण पिक्चर लिख के भेजी गलत जवाब हो गया सर। एक मैसेज हमारे पास आया है ये हेलो जी नमस्ते गीता कश्यप और ये संतोष भाभी जी का मैसेज आ रहा है गुड इवनिंग और मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर सैयद शारिक अली जी लिखते हैं गुड इवनिंग आनंद जी आप कैसे हैं शो में मस्ती और बातें बहुत अच्छी लग रही हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जवाब और आया जो बिल्कुल गलत है तो अब सही जवाब क्या है ये हमें बताना पड़ेगा यार देखो
1: क्या पता कल हो ना हो
0: ये पिक्चर का नाम है
2: मुस्कुराओ
1: कल हो ना हो।
0: आप गूगल तो नहीं कर रहे हो बैठ के
1: कल नहीं नहीं गूगल क्या कर रहा हूँ यार ये मूवी का नाम ही कल हो ना हो
0: तो इस पिक्चर का नाम तो इस डायलॉग में बोला जा रहा था ना।
1: हाँ
0: उसके बाद भी
2: जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: आनंद को भी नहीं पता था इस मूवी का नाम।
0: नहीं नहीं भाई मेरे को तो यार मेरे को तो पता था अखिल भाई गिरो मत यार चेयर से नीचे मत गिरो।
1: रीना तुम कहाँ हो
0: अगर रीना आस पास में होगी तो बोलेगी इन दोनों ने मेरे शो को आज खिचड़ी से रायते में कन्वर्ट कर दिया है।
1: रीता की रीना की हंसी भी स्टूडियो में गूंज रही है पता है तुम्हें।
0: पता नहीं भाई मुझे चलो कोई बात नहीं फिलहाल अभी हम दोनों की हंसी बंद होने का टाइम हो गया क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जितनी बातें हमें करनी थी हमने कर ली है। और आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिए अखिल भाई आपको दोबारा मिलेंगे अभी रात को ठीक 9 बजे आप प्लीज उनकी आवाज़ सुन के जो है एनर्जेटिक और रिचार्ज होने की कोशिश करें है ना और बाकी अच्छे अच्छे गाने सुने और अच्छे अच्छे मैसेज भी सुनते रहें दिल से दिल तक, क्योंकि इनके दिल के तार सीधा आपके दिल से जुड़ते हैं ठीक 9 बजे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं 10 बजे। सही बात है गलत? क्योंकि बाहर निकल जाते हैं ना स्टूडियो से। नहीं वो तो 10:30 ही निकलते हैं शायद। ये पता नहीं करते क्या है, मच्छर तो नहीं मारते हो?
1: मच्छर बहुत है सच में यार।
0: इतनी बड़ी एसी में है राम, पाप चढ़ेगा सर ने सुन लिया तो आपको हमारे। चलिए फिलहाल हमारी बातें हम करते हैं यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमें 1 घंटे के लिए झेला, थैंक यू सो मच। अभी हम उठाते हैं थैला और चलते हैं मंडी, लेकर आते हैं सब्जी। शाम का टाइम हो गया। अखिल भाई कहाँ चल रहे हो, अपने नीले ढाबे पे चलो या चाय पीने?
1: कौन सा पे चलो यार? नीलकंठ ढाबा।
0: ये किसी बाबा का तो नहीं है ढाबा?
1: नहीं किसी बाबा का नहीं है, मगर जो आप चाय पिए ना, चाय पी के आ जाएगा मजा। रीना को मैं एक बार लेके गया था वहाँ पे।
0: अच्छा, वेरी गुड वेरी नाइस, हमें आज पता चल रही है सच्चाई, वाह। चलिए गाइज आप गाड़ी चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, बाकी आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हैं तो अच्छे से ही आइए, मतलब टेंशन को ऑफिस में छोड़ के ही निकलिएगा। अगर गाड़ी में हूँ तो गाड़ी में छोड़ के तब घर में जाओ, क्यों भैया है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: फोन बाद में चला लीजिए कि जाने का समय हो रहा है, तो कुछ मैसेज दे दो यार चलते चलते।
1: बस मैं चलते चलते कहूँगा मस्त रहो स्वस्थ रहो।
0: मुझे लग रहा था इन्होंने ऐसे मुट्ठी करके हाथ आगे किया, मैंने कहा ये शपथ लेके जाएंगे कि आई शपथ आप मस्त रहिएगा, आई शपथ आप स्वस्थ रहिएगा, तो ये क्या था?
1: नहीं,
0: ऐसे
1: सब एकदम यार होता क्या है ना, मतलब आप ऐसा वेडनेसडे आ गया आज तो अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब टॉप उंगलियों की टिप्स पे गिनने, जल्दी जल्दी आ जाए यार, दिन 2 दिन और आ जाए फटाफट, फिर रिलैक्स हो जाए।
0: अच्छा ओके, संडे सैटरडे, सैटरडे संडे ना, ओके आपको आज भी वेट रहता है इन दिन का, राइट? चलो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी 2 दिन जैसे ही आएंगे हम लोग आपको उस वो जो अभी टूर्नामेंट आ रहा है वहाँ दिखाई देंगे।
1: हाँ सभी लोगों को पक्का, मतलब आपको भी एक बार मेमोरेबल हो जाएगा और आप भी कहेंगे यार क्या स्कूल आया हूँ, समर वैली स्कूल, मतलब इतना बढ़िया वेन्यू चुना है और इतना बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है कि इट विल बी अ मेमोरेबल।
0: सही बात है। चलिए भाई मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। कल मिलेंगे आपको। मैं क्यों हंस रहा हूँ ये आपको, मैं अखिल भाई ऑफ कैमरा मतलब सॉरी माइक ऑफ करके बताऊंगा, कैमरा तो नहीं चल रहा है यहाँ फिलहाल। अभी ये गाना सुनो, हम दोनों यहाँ से जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आपकी शाम मस्त हो जाए, और ऐसे ही सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो गुनगुनाते रहो,
0: जो भी आप कर रहे हो वो भी करते रहो।
1: मोबाइल चलाते
0: बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को। जैसे भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे से आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या चीज़ है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: पड़ता है,
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाके देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में माखन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्लर में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जुड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
4: थैंक यू सर,
5: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
4: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
5: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
4: क्या बात है।
5: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
4: जी जी, प्लीज।
5: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: ब्यूटीफुल।
5: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: वाओ।
5: उसके बाद मैंने किया है DM नियोटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
4: क्या बात है।
5: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोटोलॉजी है क्या?
4: जी,
5: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
4: हाँ जी।
5: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
4: हाँ जी।
5: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
4: Alright.
5: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
4: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
5: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
4: जी जी।
5: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं।
4: जी जी जी।
5: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
4: जी जी जी।
5: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
4: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
5: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
4: हाँ जी,
5: तो
4: हाँ
5: हम
4: जी।
5: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
4: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
5: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
4: ऑलराइट,
5: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
4: हाँ जी, हाँ जी,
5: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
4: जी।
5: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
4: ओके।
5: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
4: ओके,
5: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
4: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
5: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं, उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
4: जी।
5: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
4: Okay.
5: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
4: हाँ जी,
5: उसमें
4: हाँ
5: हमारे
4: जी।
5: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्प कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्प करा के तभी लेटा।
4: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
5: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: है ना,
4: बिल्कुल।
5: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
4: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
5: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
5: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
4: ठीक है, बहुत
5: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
4: जी,
5: है
4: जी, जी,
5: ठीक
4: जी,
5: है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
4: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
5: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
4: जी,
5: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
4: हाँ जी हाँ जी,
5: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
4: हाँ जी हाँ जी,
5: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
4: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
5: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
5: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग अगर नहीं होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की, सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट, जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है, वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
4: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए, उनके लिए आप एक क्या संदेश जाते जाते?
5: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
4: हाँ जी।
5: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है? अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं, या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या फिर बच्चा तापमान, बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है, या उसको बुखार है,
4: हाँ जी हाँ,
5: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
4: बिल्कुल सही कहा,
5: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
4: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। अगर आप अपनी खास

0: से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की शाम हमने फिर से किसी एक खास मेहमान को बुलाया है। ऑफ कोर्स इनकी आवाज से आप रूबरू हो चुके हैं एक बार। अगर आपने आज रेडियो ट्यून इन किया है तो कोई बात नहीं, आज फिर से हम आपसे उनको मुखातिब करवा देंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो दो महान लोग मौजूद हैं। एक तरफ राशिद भाई हैं और दूसरी तरफ मनु भाई हैं। और इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
1: धन्यवाद आनंद भाई,
0: थैंक यू सो मच जी। मनु जी नमस्कार, आप कैसे हैं सर?
2: बहुत अच्छा हूँ मैं।
0: आते जाते तो बहुत मिलते हैं आपसे, लेकिन
2: आपसे मिलकर तो एक अलग वाइब आती है।
0: अरे
2: तो
0: क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छी वाइब आती है, इसलिए तो हम आपको लगे हाथ बुला लेते हैं। खैर आज तो काफी एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है मेरी आपकी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। लेकिन हमारे जो श्रोता है ना, उनको आप ज्यादा लंबे अंतराल पे सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपके बीच बीच में सेशन आते रहते हैं तो वो जहन में रहता है फिर। अच्छा ये मनु भाई है, चलिए राशिद भाई पहली बार आए हैं तो जरा उनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ जी। राशिद भाई आज आप सेकंड टाइम आए हैं, इनफैक्ट
3: जी जी
0: मैं भूल गया। तो

0: बताइए सर, कैसे हाल चाल है, कैसे मिजाज है?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, हैंडसम हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने चकाचौंध में बैठे हैं लाइटिंग में
1: जी, जी।
0: तो बताइए सर, आज आप हमारे मुरादाबादी को क्या स्पेशल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे जानने वालों को।
1: जी, देखिए मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ, छोटा सा लिखने वाला हूँ, और मैं राशिद मुरादाबादी के नाम से अपनी कविताएं और गजलें लिखता हूँ। और मुरादाबाद के ही अंदर जहाँ कहीं भी मुझे मंच पर थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं अपनी कविताएं वहाँ पेश करता हूँ। और
2: ऐसी बात नहीं है रजित भाई, हम आपको जानते हैं, जितना आपने मतलब बड़े बड़े मंच शेयर किए हैं,
0: जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़े
2: आहिस्तगी से बात रखते हैं।
0: और दूसरी बात, आज आपको एफएम मुरादाबाद में मनु जी ने लेकर आए, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है, लाखों लोग आपकी आवाज सुनने वाले, तो ये मुझे लगता नहीं कि छोटा मंच है और अब आप ये कह नहीं सकते हैं।
2: यही बड़ा मंच है,
1: मंच बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को छोटा मानता हूं।
0: मेरे हिसाब से तो कोई कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता मनु जी, है ना?
2: बिल्कुल।
0: लेकिन वो इनकी अपनी मतलब कह सकते हैं बड़प्पन है, जो अपना आपको इतना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: देखे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं
0: जी,
1: और सब एक से बढ़कर
0: एक हैं, मैं मानता हूँ।
1: और हमें हमेशा जो है, हम अगर एक रुपए बराबर हैं तो हम उसे 50 पैसे बराबर हम अपने आप को बताना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने आप को कम ही
0: आंकना चाहिए,
1: आंक कर दूसरों को बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये और मैं वो, ये मैं वाली जो वो है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। खास तौर से एक कलमकार जो साहित्यकार होता है वो कभी मैं में नहीं रहता है।
0: क्या बात है, साहित्य की दुनिया से निकल के आज रेडियो की दुनिया में पहुंचे हैं जनाब
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में हमारे स्टूडियो में आपका, और आज तशरीफ लेकर राशिद भसाद मनु जी भी आए हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सुनेंगे हम हमारे स्टूडियो में। ये जो उर्दू थोड़ी बहुत मैंने सीखी है वो ऐसे लोगों से सीखी है, और शायद मेरी भी जो है अब लैंग्वेज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी और उसमें तब्दीली होगी जरूर, बहुत जरूरी है एक अनाउंसमेंट के लिए।
1: तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे
0: नहीं, ये तो आप बता सकते हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनते हैं ना, हम आपको आप आज दूसरी बार मिलने का सौभाग्य
0: सर हमें
1: मिल रहा है, हमें
0: मिल रहा है,
1: लेकिन हम अक्सर एफएम मुरादाबाद पर आपको सुनते हैं, और सुनने के बाद में मतलब एक बड़ा एक आनंद सा आता है, जैसे कि आपका नाम है,
0: शायद यही सोच के माँ बाप ने नाम रखा होगा कि मैं कुछ तो आनंदित करूंगा।
1: बिल्कुल,
0: वो कहते हैं ना कभी कभी आपका नाम आपको वो करने पे मजबूर कर देते हैं, सोचते भी नहीं हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अमिताभ बच्चन जी को ले लो
1: जी,
2: नाम का बहुत बड़ा,
1: मुरादाबाद के लाखों लोग आपको सुन के आनंद होते हैं, मैं ऐसा मेरा सोचना है।
0: चलिए सर, मैंने इस बात की आपको खैर पैसे नहीं दिए थे, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, आज मनु जी किसी हीरो को पकड़ के ले आए हैं दोबारा, ऐसा लग रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एक कलाकार को तारीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है और उसमें उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या हौसला अफजाई उसे मिल जाता है तो उसे और काम करने का पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है।
2: ये जो चीज होती है
0: जी,
2: ये उसके लिए कैटलिसिस का उत्प्रेरक का काम करती है, उसकी कीमत और भी, और श्रोताओं को इस चीज का आनंद ये मिलता है कि और कुछ अच्छा जो बोलने की, कहने की, पढ़ने की प्रेरणा एक साहित्यकार को, एक कवि को, एक शायर को मिलती है।
0: बिल्कुल,
2: तो उसका फायदा हमारे श्रोता को,
0: कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड ही हूँ, है ना? आप साहित्यकार की दुनिया में हैं, हम आवाजों की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं है एक दूसरे के साथ
2: आवाज से सिलसिला है।
0: एग्जैक्टली, अब लोग हमें सुनकर ही अपने मन में एक छवि बनाते हैं
1: जी जी,
0: राइट। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो राशिद जी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज से एक इमेज बनाएंगे, तो ये एक पावर है रेडियो की।
1: बिल्कुल,
0: है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो राशिद भाई आज आप आए हैं तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतरीन आज सुनाएंगे मुरादाबादी को, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छा गीत सुना देते हैं
1: जी जी।
0: तो अगर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहे, कोई गीत आज सुनवाना चाहिए, मौका मैं आपको दूं, और अपनी आवाजों में उसे गुनगुनाना चाहे, तो कौन सा गीत होगा जो आप चाहेंगे कि लिसनर को सुनाएं हम?
1: देखिए, मैं जो आज आपको सुनाऊंगा अपनी जो लिखी हुई एक कविता है वो तो माँ के ऊपर है।
0: ओके, लेकिन अभी हम लिसनर को कोई गाना सुनाना चाहते हैं,
1: आप माँ के ऊपर ही कोई गाना अगर चाहे तो सुना सकते हैं,
0: जैसा आपको बेहतर लगे। कौन सा गाना है जो आपके
1: लिसनर को जो है, माँ तो हर किसी को प्यारी होती है,
0: exactly.
1: माँ तो हमारी माँ होती है,
0: बिल्कुल,
1: माँ
0: बिल्कुल,
1: तो माँ के लिए कोई भी गाना एक
0: जो आपके जहन में आ रहा है, तो मैं तो चलाऊंगा।
2: हमारा आग्रह यह है राशिद भाई कि
0: आप
2: दो पंक्तियाँ उसकी गुनगुनाते हुए करिए, ताकि गीत का आगाज हो सके और प्रोग्राम का भी।
0: मेरे जहन में तो एक ही कह रहा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है।
1: हाँ, वो तो सदाबहार गाना है, वही वही प्ले कर दीजिए,
0: बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे कैसे प्ले कर देंगे, हम तो आपसे सुनेंगे ना, हम तो तभी आगे बढ़ेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दो लाइनें।
0: हाँ,
1: तू

क्या बात है। चलिए, ये नहीं पता था कितना इनके अंदर खजाना है। सिर्फ ये साहित्यकार की दुनिया में नहीं, मुझे लगता है सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ करते हैं। वो तो अभी आके पता चलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: संतोष का ठंडा साया बनकर बन जाती है माँ।
1: क्या बात है,
0: संतोष का ठंडा साया बन जाती है माँ। और बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही, बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही, दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ।
1: क्या बात है,
0: दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ। बचपन से ही माँ जो है बताती है, बेटा देखो ये करते हैं, ये ऐसे ये नहीं करते, ये गलत बात है, ये गंदी बात है, सब
2: प्रथम गुरु है।
0: हाँ बिल्कुल, तो बचपन से ही हमें जो है हर चीज की अच्छाई बुराई माँ समझाती है।
1: बहुत बेहतरीन।
0: तो अगला मैं रखता हूँ आपके सामने
1: जी।
0: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर,
1: क्या बात है,
0: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर, चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
1: क्या बात है,
0: चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
2: ईश्वर ने ये सामर्थ्य माँ को दी है,
1: सच बात है,
0: बिल्कुल हकीकत है। और पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, तभी तो भगवान का रूप कहलाती है माँ।
1: क्या बात है,
0: तभी तो भगवान का रूप कहलाता है माँ। पर ये अंतिम है जो बड़ा थोड़ा दुख भरा है, दर्द भरा है
1: जी,
0: ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके लिए है जिनके जीवन में इस चीज की कमी है, यानी के और माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ। ये कमी तो खैर उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जिनकी जीवन में माँ
2: बहुत बड़ी बात है वास्तव में। और आपने जो है एक अलग तरफ मोड़ दी है दिशा,
1: सच में
2: हमारे श्रोतागण ये बात महसूस कर रहे होंगे। और वाकई जो आपने एक सब्जेक्ट लिया माँ, ये दूसरी चीज ये कि जो शब्दावली आपकी वो कितनी सदीवी, कितनी अच्छी, हिंदी उर्दू दोनों का संगम, और वो एहसास जो आप बताना चाह रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल पहुंच रहे होंगे।
1: बिल्कुल, उसके जो भाव थे उसमें जो एक मतलब खुशी भी थी, तकलीफ भी थी, दोनों चीजें आपने बयां कर दी और लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि वही बात के जो महफिल है, मैं कहना चाहूंगा कि ये रूहानी हो गई है।
1: क्या बात है
2: कि नहीं है,
1: क्योंकि वही चीज जो रूह हो गई है,
2: रूह से रूह तक जाती है, तो फिर वास्तव में बात रूहानी हो ही जाती है।
0: हो ही जाती है,
2: बिल्कुल। तो आनंद जी, मैं जैसे कि अभी भैया ने माँ के बारे में बातचीत की, तो मैं कहता हूँ कि माँ पिता ये वो अनमोल रुतवा है, ठीक है ना, जिसका दर्जा ईश्वर के समतुल्य बल्कि उससे भी ऊपर पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो जब जिक्र माँ का हुआ है तो मैं एक रचना के एक दो बंद,
0: बिल्कुल,
2: जो पिता को समर्पित है, मैं इसे कहकर के राशिद भाई बात को
0: जी
2: एक समानता के बीच लाने की कोशिश करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आप तो ऐसे देखें कि छिपा पता क्यों पिता में, अगर मात्रा हटा दें तो पता हो जाता है, सब पिता है।
0: बिल्कुल।
2: छिपा पता क्यों
0: पिता में
2: हुआ कभी ये भान,
1: सही बात,
2: छिपा पता क्यों पिता में हुआ कभी ये भान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर,
0: क्या कहें,
2: सर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर। पद क्या क्या कहते हैं पिता के बारे में,
1: जी।
2: आंधी बारिश खुद पर झेले, हवा थपेड़े रोके, जर

वही दृष्टि अनमोल पिता के साए संग आती है जिससे

0: छप्पर
1: बहुत हो
0: सिर पर छाव पिता की कच्ची दीवारों पे छप्पर। और इस अंतरे में माता और पिता दोनों के साथ
1: दोनों का समय
0: चलते हैं।
2: क्या बात है।

0: छप्पर सिर पर छा पिता की कच्ची दीवारों पे छप्पर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूबसूरत। तो, मनु जी आनंद आ गया। बहुत खूबसूरत जो है, आपने एक नई तरफ जो है चीजों को मोड़ दिया आपने, बहुत बेहतरीन।
0: नहीं, मुझे महसूस हुआ कि माँ जैसी अजीम शख्सियत के साथ पिता जैसे अंबर का जो आशीर्वाद है वो जब पहुंचे तो ये जो हमारा सुनना है, हमारा पढ़ना है, ये सब सार्थक हो जाए और एक सकारात्मक संदेश हमारे श्रोताओं को भी मिले, जिससे कि आनंद के साथ साथ एक जो मैसेज है, हालांकि ये कवि धर्म है कि कोई भी बात है, अगर कोई भी रचना है हमारी, तो वो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे उसके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खुदा को पसंद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत बढ़िया मनु जी, बहुत आनंद आया इसी बात पे। एक बहुत ही बढ़िया गाना मैं पिता के लिए प्ले करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी फिल्म थी आमिर खान साहब की, कयामत से कयामत तक, उसमें गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो यही गाना, अब भाई इतनी सारी बातें हो रही है, मदर के ऊपर हमने सुना, अब हम फादर के ऊपर सुन रहे हैं, तो प्रोग्राम में चार चांद लग गए। इस गाने के बाद हम आएंगे और फिर अपने साथियों से इजाजत लेंगे। श्रोताओं आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: खूबसूरत नगमों और बातों से सजाए प्रोग्राम। और इसमें
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
5: करें कुछ क्रिएटिविटी के साथ करें और कुछ ऐसा करें कि जिससे समाज का भी भला हो।
6: बिल्कुल,
5: समाज को जो है अच्छी बातें पता चलें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है कुछ ऐसा लिखें जो लोगों को, जिससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। हमेशा मनोज जी, हम जो है और भी साहित्यकार हैं मुरादाबाद के, हम सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं हमारी जो लेखनी है उसके अंदर समाज का हित छुपा हो, समाज का कोई ना कोई भला हो।
7: ये हमारी बिल्कुल सही बात कही राशिद भाई। लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारी की बात आ है तो आनंद जी के कंधों पर ये वजन कुछ ज्यादा है क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी रियल ऑन एयर रहती है और इनका इनके मुंह से निकला एक शब्द वो पूरे वातावरण में फैलकर हमारे पूरे मुरादाबाद के श्रोताओं को और एफएम के श्रोताओं को
6: पहुंचाता है। ये आपकी ज़रे-नवाज़ी,
7: ये इनके कंधों पर ज्यादा बोझ,
5: बहुत
7: ज्यादा बोझ है,
5: क्योंकि इस अच्छी चीजों को सजाकर, ये सजाकर श्रोताओं तक जब पेश करते हैं, ये असली रोल है, ये असली चीज है। श्रोताओं तक वो चीज इस तरीके से पहुंचे कि उनके दिमाग में बैठती जाए वो बात, उस वो कैरेक्टर ये प्ले करते हैं, वो किरदार ये निभाते हैं।
7: और आजकल का वो दौर जब की डिनाइस सिस्टम चल रहा है और बच्चे अपने माता पिता के वार्ड में भाई जी शब्द लगाते, क्यों कैसे, ऐसी कंडीशन में उसे इस कलेवर में लपेट कर कि उनको भी वो चीज टच करे, पेरेंट्स को भी वो टच करे, जो ये गैप है, जो इसका एक पुल बनाया जाता है, तो ये आनंद भाई का अपना जो एक तरीका है, जो इनका ये टैलेंट है, इसके सामने कौन बैठेगा।
6: अरे मनु जी ऐसा नहीं है, बस हमारी भी कोशिश होती है, प्रयास होता है कि अपने, अगर हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसे सही दिशा में लेके जाएं और उसके जरिए से सही लोगों तक सही चीजें डिलीवर करें, है ना। जब तक हम एक मैसेज स्प्रेड नहीं करेंगे और सही से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अगर एक पावर है, एक आपके पास मंच है, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए और सही टैलेंट मौका मिले और सही बात रखने का एक सही तरीका भी होना चाहिए।
7: बिल्कुल सही बात है। तो बस नहीं, आपका जो सोच है, आपका जो सोचना स्वस्थ है
6: जी,
7: तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे श्रोतागण है इनको स्वस्थ ही बनाएगा, क्योंकि सीट पर बंदा कौन बैठा है, उसकी मनोस्थिति क्या है राशिद भाई
5: जी, जी।
7: ये सबसे बड़ा दारोमदार होता है,
5: बहुत
7: कि हम अपना क्या संदेश किस तरह से पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो जो जिस सीट पर व्यक्ति बैठा होता है उसकी जो अपनी इंटेंशन होती है वही चीज है। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं इस जगह को एक उदाहरण के साथ देना चाहूँ तो जैसे जहाज पर जो जहाज चलाने वाला कैप्टन होता है ना, वो सारी दिशा उन सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं उन सबकी दिशा तय कर देता है कि उसे कहां और किस तरह से लेके चला जाए। तो यही सीट का प्रभाव है। आनंद जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि आप इतने बड़े काम पर, इतनी बड़ी सीट पर हैं, जिसका दारोमदार ये है कि हमारा पूरा शहर उसे इन्फ्लुएंस होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो इन्फ्लुएंस जो है सकारात्मक है।
6: बिल्कुल सर, हमारी भी कोशिश होती है कि अभी हमारी शुरुआत है, हम तो अभी जेंजी है, अभी स्टार्टिंग है हमारी तो लाइफ की, तो जितना हो सके अच्छी चीजें करें और अपने श्रोताओं को, मेरी तरह और भी तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, बट वो ये किसी का पहुंचता है, किसी का नहीं पहुंच पाता है, किसी का ऐसा होता है कि समय पर स्पॉटलाइट में आ जाता है कोई बंदा, कोई देर से आता है ना, बट मेरा मानना यह है कि जब भी मौका मिले बस अच्छा करते जाओ, सिर्फ अच्छा करो, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, है ना। जिस इंटेंशन से आप बात करोगे रिवर्ड भी वैसे ही मिलेगा, तो बस सिंपल सा मौका है। बाकी मनु जी थैंक यू, राशिद भाई आपको भी थैंक यू। चलते चलते आप लोग क्या अपनी तरफ से बोलना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे?
5: देखिए, मैं जो आपका रेडियो एफएम मुरादाबाद है।
6: जी जी,
5: पहले के जमाने से और अब तक बहुत सारी चीजें आई और बहुत सारी चीजें गई, बदली, काफी चीजें बदली, लेकिन मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो पहले भी था और आज भी है। आज भी एफएम मुरादाबाद के नाम से रेडियो है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं यहाँ मुरादाबाद में, और वैसे भी
7: एफएम
5: वैसे भी चल रहा है देश के अंदर, तो रेडियो की महत्ता कम नहीं हुई है।
7: महत्ता की बात है सर, मैं समझता हूँ कि जो विजुलाइजेशन है उसमें बंदा अपना काम करते हुए उसमें उसको बाधा मिल सकती है, लेकिन जो ये केवल सुनने के लिए है
5: जी, जी।
7: तो इस चीज से वो उनके ना तो काम पर वो फर्क पड़ता है बल्कि और सकारात्मक तरीके से उन्हें और उसका एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है।
5: बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि देखने से ज्यादा सुनना जो है ना, सुनना वो बहुत ज्यादा दिमाग पर असर करता है देखने से ज्यादा, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि व्यक्ति काम करते करते भी चीजों को सुन रहा है तो माइंड में उसके जा रही है, दिमाग में चीजें आ रही है और कहीं ना कहीं वो सोचता है।
7: बिल्कुल, हाथ अपना काम कर रहे हैं और सुनने के बाद दिमाग अपना
5: काम कर रहा है, तो देखने से ज्यादा भी मैं सुनने पर फोकस जो है अगर रहे इंसान का,
7: ये मल्टीटास्किंग में हो गया।
5: जी जी,
7: अगर देखना है तो सिर्फ देखेगा वो।
5: जी जी,
7: और यहाँ है कि सुन रहा है तो सुन भी रहा है और उसका काम भी लगातार अनवरत बिना बाधा के चल रहा है,
5: बाधा
7: ये बहुत बड़ी बात है,
5: ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रेडियो की जो महत्ता है वो आज भी बनी हुई है और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आनंद जी को कि मुरादाबाद के हमारे जो सम्मानित शहरवासी हैं उनको भी जो है रेडियो से रूबरू वो करा रहे हैं और हर तरीके से उनको उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं, संगीत के साथ में और अच्छी अच्छी जानकारी,
7: पूरा
5: अच्छी अच्छी जानकारी। हाँ बिल्कुल,
6: तो बहुत जरूरी है राशिद भाई। आप देखिए, अगर हमारे पास एक मंच है और आप जैसे अच्छे कलाकार हैं तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, है ना। तो हम बस वही कोशिश करते हैं कि सिर्फ रेडियो पे गाने जानकारियों के अलावा जो लोकल टैलेंट है, जो लोकल अच्छे लोग हैं, आजकल इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास बस प्लेटफॉर्म नहीं है।
5: जी जी,
6: बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं मनु भाई, उन्हें एक मौके की तलाश है और अगर हमारे पास वो मौका है तो शायद उससे उनका टैलेंट और उजागर हो और हम भी कुछ अच्छा कर पाए और उनके मन को भी खुशी हो।
7: टैलेंट
6: बस वो चीज है और रेडियो तो इतनी अच्छी पावर है, हमें नहीं पता इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं ये हमें नहीं पता हमें कौन सी पर्सनालिटी रेडियो पे सुन रहा होगा।
5: बिल्कुल,
6: नो नेवर की हमें विधायक जी सुन रहे हो, हमें नहीं पता हमें कोई पुलिस ऑफिसर सुन रहे हो, और हो भी सकता है सुन भी रहा हो और सुन भी रहा, क्योंकि ये एक रेडियो, क्योंकि हमें नहीं पता किस वक्त कौन श्रोता ट्यून इन कर ले, आई डोंट नो।
7: नहीं, अच्छा दूसरी चीज एक और है कि इंटेंशनली अगर कोई हमें सुनता है तो उसका प्रभाव अलग, और हम किसी को जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं तो उस दोनों बातों में बहुत अलग। तो ऐसी कंडीशन में जब एक रिलैक्स मूड से कोई भी व्यक्ति, वही जैसे कि आपकी सीट पर आपका जो दायित्व है वो वेरी करता है, तो जिन जिन कानों तक ये बात पहुंच रही होगी अपने अपने स्तर पर वो उस चीज के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे
5: बिल्कुल
7: स्वतंत्र है, कर सकते हैं।
5: कहीं ना कहीं विचार जब लोगों तक पहुंचते हैं, अच्छे विचार जब लोगों तक पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें से उसको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं।
6: जरूर, बेशक बहुत जरूरी है अच्छी चीजें फॉलो करना। राशिद भाई, मनु भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
5: धन्यवाद,
6: आप आए, आपने इस महफिल को इतना खूबसूरत बनाया और बाकी का जो पिटारा है वो संभाल के रखते हैं, फिर बुलाएंगे आपको, परेशान करते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और बाकी हम चाहेंगे आप लोग भी अपना साथ ऐसे ही निभाते रहे हमारे स्टेशन के साथ, और ये जो मंच है एफएम मुरादाबाद का, ये जो स्टेज है वो आप जैसे कलाकारों के लिए हमेशा खुला, आपका जब मन करे आप आ सकते हैं, आपका एक परिवार है एफएम रेडियो।
7: शुक्रिया। बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं,
6: बस थैंक यू।
7: इसमें हम सोचते हैं कि सारी बातें आप तक,
6: बस बहुत बढ़िया। और बाकी दोस्तों मैं भी अब जो है इजाजत लेना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी जो है कमी है, क्योंकि वो है ना कि समय के साथ नहीं चलोगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कंधों से कंधा मिलाकर चलना है तो पहले समय के साथ चलिए, समय वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लाइफ में आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। सिर्फ एक मिनट रहती है, अगर ट्रेन जाती है तो बड़ा पछतावा होता है, काश एक मिनट पहले पहुंच जाता है ना, तो वो चीज है बस समय के साथ चलिए। और ये जो घड़ी की सुइयां है ना, बहुत कुछ जिंदगी में बदलती है। फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा, समय बहुत कम है, टिक टिक करके मुझे इशारा कर रही है घड़ी की सुइयां कि बेटा निकलो बाहर, बहुत बातें हो गई हैं। तो कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए और ऐसे ही धाकड़ लोगों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 हमारे साथ। अगर आप भी कुछ अच्छा शेरो शायरी करते हैं या आपके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे बेशक आप हमारे मुरादाबाद रेडियो तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें एक मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9837896896 9837896 पर हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट, मुरादाबाद में कहां से हैं आप, हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी और हो सकता है अगला नंबर आपका हो मुरादाबाद स्टूडियो में। बाकी ऐसे ही सुनते रहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छे गानों के लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मोड़ पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, नमस्कार।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: अपने हितों और चिंताओं को दोहराया, भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
4: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।

0: tinig at pusol sa iyo. Sa atin ay atmabiswas at maunfasan sa kurat mo aksyon sa medang silta anoytik mo ilaseri paripulong.
1: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
4: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: एमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
3: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
4: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरूका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया। कहा, इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: You're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
6: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार मुरादाबाद, कैसे हैं आप? और मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप होंगे मस्त और थोड़े से दुरुस्त कि भैया चलो फटाफट पहुंचना है घर और करनी है दो बातें। तो हाँ साहब, शाम की इस खूबसूरत महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें सिर्फ कानों तक नहीं जाती सीधे दिल तक भी पहुंचती हैं। एक शायरी आप ही के लिए। शाम भी खूबसूरत है, मौसम भी कमाल है, आपके साथ होने का बस यही तो सवाल है। रेडियो की इस महफिल में थोड़ा सा प्यार रखिए, बाकी सारी टेंशन आज हमारे पर छोड़ दीजिए। तो हाँ जी दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा मुस्कुराने का समय है। तो बताइए आज आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा तो वजह बताइए, और ख़राब रहा तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो अगला एक घंटा है ना, हम और आप एक दूसरे से पूरी कहानी करके पूरी बात करके ही जाएंगे साहब। और कहना चाह रहे हैं हमारे पहले कॉलर कुछ, तो उनसे सीधे ही बात करते हैं और पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? नमस्कार जी।
1: नमस्कार सर, बढ़िया है।
0: सर क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं? हमारे श्रोताएं सब जानना चाहते हैं।
1: हम हमारा नाम नरेंद्र सिंह, अरावली एमडीए कॉलोनी से बोल रहा है।
0: क्या बात है सर, तो एमडीए कॉलोनी का मौसम कैसा हो रहा है इस समय?
1: तो थोड़ा गर्म है लेकिन 12 बजे के बाद शिमला हो जाता है।
0: थोड़ा कैसा हो जाता है?
1: शिमला शिमला ठंडा।
0: अरे क्या बात है, इसका मतलब आपका एसी बिल्कुल सही काम कर रहा है।
1: एसी नहीं लगो, सिर्फ पंखे लगे हुए हैं।
0: क्या बात है साहब, आपके पंखों से ही शिमला बन रहा है।
1: क्योंकि बराबर जंगल है ना।
0: अच्छा सही है साहब, तो जंगल में आप क्या है वो?
1: दुबई कब जा रहे हो
0: सर? क्या
1: दुबई कब जा रहे हो? दुबई
0: सर, दुबई तो अभी रुक के जाएंगे सर। हाँ सर आपको भी आज सारी पोल खुल गई है हमारी रीना वाले प्रोग्राम में।
1: चाय भी आए?
0: हाँ जी चाय भी पी आए हम सब। तो और बताइए क्या कर रहे हैं आप इस समय? आप क्या कर रहे हैं इस समय ये बताइए पहले। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर सर।
1: प्यार के फूलों से जो मनती है माला, वो अखिल जी को अर्पण की जाती है।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। और ये माला जो है इसमें पक्का कौन से वाले फूल है, लाल वाले सफेद वाले?
1: नहीं, हम तो लाल गुलाबी डालेंगे।
0: लाल गुलाबी डालेंगे,
1: डालेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। सर ये बताइए नरेंद्र जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी पहुंच गए, शॉपिंग करी आपने या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और जब बिल देने की बारी आई या कहीं पेमेंट करने की बारी आई तो पता चला यार पर्स तो घर पे ही रह गया?
1: ऐसा नहीं करते, ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें बिल नहीं देना पड़ता।
0: नहीं ये
1: देख खाएंगे तो 10 ही देंगे, 20 तो खाएंगे 30 देंगे।
0: तो मतलब क्या बात है, मतलब आज तक आपका कभी ऐसा पाला पड़ा ही नहीं कि यार कभी कुछ एक आध सामान लिया हो और पर्स तो घर पे ही रह गया।
1: आने तो बोला है, जिंदगी इंसान लेती है, दोस्तों की जान लेती है।
0: अच्छा कौन से दोस्तों के लिए आपका ये गाना है?
1: ये नसीब फिल्म का गाना है, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ने गाया है, जिंदगी इंसान लेती है।

क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये किसके लिए आप डेडिकेट करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये गाना जरूर हम आपके लिए प्ले करते हैं नरेंद्र जी, और बहुत ही अच्छा लगा आप हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं और हमेशा ऐसी ही कॉल करते रहें और FM पे अपने दिल की बात साझा करते रहें।

0: नहीं, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया।
1: हफ्ते में फोन लगाते हैं, और आपके में तो सोमवार से शुक्रवार तक तो लगा ही देते हैं 1-2 बार।
0: नहीं, धन्यवाद। आप हम इस तरीके से कॉल लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, पहले ये गाना एंजॉय करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। ओके। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे नरेंद्र जी और कह रहे थे कि उनके साथ कभी ऐसी घटना हुई नहीं है। हाँ सर, हुई नहीं है, मगर कभी ना कभी ये घटना जो है ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है कि आपको भी नहीं पता होता और सामने वाले को भी नहीं पता होता कि यार ये आज ऐसा होने वाला है। कोई नहीं जी, तब तक लेते हैं इस गाने का आनंद, और उसके बाद आपकी भी कोई दिल की बात हो तो 9837896896 पर कॉल करें या मैसेज करके हमारे साथ जरूर शेयर करें।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं आपके दिल से हमारे दिल तक। चलिए साहब, आज का दिन जैसा भी हो कैसा भी हो, बहुत कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल अच्छी होती हैं। कभी ना दोस्तों को, मतलब कहते हैं ना, हमें किसी भी बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती, बस हमसे कोई पूछ ले कैसे हो और दिल कहता है हाँ बस अब ठीक हूँ। एक शायरी इसी बात के ऊपर है, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं एहसास से पहचाने जाते हैं, कुछ रिश्ते आवाज से नहीं एहसास से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब पाए जाते हैं। जी हाँ हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू। मगर एक, चलिए इसी के ऊपर एक बात और थोड़ी सी याद आ रही है। मुस्कुराने की वजह बहुत छोटी सी होती है मगर मुस्कान की कीमत बहुत बड़ी होती है। कोई अपना अगर कह दे मैं हूं ना तो जिंदगी थोड़ी आसान सी होती है। तो दोस्तों, आज अपने किसी एक खास इंसान को छोटा सा मैसेज ज़रूर कीजिएगा और लिखिएगा ज़रूर कि तुम मेरे लिए खास हो। वो ये तो कहेगा अरे चल नौटंकी, मगर नहीं, सच में कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं ना बिल्कुल दिल से पहुंचती हैं। तो चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो इस समय, क्योंकि हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यार मेरी बात कब होगी आपसे। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भैया, आपकी दुआ है भाई साहब।
0: क्या नाम है और कहाँ रहते हैं, हमारे सभी श्रोताओं को बताइए।
1: मंझोली, मुरादाबाद।
0: तो प्रभात सैनी जी, आप क्या करते हैं?
1: अपना भाई साहब खाने का बिजनेस है ऑनलाइन, जोमेटो स्विगी पर 24 घंटे चलता है।
0: क्या बात है, 24 घंटे?
1: 24 घंटे।
0: तो मतलब आप आराम कब करते हैं?
1: आराम तो हराम है, ये हमारे रोजनों का है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किस नाम से अगर 24 घंटे सेवा आपकी लेना हो?
1: फ्लेवर ऑफ इंडिया।
0: हाँ। तो इस समय आप फ्लेवर ऑफ इंडिया साथ में फ्लेवर ऑफ मुरादाबाद भी दे रहे हैं?
1: ऑल मुरादाबाद है पूरा।
0: तो कौन सा ऐसा फेवरेट डिश है आपके यहाँ की जो एक बार खाए तो
1: अपनी तारीफ को आदमी कर नहीं सकता?
0: बिल्कुल सही काम, मगर तब भी एक कोई एक
1: फेवरेट तो हट ही है। मान लो लवाबदार पनीर है या मटर पनीर है या चाय है, हमारे छोले भटूरे हैं, सब चीज है।
0: मुझे तो भूख लगी आई है आपके ऐसे ऐसे एकदम नाम लेने से।
1: लवाबदार पनीर और मटर पनीर और अपना जो भी आइटम चलता है नॉर्मली सब कुछ मिलेगा आपको।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सनी जी। तो आज कोई एक शायरी आप सुनाएंगे पनीर, जिसमें पनीर का भी जिक्र हो जाए?
1: अरे तुमने तो मेरे मुंह की आवाज सुन ली।
0: बताइए कौन सी ऐसी शायरी है जो आज आप सुना रहे हैं?
1: दिल खुश कर दिया तुम्हारी बातों ने।
0: क्या बात है,
1: दिल खुश कर दिया तुम्हारी बातों ने, सामने मटर पनीर है। दिल खुश कर दिया आपकी बातों ने, सामने मटर पनीर है। दूध तो ऐसी पड़ा रह गया मगर मेरी तो फरमाइश खीर है।
0: बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया साहब।
1: देखो छोटे मोटे ऐसी मिलके बन जाते हैं आपकी बातों से।
0: बस सर ऐसी ही मुस्कुराते रहेंगे और ऐसी ही बातें बनती रहेंगी तो कहते हैं ना कुछ तो दिल की बातें निकल के आएंगी। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप?
1: पहले एक शायर, एक शेर हमें आप सुनाओ।
0: एक शेर मैं आपको सुनाऊं?
1: हाँ, उसके बाद हम उस शेर को पूरा कर दिखाएंगे।
0: तुमसे बात हो जाए तो दिन अच्छा लगता है,
1: एक
0: तुम्हारी हंसी सुन लो तो दिल बच्चा लगता है। पता नहीं कैसा रिश्ता है तुमसे, मगर तुम्हारा नाम सुनकर चेहरा सच्चा लगता है।
1: सच्चा लगता?
0: सच्चा लगता है।
1: सच हकीकत नहीं होती हर बातों की, सच
0: हाँ जी
1: हकीकत नहीं होती हर बातों की, गुजरी रात नहीं आती बातों की। हम तो देख के ही मुस्कुरा देते हैं, जरूरत नहीं होती लोगों की बातों की।
0: क्या बात है, क्या बात कही आपने, तो एकदम जहां से बात छोड़ी वहां से बात
1: छोटे
0: पकड़ ली, बहुत ही बढ़िया।
1: छोटे थोड़े साए उस्ताद, कभी मिलना, दिल ना खुश हो जाए जमाने का, हम तो गुजर जाते हैं ऐसे में खाने से।
0: क्या बात है, तो आप FM सुनते हैं या आज आपने FM लगाया है?
1: मैं बहुत पुराना शायर हूँ, हमारी कोल कट जाती है देखते ही नाम हमारा, कोल
0: क्या बात है
1: कट जाती है नाम हमारा देखते ही, हम कोल हर रोज लगाते हैं मगर हफ्ते का टाइम मिलता है एक किसी गुजरने के लिए।
0: कोई नहीं कोई नहीं साहब, जो भी आपको टाइम मिलता है आप उसमें टाइम में छा जाते हैं प्रभात जी, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बहुत ही, कहते हैं ना आप, आपके पास दोनों दो दो वो हैं
1: पैसा
0: फनकार।
1: कई सौ गाने लिखे हुए मेरे पास, यूट्यूब पे मेरा अपना चैनल है, कभी मिलोगे तो बात करना।
0: जरूर जरूर, किस नाम से है आपका चैनल यूट्यूब पे?
1: नाम तो भूल गया, अपना नाम भी याद ना रहता, मेरा कभी कभी याद रहता, नाम तो पड़ा हुआ
0: कोई नहीं, कोई जब ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं तो कभी कभी

0: जो आपके साथ पहले आपका साथी जो कभी टकराया था, वो दोबारा कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे ज़रूर मिलता है, और उस समय वो जो दिल से निकलती है ना आवाज़, वो सच में इतने नज़दीक पहुंचा देती है उसके कि लगता है यार हम इतने दिनों से मिले ही क्यों नहीं थे, मतलब कहाँ थे हम अभी तक। हमारे पास एक मैसेज है हमारे लिसनर का, कहते हैं अखिल भाई आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन आपका शो सुनकर, आपका ये प्रोग्राम सुनकर मूड फ्रेश हो गया है। अरे साहब बस यही तो हमारा काम है दोस्त, अगर आपकी थकान थोड़ी कम हो जाए और चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो समझिए हमारी शाम सफल हो गई है। दोस्ती के नाम एक लाइन जरूर कहेंगे, और वो ये है कि दोस्त वो नहीं जो हर खुशी में साथ हो, दोस्त वो है जो हर मुश्किल में हाथ हो। तो जरूर आपके भी कोई ना कोई ऐसा हाथ लगा है आपके दोस्त। चलिए हम करते हैं बात हमारे FM मुरादाबाद 89.6 पे, जो हमारे श्रोता हैं हमें कॉल करते रहते हैं 9837896896 पे, कहते हैं यार ये कभी कभी कॉल करते हैं मिलता नहीं है, कभी बिजी जा रहा होता है, कभी उठता ही नहीं है, तो क्यों नहीं जिनसे बात हो रही है चलिए उनसे पूछ लेते हैं क्या कर रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: भाई साहब आपका आशीर्वाद है।
0: अरे सर आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, आप और हम तो सब साथ में हैं। और बताइए हमारे सारे श्रोताओं को क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सागुप्ता, साकी बोल्ला की जारत के पीछे नदी पे से मुरादाबाद से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं उस्मान जी आप?
1: गाना सुनना है, दिल की आरजू ठीक है, कोई दिल रोबा मिले।
0: क्या बात है, आज आप मतलब बिल्कुल एकदम टोन में हैं, कह रहे हैं आज तो बस मुझे गाना सुनना है, आज मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं।
1: अरे नहीं, जो आप कहेंगे वो सुना देंगे साहब।
0: अच्छा उस्मान जी एक बात पूछना चाहेंगे हम, पूछें आपसे, कभी क्या ऐसा हुआ है कभी घर में टंकी में पानी नहीं आया हो और आप बाल्टी लेके चले गए हो सीधे नदी पे कि चलो आज नदी पे ही जाके बाल्टी भर के नहा लेते हैं?
1: कभी कभी तो ऐसा हो भी जाता है, तो फिर वो पानी कम होता है
0: नहीं, सच सच बताइएगा कभी कभी होता है या लगता है रोज ही बाल्टी लेके नदी पे चल देते हैं?
1: कभी कभी हो ही जाता है, जैसे लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी नहीं आ पाता।
0: सही कह रहे हैं आज, मतलब जो है इसका मतलब जो है पकड़े गए आज आप उस्मान जी, है ना? तो उस्मान जी इस समय क्या कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या शायरी लेके आए, कोई तरक्की भड़कती शायरी लेके आए या आज बिल्कुल आपका दिल जुड़ा हुआ है? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं,
1: आपकी इजाजत होगी तो सुना दूंगा सर।
0: अरे सर जरूर जरूर सुनाइए सर।
1: ए बाम क्या लिखो तख्ते इश्क पर, कलम मेरे हाथ में दबा दे ऊपर।
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत खूब। कहाँ बाकी की लाइनें कहाँ गई या इसी में ही सब कुछ सिमट गया है?
1: और
0: नहीं नहीं आप उस्मान जी एक बात और हमें बताइए,
1: जी सर।
0: ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती लेकिन उसका दर्द बहुत होता है?
1: दिल टूट जाता है ना।
0: क्या बात है उस्मान जी, आज आपने एकदम कहते हैं दिल की बात और एकदम दिल को बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, तालियां सर आपके लिए। तो
1: शुक्रिया सर।
0: तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी करते हैं।
1: मुबारकबाद हो साहब, आप प्रोग्राम बहुत बढ़िया चालू करते हैं, फरमाइश।
0: धन्यवाद साहब धन्यवाद। चलिए उस्मान जी आपकी फरमाइश सुनाते हैं और आनंद लेते हैं इस शो का।
1: शुक्रिया साहब, मेहरबानी आपके।
0: तो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे उस्मान जी, मैं कहता हूँ ना कि जो बिल्कुल एकदम दिल से जुड़ा हुआ होता है वो पूरी दिल की बात समझ ही लेते हैं, तो इनका भी दिल रुका नहीं जाता है, जब भी शो होता है प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले एकदम डायल कर देते हैं क्या 9837896896। हाँ हाँ ये नंबर जो है इसलिए बार बार बताना पड़ता है, कभी ना कभी आपके दिल से भी दबेगा।

और यहाँ भी बजेगा। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और खूब सारी बातें करेंगे इस गाने के बाद, क्योंकि समय होने वाला है, 10 बजने वाले हैं और जाना भी है, मगर पहले होगी दिल की बातें, उसके बाद निकालेंगे कोई और रास्ता। तो कर लेते हैं इस गाने का आनंद।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। और हाँ, इतना सारा जो मस्त मौसम बना था ना, आज खूब सारी बातें हुई हैं और खूब सारी कॉल आई हैं, तो दिल की बातें तो होनी थी ना, कुछ तो बातें ऐसी होनी थी दिल की, दिल से निकले। तो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम जमा करते रहते हैं अपने पास, पैसा, सामान, कपड़े और कुछ यादें, मगर सबसे ज़रूरी क्या है, वो है अच्छे रिश्ते। क्योंकि आखिर में याद यही रहता है कि किसने हमारा हाथ पकड़ा था, किसने हमारी बात सुनी थी और किसने मुश्किल वक्त में ये कहा था, चिंता मत कर भाई मैं हूं ना। तो होता है साहब, उन्हीं रिश्तों के ऊपर एक प्यारी सी शायरी है, रिश्ते बहुत मिलेंगे जिंदगी की राहों में मगर कुछ ही दिल में उतर पाएंगे, बाकी सब गुजर जाएंगे वक्त की तरह, कुछ हमेशा याद आएंगे। और किसी की जिंदगी में सुकून बनकर देखिए, किसी के चेहरे की मुस्कान बनकर देखिए, दुनिया आपको याद रखे या ना रखे, किसी के दिल में अपना नाम बनाकर देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने लिसनर से और पूछते हैं क्या कर रहे हैं इस समय वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: अक्षर।
0: अक्षर जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: अपने स्कूल का होमवर्क करते हुए रेडियो।
0: क्या बात है, क्या बात है, होमवर्क पूरा कर रहे हैं आप। आपके एग्जाम्स हो गए स्कूल में या नहीं हो गए?
1: अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर जो होने वाले हैं।
0: अभी तक स्टार्ट नहीं हुए?
1: नहीं।
0: तब होने वाले हैं?
1: हाँ।
0: कौन सी क्लास में हैं आप?
1: एट्थ
0: क्लास में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ अक्षत, आपका फेवरेट हीरो कौन है?
1: एवेंजर्स में
0: कोई सा भी? हाँ, एवेंजर्स वाला ही बता दो आप।
1: आयरन मैन।
0: आयरन मैन। और बॉलीवुड में अपनी पिक्चर जो आप देखते हो उसमें कौन है हीरो?
1: मेरे को वैसे तो पिक्चर्स पसंद नहीं है, पर जो ट्रेंडिंग होती है वो देखता हूँ।
0: तो इसका मतलब आपके पापा ही आपके हीरो हैं फिर? देखा देखा, आज हमने पकड़ लिया। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: मैथ्स
0: आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत दूर भागता था मैथ्स से।
1: पता नहीं सब क्यों भागते हैं।
0: सब नहीं भागते, मैं ही भागता था, ऐसा नहीं है, सब नहीं भागते, सब तो पकड़ लेते हैं।
1: बहुत लोग को मैंने जब बताया तो वो कहते हैं।
0: अच्छा ऐसा कहते हैं सब?
1: हाँ।

0: तो देखो आपने कितनी अच्छी चीज, कितनी मुश्किल चीज पकड़ रखी जिससे सब भागते हैं, और अक्षत ने उसी को पकड़ रखा, उसी वही फेवरेट अक्षत का। तो अक्षत कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
1: अभी जो हनुमान हंस मूवी आई है उसका पार्वती सॉन्ग।
0: क्या बात है, आपने देख ली वो मूवी?
1: हाँ मैंने तो देख ली।
0: क्या अच्छा लगा उस मूवी में आपको?
1: मेरे को तो सॉन्ग अच्छे लगे, और वो पूरी स्टोरी बता रहे थे उनकी, क्या कहते हैं।
0: बाबा जी की, वो अच्छे लगे आपको हैं?
1: हाँ
0: कोई ऐसा सीन आपको जो बहुत अच्छा लगा हो कि अखिल भैया मेरे को ये सीन बहुत अच्छा लगा था मूवी में?
1: वो जो अपने फ्रेंड्स को मैजिक करके फ्रूट्स दे रहे थे। हाँ
0: अरे हाँ यार, वो सीन तो सच में बहुत अच्छा था, जिसमें वो किसी को लड्डू दे दिया, किसी को सेब दे दिया, है ना? वो सीन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। अक्षत आपने तो बहुत बढ़िया सीन आपने चूज किया वो। तो ये गाना अक्षत आप किसके लिए सुनना चाहते हैं? अपने घर में किसी का नाम लेना चाहेंगे? मम्मी का, पापा का, दीदी का, भाई का?
1: मैं तो अपनी मम्मा के साथ सुन रहा हूँ इस टाइम।
0: मम्मा के साथ सुनना है? तो मम्मा का नाम क्या है? आप मम्मा के लिए गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हाँ
0: तो जरूर जरूर, चलिए जरूर ये गाना डेडिकेट करते हैं आपकी मदर के लिए। ठीक है, चलिए अक्षत आप सुनते रहिए और FM से कनेक्ट भी रहिए, और होमवर्क पूरा करके ही सोना।
1: अभी सो गई।
0: ठीक है, सो जाना, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है ना, स्कूल तो जाना ही है ना।
1: हाँ
0: ठीक है अक्षत,
1: थैंक यू, बाय।
0: बाय बाय, वेलकम, बाय। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे अक्षत, जो इस समय होमवर्क पूरा करके और अपनी पसंद का एक गाना सुनना चाहते थे। यही तो होता है ना, जब दिल से निकलता है तो आप देखिए कि एक 8th क्लास का स्टूडेंट भी, एक आठ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी अपने दिल की बात कितने प्यार से कहता है। तो कुछ बातें होती हैं जो सच में जब अपने दिल से निकलती हैं तो बहुत ही दूर तक जाती हैं। तो चलिए, आप बज गए हैं 10:10, और हाँ मेरा भी जाने का टाइम हो गया। तो कहते हैं ना, वो कहते हैं हम नाराज नहीं, वो कहते हैं हम नाराज नहीं हैं, हम कहते हैं फिर ये खामोशी क्यों है, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं फिर ये कहानी इतनी लंबी क्यों है। तो ये कहानी आज आपके हमारे बीच इतनी लंबी हो गई है कि जाने का और यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा, मगर यार चलना होगा और कुछ कहानी अपनी भी लिखनी होगी। तो कहते हैं ना, ये समय हमें पता ही नहीं चला, 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन जाने से पहले बस एक बात, अपने लोगों को वक्त दीजिए, अपने लोगों के साथ रहिए, और हाँ क्योंकि जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, क्या है? वक्त है। और जो वक्त हम किसी को दे देते हैं ना, वही हमारी सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। तो आखिरी शायरी आप सभी के लिए, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, कुछ हंसाएंगे कुछ रुलाएंगे, मगर जो बिना किसी मतलब के साथ निभाएंगे वही जिंदगी में सबसे खास कहलाएंगे। और हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात। चेहरे पे मुस्कान रखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, दिल में प्यार रखिए, जिंदगी छोटी है जनाब, इसे खुलकर जीने का विचार रखिए। मैं हूं आपका अपना अखिल, और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें हुई दिल से और पहुंची बिल्कुल सीधे दिल तक। तो इजाजत दीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ हाँ ये मैसेज भी मैं आपका जाने से पहले पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि कल फिर कहेंगे अरे सर हमारा मैसेज ही नहीं पढ़ा आपने। अखिल सर गुड इवनिंग, आज फिर एक बार आपके दिल से दिल का शो में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज और बातचीत का अंदाजा हमेशा एक अलग सा अपनापन महसूस कराता है। उम्मीद है आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अब आपका ये खूबसूरत शो आपकी शाम को और भी यादगार बना रहा होगा। FM टीम को भी मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अगर संभव हो तो आज के शो में मेरा कोई पसंद का पुराना गाना प्ले कर दीजिएगा, खूबसूरत गीत जरूर सुनाइएगा। अगर आज ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इसी के साथ आपको और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। आपके आने वाला कल खुशियों से और मुस्कान से भरा हो। आपका भी बहुत बहुत गुड नाइट अखिल सर। थैंक यू आसिफ फ्रॉम इटली। इटली से आप बात करना आसिफ जी। इटली का पिज्जा मेरे ख्याल से बहुत फेमस है, तो आपने पिज्जा तो खाया ही होगा और खिलाया भी होगा खूब सारा, तो हमारी भी तरफ से एक बार पिज्जा खा लीजिएगा। और ये जो आपने कहा ना कि गाना हमारा कोई खूबसूरत गाना, तो मैंने खूबसूरत गाने बहुत प्ले किए और शायद मुझे पूरी उम्मीद है उसमें से कोई ना कोई आपका यादगार गाना जरूर रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप कल फिर ठीक इसी समय 9:01 पे मिल जाएंगे साहब, ज्यादा लेट नहीं होंगे, हो जाता है कभी कभी हो जाता है, माफ कर दिया करो, बच्चा ही हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई शाम नई बातें और नई शायरी के साथ। आज जिन जिन की कॉल नहीं उठाई है कल पक्का उनसे बात होगी, क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत हो जाता है। नहीं नहीं रोड पे तो होता ही है ट्रैफिक, कॉल में भी बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, कई सारी कॉल आ रही होती है, हर बार नहीं उठ पाती, मगर हाँ जरूर जरूर कल आपके साथ होगी गुफ्तगु, इस बात का रखा जाएगा ध्यान। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना रखिए ध्यान, अपनों के साथ दिल की बड़े बात करेंगे बात तो सारी हो जाएंगी, समझ ही गए, हाँ आसानी बात हो जाएगी सर। तो चलिए एक गाना सुनते हैं जो हमारे अक्षय जी ने फरमाइश किया, कितना प्यारा गाना है और इसके साथ शो की विदाई हो रही है, ये तो और भी बढ़िया बात है। तो करेंगे एंजॉय और मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय, गुड नाइट।

0: शब्द ऋषि।
1: सच कहूं तो ये इस समय मेरा भी फेवरेट है, और ऐसा फेवरेट है कि जैसी ही बैठता हूँ ना गाड़ी में, ये अपना आप ही मेरे दिमाग में ये दो बोल तो आ ही जाते हैं।
0: लाने

है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर ये भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: भैया, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।